तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो प्रभु।

कण में राम, क्षण क्षण में श्याम, हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान।

100.7 एफएम पर मैं शिवम सभी श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रातः के 6:02 हो रहे और प्रतिदिन की तरह भगवान विघ्न विनाशक श्री गणेश के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज की भक्ति भाव का कार्यक्रम पुष्पांजलि के साथ अपने दिन का शुभारंभ करते हैं।

मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है और दूसरी जन्म ले लेती है। यही अंतहीन कामनाएं समस्याओं को जन्म देती हैं और धीरे धीरे मनुष्य समस्याओं के चक्रव्यूह में फंस जाता है। और ऐसी समस्या से तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही हमें बाहर का रास्ता दिखा सकता है।

मनुष्य की स्थिति भी जाल बनाने वाली मकड़ी की तरह हो जाता है, जो अपने ही मन के भंवर में उलझ के रह जाता है, और इससे निकलने का एकमात्र साधन भक्तिभाव के मार्ग से होकर ही तो जाता है।

मनुष्य भी अपनी अपेक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं और आसक्तियों को जाल के स्वरूप खुद के ऊपर बिछा लेता है और फिर उसी में उलझकर दुखी हो जाता है। कई बार तो वह अपनी परेशानियों के लिए ईश्वर को भी दोषी ठहरा देता है, जबकि अधिकांश समस्याओं की जड़ उसके अपने कर्म और उसके खुद की इच्छाएं हैं।

संसार में समस्या है तो उसका हल भी है, लेकिन हर समाधान हमारी इच्छा के अनुसार तुरंत नहीं मिलता। एक समस्या समाप्त होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। आज लोग समाधान की तलाश में जगह जगह भटकते हैं, लेकिन वास्तविक शांति बाहरी उपायों से नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने से मिलती है।

और जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। यानी जैसा कर्म होगा वैसा ही फल भी मिलेगा।

को सब मिलके पुकारे कैसे, हे वीरवर हनुमान अब संकट से छुड़ाओ, हम सब शरण हैं आपकी,

पहुंच करके दिए वाटिका उजाड़, अक्षय कुमार को दिए धरती पे वो पछाड़। आया जो सामने दिए ककड़ी के जैसे था,

संत महात्माओं ने सदैव यही संदेश दिया कि समस्याओं का नहीं परमात्मा का चिंतन करो। जब मन भीतर से शांत हो जाता है तब समस्याएं स्वयं अंत की ओर चली जाती हैं।

और इससे पहले कि पुष्पांजलि से मैं शिवम आप सबसे आज्ञा लूं, पर हमेशा की तरह जिस तरह सभी देव देवताओं की पूजा हो और हमारे आराध्य देवों के देव देवाधिदेव महादेव का नाम लेने पर पूजा अधूरी मानी जाती है, उसी तरह पुष्पांजलि में उनका नाम लेना तो बनता है। काशी नरेश, बाबा विश्वनाथ, महाकाल का नाम आप जहां भी हो अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर आंख बंद करके और हृदय से बोलिए, ओम नमः पार्वती पते।

नमस्कार, सुबह के 7 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वालों पहलों में दिखाई देती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनरीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीट परीक्षार्थियों के लिए राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री ने मुहर्रम जुलूसों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि

जुलूसों में हथियारों के प्रदर्शन और तेज आवाज वाले डीजे की अनुमति नहीं होगी। साथ ही शांति और सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव की परिस्थितियों को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन मान्यता प्राप्त और विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि बढ़ाकर 24 जून तक कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब प्रत्येक वर्ष 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा तथा 25 जून से विद्यालयों में नियमित पठन पाठन प्रारंभ होगा। आज मुहर्रम माह की पहली तिथि है। कल प्रदेश की मरकजी शिया सुन्नी और चांद कमेटियों ने चांद देखने की पुष्टि करते हुए आधिकारिक घोषणा की। 17 जून से पहली मुहर्रम होगी। यह माह शोक के लिए जाना जाता है। अफगानिस्तान और भारत के बीच आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। मैच को लेकर लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। यातायात पर यह प्रतिबंध सुबह 9 बजे से रात में मैच की समाप्ति तक लागू रहेगा। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ, आपको हम कहीं दूर नहीं जाने देंगे। नमस्कार, एक बार फिर से मैं सभी दोस्तों का स्वागत करूंगा आपके अपने चैनल 100.7 और मेरा नाम है शिवम। तो जुड़िए मेरे साथ कार्यक्रम सदाबहार गीत में, जिसमें आज मैं आपको ले चलूंगा आपको ऐसे सफर पर जहां कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ दिल को हौले से छू लेने वाले गानों का साथ। तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए सदाबहार गीत शिवम के साथ। ये बेहतरीन सा गाना कि जब आप आ ही गए हैं तो बहार तो जरूर आएगी।

7:09 हो रहा है और ये अब 8 सेकंड, 7:10 भी हो गए। देखिए वही तो ना कि सेकंड जो है बिल्कुल एकदम भागता रहता है। तो दोस्तों आज हम जो कुछ बात कर रहे हैं वो कुछ आपसे जुड़ी हुई है, मतलब कि हमारी जिंदगी के बारे में जुड़ी हुई है। हम सबने कभी ना कभी तो ट्रेन का सफर जरूर किया होगा, बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो जरूर ही किया होगा। ट्रेन एक ऐसी याद होती है जो हमें हमेशा हमेशा रोमांचित कर देती है। जब भी उसके बारे में सोचे या जाएं, चाहे कैसे भी हालात हो, चाहे कैसा भी सफर हो, आप उनकी कहानियों में जरूर खो जाते हैं, ट्रेन की कहानियों में, कि भाई हमें ट्रेन पकड़ने के लिए कितनी शिद्दत करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी, मतलब तैयार होने से लेके आपका बैकपैक होने से लेके स्टेशन तक जो छोड़ने आते हैं उनकी मेहनत, फिर उस स्टेशन पर भीड़ भाड़ वाली मतलब जगह में अपनी बोगी ढूंढना और अपनी बोगी में अपना सीट नंबर ढूंढना और उसके बाद चैन से सुकून से बैठना। और इन सबसे एक स्पेशल वो एक चीज़ जिसके लिए हम हमेशा एकदम लालायित रहते हैं, भाई हमें विंडो वाली खिड़की मिल जाए, चाहे वो बचपन हो, चाहे वो जवानी हो और चाहे बुढ़ापा हो, चाहे किसी भी एज में हो, वो विंडो वाली सीट का मोह नहीं जाता है। क्या कहना है आपका? 7:11 शिवम आज आपके साथ है और आज ले चलेंगे आपको ट्रेन में बैठा के, और पूरे रास्ते आपसे ढेर सारी बातें होंगी,

0: वो जो आते हैं ना वेंडर, वो गर्म चाय वाली, वो सारी फीलिंग जो है आज आप तक पहुंचने वाली है। तो कहीं मत जाइए, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए क्योंकि अब बारी है ट्रेन में बैठने की।
1: आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पे बैठो, एक दूजे की पीठ पे बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं, सुनो रे बच्चों टिकट कटाओ।

0: भप भप।
1: आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम्हारा कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर सब पैसेंजर। रेडी एक

महल की हार, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी। बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक, धर्मपुर मैंगलोर, मांडवा खांडवा मांडवा, रायपुर रायपुर, तलेगांव नेल्लूर नेल्लूर, सोलापुर कुप्पल डिंडिगल कुप्पल, मछलीपट्टम मछलीपट्टम, उंगोल नर्तिगोल उंगोल, कोरेगांव अहमदाबाद अहमदाबाद, सोतनूर पोतनूर, बीच वाले स्टेशन बोल रुक रुक

तो अगर आपकी ट्रेन चल पड़ी है तो बस आप इसी लय में चलते रहिए, क्योंकि जिंदगी का नाम भी है इसी तरीके से चलना। अच्छा, ट्रेन की जो मनपसंद सीट वाली हमने अभी अभी बात जो बोली, बड़ी मेहनत से मिलती है। मतलब अगर आप टाइम से कराते हैं सीट, टिकट बुक कराते हैं, तभी वो सीट जो है आपको अलॉट की जाती है, वरना अगर आप जरा सा लेट हुए तो चूक जाते हैं, वो सीट आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल उसी तरह हमारी जिंदगी में भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे पाने के लिए न जाने कितनी मेहनत, न जाने कितनी शिद्दत से उसे चाहना पड़ता है, तब जाके वो शायद वो चीज़ें मिलती हैं, और वो भी टाइम के साथ। और अगर ज़रा सी टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हुई तो वो चीज़ जिसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो हमारे हाथों से शायद फिसल सकती है, है ना? तो अगर आप अभी भी ट्रेन में सवार नहीं हुए हैं तो एक और ट्रेन चलवा देते हैं, एक और गाना सुनते हैं, बैठ जाइए ट्रेन में।

7:23 और सदाबहार गीत आप सुन रहे हैं और मेरा नाम शिवम है। बहुत से लोग बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, उनका नेचर होता है कि अगर वो किसी भी सफर में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे बस में हो, चाहे कहीं भी हो, वो अपने आसपास जो लोग बैठे होते हैं उनसे बातचीत करना और उनके बातों में भागीदारी भी करने लगते हैं। लेकिन बहुत से लोग वहीं उसी सफर में संकोची स्वभाव के भी होते हैं। मान के चलिए कि सभी लोग बातें कर रहे होते हैं और वो चुपचाप, बस उनको लगता है कि मैं बोलूं या ना बोलूं, मैं बोलूं बताऊं या बातें अगर शुरू करूं भी तो किस टॉपिक से शुरू करूं। बहुत से ऐसे सफर में ऐसे चीजें होती हैं कि जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो लोग साथ में होते हैं या आप अकेले होते हैं, तो उनसे बात करने का जो एक सिरा है वो नहीं मिल पाता है। और जब तक बात करने का टाइम आता है, जब तक बातें शुरू होती हैं, जान पहचान बढ़ती है, तो बिल्कुल वही कहानी कि उनका स्टेशन आ जाता है और आप अपनी बातें, अपनी कहानियां, अपने किस्से अपने दिल में समेटे ही रह जाते हैं, है ना।

और घनश्याम सिंह जी ने हमें ईमेल कर दिया है और आपको बता दें कि ये 7:10 पे ही ईमेल कर दिए थे। लिखते हैं, हर हर बम बम महादेव बाबा काशी नरेश विश्वनाथ की जय, ओम नमः शिवाय। और इन्होंने लिखा है कि शिवम भैया जी की जय, आपने पुष्पांजलि में मुझे शंकरमय बना दिया है, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लिख रहे हैं एडवोकेट घनश्याम सिंह, नारायण नगर ए, फैजाबाद रोड, लखनऊ से। तो ये आपको बिल्कुल बता दे कि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि बिल्कुल जब उन्हीं से जन्म हुआ, उन्हीं में मिलना है, तो बिल्कुल उनका नाम लेना तो बनता है। अगला मेल जो आया है वो है कोमल तिवारी जी का। लिखती हैं कि बहुत प्यारे सॉन्ग बज रहे हैं, आप गाने कहाँ से ले आते हैं, और रेडियो में गाना सुनकर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग डियर शिवम भैया जी। कोमल जी, बहुत शुक्रिया आपका ईमेल करने के लिए। और हमेशा की तरह एमके राज, लखीमपुर, भानपुर, हरौआ से इन्होंने ईमेल किया है। कह रहे हैं कि पता नहीं कब टिकट कट जाए, इससे अच्छा है कर्म करते रहें, सफ़र में चलते रहें। हर गाना लाजवाब है, प्रोग्राम की बहुत तारीफ की है और बहुत सारी तारीफें की हैं इन्होंने। सुधांशु जी लिखते हैं, राधे राधे। सुधांशु ग्राम भगवती पोस्ट मोहना थाना इंटौंजा से ये बात कर रहे हैं, यानी कि ईमेल कर रहे हैं, और लिखते हैं कि लखनऊ से कार्यक्रम पुष्पांजलि और कार्यक्रम सदाबहार के बारे में इन्होंने बोला है कि बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि जो पुष्पांजलि में गाने बजाए उससे सुन के बिल्कुल ये एकदम खुश हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और घनश्याम जी ने दोबारा हमें ईमेल किया है, लिखते हैं कि आज तो भगवान मैं कर दिया आपने मुझे, और मैं ट्रेन में खिड़की वाली बर्थ ज़रूर लेता हूँ, मिलती भी है मुझे। और इन्होंने जो लिखा है कि मेरे साथ ट्रेन मैं कर देने वाली शिवम भैया

की जय, शुभ प्रभात, मुस्कुरा रहा हूँ शिवम भैया जी को, श्रद्धा पूर्वक धन्यवाद। तो घनश्याम जी, आपने जितने भी शब्द लिखे हैं ये मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, वो मेरे लिए और मेरे सारे दोस्तों को, मतलब ये जो जितने भी आरजेज हैं उन सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ ईमेल है, जरूर पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला गाना जरूर सुनिए।

जी हाँ, 7:41 और सदाबहार गीत इंजॉय कर रहे हैं आप 100.7 FM रेनबो पर। और अभी अभी एक मैंने लाइन पढ़ी है अमृता प्रीतम जी की, बड़ी बेहतरीन, सोचा आप तक पहुंचा दूं। लिखते हैं कि अब घर कब आओगे, अब

घर कब आओगे? मुझे तारीख लिखो ताकि उंगलियों पर दिन को गिनो तो उंगलियां भी अच्छी लगने लगे। ब्रजेश सिंह दीपू इटहुआ कैसरगंज बहराई से, गुड मॉर्निंग मेरे अपने शिवम भैया जी को। आप ऐसे पुष्पांजलि प्रस्तुत करते हैं जैसे लगता है कि हम खुद बैठ के भजन प्ले कर रहे हों, अपनी पसंद का। वो भी सदाबहार गीत में माँ को बहुत सुकून मिलता है। ऐसा कार्यक्रम आपका सुनकर सुबह सुबह, तो आपको और आपकी माता जी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये ईमेल किया और इतनी तारीफ की। रामराज ने हमें ईमेल किया है, ढेर सारे नाम इन्होंने लिखे हैं, प्रोग्राम की तारीफ की है, जिला रायबरेली से। बहुत अच्छा लगा पढ़ के। राम सेवक जी ने भी ईमेल किया है कि सर आपने ट्रेन की बात करके मेरी ट्रेन में बैठने की यादें बिल्कुल ताज़ा कर दी, तो हमने इसीलिए तो बातें की कि आप उस चीज़ को याद करें जो हमारी मेमोरीज में कहीं पीछे छुपी हुई है। लिखते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हम सच में ट्रेन में ही हैं, प्रोग्राम 6 बजे से सुन रहा हूँ और प्रोग्राम इन्हें बहुत पसंद आ रहा है। हसनापुर औरस उन्नाव से इन्होंने ईमेल किया है। हमारे बड़े भैया राजेश कुमार जी ने हमें ईमेल किया है, लिखते हैं गुड मॉर्निंग और शिवम बड़े भैया की जय हो। इन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है और न्यूज़ ऑन AIR मतलब ऐप से ये सुन रहे हैं, एप्लीकेशन पे सुन रहे हैं। तो आज काफ़ी दिनों बाद सुबह सुबह बहुत मस्त लग रहा है। गाड़ी कहाँ स्टेशन से छूट जा रही है और फिल्म के जो गाने बजा रहे हैं, मैं अभी फाइल लिख रहा हूँ। और ये एक शोध छात्र हैं मोदीपुरम मेरठ से, इन्होंने ईमेल किया है। तो भैया जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ईमेल करने के लिए। अशोक कुमार ने ईमेल किया है, बहुत ही तारीफ की है, बहुत शुक्रिया आपका ईमेल करने के लिए। राजेश कुमार, विनीत कुमार, राधेश्याम, अंगद यादव, रजनीश पासवान और हमारे मोनू सेठ भैया जी ने हमें ईमेल कर दिया है। तो एक गाना सुनते हैं, उसके बाद 2-3 और ईमेल हैं और कुछ बातें हैं जो कहनी है आपसे।

बढ़िया था गाना ना। 7:50 हो गए, सदा मार गीत चल रहा है। मेरा नाम शिवम है और अब मैं पढ़ने वाला हूँ मोनू भैया का ईमेल। लिखते हैं, भैया जी नमस्ते, हर हर महादेव, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। और इन्होंने लिखा है पुष्पांजलि में भजन इन्होंने बड़े अच्छे मतलब सुने हैं, इनको बहुत अच्छा लगा जो मैंने बजाया, तो उसकी तारीफ की है। और लिखते हैं कि कृपा बनी रहे महाकाल की, जब सुकून नहीं मिलता दिखावे की बस्ती में, तब खो जाता हूँ महाकाल की मस्ती में। मनु भैया बहुत बहुत शुक्रिया ईमेल करने के लिए। ऊंच गांव अमेठी से ही हमें हमेशा ईमेल करते हैं। शक्ति वाजपेयी ने हमें ईमेल किया है कि 2 कप चाय आपके लिए, 1 कप आपके लिए और एक कप चाय में और भला नहीं होता और दूसरे पीने का में मन करता है। अच्छा, एक पीने के बाद दूसरा भी पीने का मन करता है, ऐसा लिखा है इन्होंने। और ट्रेन का सफ़र के बारे में उन्होंने बताया है कि ट्रेन का सफ़र करके दिल्ली से लखनऊ आ रहे हैं और अपने दादाजी के साथ, और ट्रेन का सफ़र सबसे ज़्यादा बचपन में ही सुहाना लगता था। हाँ, ये तो बात सही है। और वो ट्रेन में जो ये चाय वाली जो बात होती

ना कि ये आप चाहे देखिए सच्ची चीज होती है ना, जो आप किसी भी शहर में चले जाइए, चाहे वहां की कितनी भी फेवरेट चीज, कोई भी फेमस चीज खरीद के लेके आइए, लेकिन सही मायने में जो उस शहर की याद होती है ना, वो स्टेशन पर बैठ के पी हुई आखिरी चाय की होती है। कि जब आप कभी जिंदगी में उस स्टेशन से वापस जा रहे होंगे तो आपको वो चाय और स्टेशन जरूर याद आएगा कि कभी इस स्टेशन पे मैं आया था और यहाँ बैठ के एक चाय पी थी। अब वो चाय अच्छी है, बुरी है, कैसी है, कैसी नहीं, ये आपको पता है, लेकिन वो चाय का टेस्ट आपको उस दिन जब आप उस ट्रेन से निकलेंगे तो वो याद जरूर आती है। फिलहाल बहुत ढेर सारी इन्होंने बातें लिखी हैं आगे, बड़ा अच्छा लग रहा है ईमेल देख के। प्रिंसेस इंजन ने ईमेल किया है, संडीला से इन्होंने ईमेल किया है, सोनू परवाना मेल भैया ने ईमेल किया है, लिखते हैं कि चली जाए ग्रीटिंग चमकते चमकते मेरे दोस्त आकाशवाणी लखनऊ के पास। और ये ऊंच गांव अमेठी से इन्होंने भी ईमेल किया है। और अगला मेल जो है आचल सेठ का है, सुप्रभात कैसे हैं, गानों का पिटारा बहुत सुंदर लग रहा है। और एक ये जो मेल है वो मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि इसमें लिखा हुआ है शिवम सर जी नमस्ते, साथ में अंजू दीदी जी को भी नमस्ते। लिखती हैं कि अंजू दीदी को भी नमस्ते और गाने प्रोग्राम में बहुत अच्छे बजते हैं, तो अंजू दीदी जी बिल्कुल एकदम आ गई हैं और बड़ी ही लंबी यात्रा से आई हैं वो भी, तो उनसे भी चकल्लस करेंगे, गुड मॉर्निंग लखनऊ में मिलेंगे ढेर सारी बातें करने के लिए, क्योंकि उनके पास भी कहने को बहुत कुछ हो गया है और आप लोगों के पास भी बहुत सुनने के लिए हो गया है, तो अब होगी भाई साहब चकल्लस गुड मॉर्निंग लखनऊ में। तो अभी क्या है, अपनी पुरानी मेमोरी डिलीट कर लीजिए क्योंकि अब नई मेमोरी बनने वाली है। 8:15 में मिलेंगे, फिलहाल एक गाना सुनिए बढ़िया सा और मुझे दीजिए अनुमति, चलते हैं हम भी ये जो चाय और ये आम और ये जो बातें लिख के आई हैं उनको चाशनी में डुबो के चाय पी के आते हैं। टाटा एंड बाय बाय।

0: जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार।

0: से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी

0: 2024 में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
1: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुँच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुँच प्रदान कर रहा है।
2: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
0: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
4: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश

0: की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और नीट UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्ता की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने नीट UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजादे मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
0: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
0: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल, सांस्कृतिक गतिविधियां और सेहत का ख्याल, अखबारों की सुर्खियां और देश दुनिया के समाचार,
1: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान। द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सोचा था हजारों लफ्ज लिखूंगा तुम्हें सामने बिठाकर, सोचा था हजारों लफ्ज लिखूंगा तुम्हें सामने बिठाकर, नजर तुम्हारे चेहरे पर क्या ठहरी, कागज कोरे ही रह गए।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है, मतलब एकदम बिल्कुल वही, एकदम अंदाजे बयां, वाह। मतलब ये जो सुबह ने आपने

0: ये कागज और ये चेहरा और ये जो बातें बोली ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे तो बत्ती गुल ही हो जानी चाहिए थी
1: दिमाग की।
0: हाँ
1: ऐसा है, चेहरे पे नहीं आवाज पर फोकस करो, क्योंकि हम लोग रेडियो में
0: हैं। हाँ बिल्कुल, वो कभी कभी भूल जाते हैं इस चीज को। फिलहाल 8:17 हो गया है, दो दोस्त आपके आ गए हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ में। मेरा नाम शिवम है और हमारे साथ बैठी हुई है जो एक तकिया कलाम है ना, इसमें बोलते हैं कि संजय दत्त को बोलते हैं शॉर्ट में संजू।
1: अच्छा,
0: आ गए भैया स्टूडियो में अंजू।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी सुनने वालों को 100.7 एफएम रेनबो पर, जिसे आप कहते हैं धड़कन लखनऊ की। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग लखनऊ, मैं अंजू और मेरे साथ है शिवम। 8:17:30 का वक्त आप हमारे साथ रहेंगे तो यकीनन ये सफर बेहद खूबसूरत होगा। स्टे ट्यून्ड।

0: stay positive with aaj ka morning mantra.
1: मेरी आज का जो मॉर्निंग मंत्र है वो सही से मैं एक मंत्र मैं पढ़ती हूँ पहले
2: जी।
1: और विष्णु पुराण में ये मंत्र है, अक्सर लोग इसे सुबह सुबह बोलते हैं और जब सुबह सोकर उठते हैं ना, नींद खुलती है, अपने हाथों का दर्शन करते हैं, अपने हथेलियों को जोड़कर सामने देखते हैं और बोलते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। और इसका मतलब आप जानते हैं, अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो शिवम
2: जी बिल्कुल, वो आसान शब्द ऐसे हैं कि सुबह उठकर अपने हाथों का दर्शन करने से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि समृद्ध ज्ञान ईश्वर का आशीर्वाद हमारे कर्मों में ही छिपा है। इसीलिए दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों के संकल्प के साथ जरूर करें।
1: बिल्कुल, जब हम अपने हाथों की लकीरों को देखते हैं ना, बड़े सारे लोग किस्मत में बिलीव करते हैं, भाग्य में, हम लोग भी करते हैं, लेकिन हाथों की लकीरों में सब कुछ नहीं लिखा होता। अपने हाथ को देखिए, अपने हाथों की शक्ति को पहचानिए, ये वो मतलब है कि हमें कर्म करना है, है ना। अपने हाथों से आप जो कुछ भी करेंगे, अपनी सोच से इस दुनिया को जो दिशा देंगे, अपने जीवन को जो दिशा देंगे और कर्म करते रहेंगे, बस वही आपका भाग्य बन जाएगा, है ना।
2: बिल्कुल, लेकिन ये जो अभी आपने लाइन बोली ना कि कुछ बातें हाथों में लकीरों में नहीं लिखी रहती, जोक सपाट मैंने उसमें जोड़ लिया था अपने मन में कि कुछ बातें हाथों में नहीं लिखी रहती, कुछ कॉपी के रफ में पीछे लिखी रहती हैं।
1: मतलब ये शिवम वाला वर्जन है, कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में चलता ही रहता है, बिल्कुल अलग सा है ना।
2: हाँ, मतलब दोस्तों उसको भी पलट के एक बार देख लिया करो, पता नहीं कौन सी चीजें भूल जाए।
1: जैसे जैसे इनकी कॉपी में रफ में पीछे की तरफ मतलब बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, हमने पलट कर देखा है,
2: उसे पलट के देखने से याद आ जाता है सारी चीजें।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत।
1: गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा।
2: जी हाँ, 8:30 हो गए हैं, यानी कि 8:30 बज गए हैं। बुधवार का दिन है, 17 जून की तारीख है। बहुत कुछ चल रहा होगा आपके घरों में आसपास, क्योंकि वर्किंग डे है। हालांकि जो बेसिक शिक्षा विभाग के जो स्कूल हैं वो 24 तारीख तक के लिए बंद कर दिए गए।
3: बिल्कुल
2: खुशखबरी है उन लोगों के लिए, जो टीचर्स हैं जो वेकेशन पे हैं, अपनी वेकेशन के कुछ एक आध हफ्ता बढ़ा सकते हैं ना, एक हफ्ता आराम से।
3: बिल्कुल बढ़ गया। और बस बहुत से लोग ऐसे भी होंगे ना कि जिनकी प्लानिंग रही होगी कि भाई आज स्कूल जाना है, तो आज कम से कम अपने अपने जहां जगह है वहां आ गए होंगे, तो कुछ दिन पे रह लेंगे। और वो होता है ना कि मतलब बस्ता तैयार करने के बाद अगर पता चल जाए कि भाई साहब आज तो छुट्टी है, तो उसकी अलग लेवल की खुशी होती है ना।
2: बिल्कुल बिल्कुल। और इनका बस्ता तो वैसे हमेशा तैयार रहता है और छुट्टी का मोड भी हमेशा ऑन रहता है,
3: एकदम एक्टिव मोड में।
2: एक्टिव मोड में। वैसे जब बात की जाती है छुट्टियों की, और बहुत सारे घरों में जब काम हो रहे होते हैं और जब छुट्टियों में वेकेशन में रिश्तेदार आ जाते हैं, बुआ आई हुई है या मामा मामी आए हुए हैं, कोई भी आया हुआ है, मौसी आई है, तो जो पानी का इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है, वो भी बढ़ जाता है।
3: बिल्कुल बढ़ जाता है। अरे भाई अब तो
2: जो मोटर दिन भर में एक बार चलती थी, अब दिन भर में मिनट मिनट पे चलती है,
3: 10-10 बार चलती है। और वो स्विमिंग पूल वाला आ गया है सिस्टम भाई, कि मतलब अब तो स्विमिंग पूल जाने की जरूरत नहीं है।
2: हाँ, अच्छा ही करेंगे बच्चे का,
3: हवा भर के उसी में बैठ लीजिए,
2: बैठ लीजिए, है ना। बच्चे जितने भी हैं, कजिन्स सब इकट्ठा हो गए हैं, तो फिर भैया ये तो पिकनिक होना ही है घर में, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, जब जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरह से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी बढ़ रहा है ना, और उतनी ही स्पीड में बर्बादी भी बढ़ रही है।

0: बर्बादी भी बढ़ रही है और किसी का भी इस ओर ध्यान ही नहीं है कि हम जो चीज उपभोग कर रहे हैं उसको फिर से दोबारा से हम वो हमें या हमारे आने वाले लोगों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी।
1: बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज मनाया जा रहा है दोस्तों, उसके विषय में हम आपको बताते हैं, उसके बाद आते हैं आज के मुद्दे पर, बात करते हैं अगर 17 जून की, तो पूरी दुनिया संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाती है आज के दिन, और इसका उद्देश्य है भूमि क्षरण, जल संकट और सूखे से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना।
0: जी हाँ दोस्तों, 1995 में विश्व मरुस्थलीकरण के रोकथाम दिवस के लिए ये डे जो है आज सेलिब्रेट किया जा रहा है वो तब से स्टार्ट है, और इसका जैसे आपने बताया कि ये उस चीज़ को बचाने के लिए है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पानी नहीं है या जहाँ उपजाऊ चीज़ें नहीं है, जमीन नहीं है, उसको सही करने के लिए और जो हमारी और भूमि है उसको बचाने के लिए उपाय करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है।
1: बिल्कुल, मरुस्थलीकरण अगर हम आम भाषा में बात करें शिवम, तो भूमि का बंजर होना, अगर धरती बंजर हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि सूखे जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्या पैदा होगी, और जब जहां पर जैसे कि सभ्यता का विकास ही नदियों के किनारे हुआ है, उपजाऊ जमीन जहां पर होती है वहां सभ्यता का विकास होता है तेजी के साथ, लोग हरी भरी जमीन पर रहते हैं, खाने पीने की दिक्कत नहीं होती है, प्राकृतिक संसाधनों की कोई दिक्कत नहीं होती और जीवन खुशहाल रहता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर सूखा पड़ गया, अकाल की स्थिति आ गई, तो क्या हालात होंगे?
0: बहुत ही खतरनाक, जो बहुत ही भयावह, जो सोचा नहीं जा सकता है,
1: और इसीलिए ये दिन मनाया जाता है और पहली बार 1995 में मनाया गया। ये दिन बंजर होती भूमि को उपजाऊ बनाने, मिट्टी के क्षरण को रोकने और जल प्रबंधन के महत्व को याद दिलाता है। जी हाँ, वाटर मैनेजमेंट, अगर हम जल प्रबंधन की बात करें तो बहुत सारी बातें इस प्लेटफॉर्म से यानी 100.7 FM रेनबो के माध्यम से आप तक पहुँचती रही हैं, हमेशा पहुँचती रही हैं, लेकिन आज इस विशेष दिन पर आप तक जो मुद्दा पहुँचा रहे हैं और आपके जिस जो विचार हम जानना चाहते हैं वो ये कि सूखा यानी अकाल जो स्थिति पैदा होती है, सूखे की स्थिति जो उत्पन्न होती है, उसके क्या कारण होते हैं, और अगर आप और हम अपने दैनिक व्यवहार में कुछ बचाव के उपाय अपना सकें तो वो क्या होंगे?
0: बिल्कुल सही कहा कि आप, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके व्यवहार में और हमारे करने से क्या ऐसा काम हो कि जिससे जल की जो है बर्बादी ना हो, और दूसरा एक बात और कि और आपके पास कोई ऐसा इनोवेशन है या ऐसा कुछ सुझाव है जो लग रहा है कि हाँ ये स्पेशल है, तो ये सब चीज़ें आप हमें लिख भेजिए fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। हम आपके कर रहे हैं मुद्दों से जुड़ी बातों का इंतज़ार।
1: बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है और आपके ईमेल्स का इंतजार तो हम करेंगे। कुछ अच्छी बातें बताइएगा, दैनिक उपयोग में आप किस तरह से जल की बर्बादी रोकते हैं या सूखा या अकाल की स्थिति से निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं आपकी, क्योंकि ये जो जलवायु परिवर्तन जिस तेजी के साथ हो रहा है ऐसी स्थिति कभी भी आ सकती है।
0: बिल्कुल, बहुत से लोगों ने देखे भी होंगे और इस चीजों को सुना भी होगा, तो उस समय क्या उपाय अपनाए गए और आज के आधुनिक काल में क्या उपाय जा सकते हैं, और आपके निजी विचार कि जो आपने कुछ सोचा हो उसके लिए, तो वो भी जरूर लिख के भेजिए।
1: बिल्कुल, ऐसी स्थिति आए ही ना उसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
0: कभी ना,
1: घर में जो पानी बह रहा है ना, टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दीजिए, टैप खुला है उसको बंद कर दीजिए, सबसे पहले यही कर लीजिए।

0: अच्छा जब हम लोग यहाँ पर आते हैं ना तो लगता है कितने दिनों बाद भी आओ, लेकिन लगता है पहली बार आ रहे हैं।
1: बिल्कुल, वो हमेशा हमेशा लगता है, क्योंकि
0: ताजगी वाली फीलिंग आती है।
1: क्योंकि ये जो ईमेल जो ऐसे टिमटिमाते हैं ना, और जब बातें होती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम अभी अभी बस प्रकट हो ही रहे हैं।
0: बिल्कुल वैसे ही ना जैसे ढिनचैक वाला गाना शिवम बजा रहे हैं। वैसे हम दोनों की पसंद के गाने हैं आज, आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। 8:39 का वक्त हो गया, आज बहुत ही स्पेशल डे मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, लेकिन खासतौर पर अगर भारत की बात करें तो शिवम, जैसे कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, और इस दिन की शुरुआत 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णय के बाद हुई थी, और 1995 में पहली बार मनाया गया, और जो 2026 की थीम है, रेंज लैंड्स रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट रिस्टोर। और अगर अपने देश के अनुसार भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दिन।
1: बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जल संरक्षण केवल पर्यावरण का विषय नहीं है, बल्कि खाद्य सुरक्षा, किसानों की आजीविका और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ होता है।
0: बिल्कुल, आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की बात अगर हम करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियों को शायद उपलब्ध नहीं होंगी, वो कहानियों में ही पढ़ेंगे।
1: बिल्कुल, ये बात तो हम मानते हैं
0: ना। लेकिन इसी से कहानियों से मुझे एक कहानी याद आ रही है।
1: बिल्कुल सुनाइए।
0: जैसे कि जामुन पसंद है आपको?
1: बहुत पसंद है, परसों ही खा के आए।
0: दाग वाग तो नहीं लगाया?
1: अरे मत पूछिए, देखिए ऐसा है कि अब क्या ही, अब दुखती रख पे हाथ रख दिया आपने। हां, कि मतलब हम सामान खरीदने कुछ और जाते हैं, खरीद कुछ और ले आते हैं, तो जामुन वाली जो कहानी है बचपन वाली, कि मतलब जामुन खाने के बाद अच्छा तो लगता है, उसके बाद पटक के धोए गए कपड़े।
0: आप तो नहीं धोए?
1: नहीं नहीं, बच गए।
0: वैसे हम लोग बचपन में धोए जाते थे, क्योंकि जामुन के पेड़ से जब आंधी वांधी चलती थी तो फ्रॉक फैला के बस ऐसे ही खड़े हो जाते थे कि गिरेगा ही कहां हमारी फ्रॉक,
1: मैक्सिमम मतलब सब हम ही लूट के ले जाएंगे, ये वाला रहता है ना।
0: और जब कोई चढ़ के पेड़ हिलाता है तो फिर
1: तब भी गिरती है,
0: मजा आता था। वैसे खैर, जामुन जितना फायदेमंद होता है अगर सेहत की दृष्टि से देखें, उसी तरह से ये जो जलवायु का या हम प्रेडिक्शन की बात करें, अगर भविष्यवाणी की बात करें, तो ये पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है। पता है कैसे?
1: अच्छा।
0: बड़े बुजुर्गों के अनुसार एक कहानी है, और अक्सर जब हम देखते हैं कि सूखा पड़ रहा है या प्रकृति में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, तो जामुन का पेड़ जो

0: हमें संकेत देता है।
1: अच्छा,
0: जैसे कि इस साल जामुन की बम्पर बहार आई हुई है बहुत तेजी से। मतलब मैंने जो देखा है पिछले 2-3 दशकों में इतने जामुन कहीं नहीं दिखे जितना जामुन इस वर्ष देखने को मिल रहे हैं। थोड़ी सी चिंताजनक बात है लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। हमारे पास बहुत सारे उपाय होते हैं, हम और आप सजग हो जाएं और भविष्य के लिए, भविष्य निर्माण के लिए सजग रहें, इसीलिए ये सब बातें कही जाती हैं। इस साल बाजार में भी जामुन बहुत दिख रहे हैं,
1: ठीक है, दिख रहा है।
0: जहां भी देखिए जामुन के पेड़ों के नीचे जामुन के ढेर लगे हैं। जिन पेड़ों पर पिछले साल इक्का दुक्का फल आए थे शिवम, वो भी इस बार जामुन से लदे हुए हैं। और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है
1: पूछिए, बताइए क्यों।
0: हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि जिस गर्मी में जामुन ऐसे ढेरों गिरते हैं उस साल सूखा पड़ता है।
1: देखिए ये बात नहीं पता थी और मुझे लग रहा है बहुत से लोगों को शायद ये बात पता हो लेकिन बहुत से लोगों को नहीं, मुझे नहीं पता थी।
0: और ये सिर्फ कहावत या मान्यता नहीं है, बुजुर्गों का ये पारंपरिक ज्ञान वनस्पति शास्त्र के हिसाब से भी बिल्कुल सटीक है, साइंटिफिकली ये प्रूवन है। विज्ञान में इस प्रक्रिया को मास्टिंग या स्ट्रेस फ्रूटिंग कहते हैं। पेड़ों के खुद को खत्म करके ज्यादा से ज्यादा फल देने के इस आखिरी प्रयास को सुसाइड फ्रूटिंग या बम्पर क्रॉप भी कहा जाता है। विज्ञान इसके बारे में कहता है कि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यानी अस्तित्व की लड़ाई, जब पेड़ को जमीन के नीचे पानी की कमी महसूस होती है तब पेड़ डिफेंस मोड में चला जाता है। अपनी प्रजाति को जिंदा रखने के लिए पेड़ अपनी सारी ताकत फल बनाने में लगा देता है और नए पत्ते और टहनियों पर रोक लग जाती है। और ऐसे साल में पेड़ नई कोपल निकालना बंद कर देता है और इसका कारण है कि ऊर्जा बचाकर सिर्फ जामुन का उत्पादन यानी फल का उत्पादन बढ़ाता है। और इसीलिए पिछले साल कम फल वाले पेड़ भी इस बार लदे हुए हैं। और इस भविष्यवाणी और सूखे से रिश्ता को हम अगर देखें तो हमारे बड़े बूढ़ों का अनुभव बिल्कुल सही है, क्योंकि पेड़ मौसम के बदलाव को पहचान लेते हैं और ऐसे में जामुन की जड़ टैप रूट बहुत गहराई तक जाती है। इसलिए जब भूजल स्तर बहुत नीचे हो जाता है तभी जड़ों को तनाव महसूस होता है और ये तनाव ही आने वाले सूखे का संकेत है। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि जामुन का पेड़ आत्महत्या नहीं कर रहा बल्कि खुद का बलिदान देकर अगली पीढ़ी को जन्म दे रहा है। और यहां हमारे पूर्वजों का ज्ञान, अनेकों पीढ़ियों का अनुभव और विज्ञान एक महत्वपूर्ण बिंदु पर एक है, मतलब सहमत है एक दूसरे से। और इस साल जामुन का स्वाद लें पर प्रकृति के सूखे के संकेत को गंभीरता से देखें,
1: बहुत गंभीरता से लें। देखिए यही हम अभी सोच रहे थे दिमाग में कि देखिए प्रकृति ने कितना कुछ डिजाइन किया हम लोगों के लिए। अभी आपने जो बोला कि जामुन का पेड़ जो है वो कोई भी पेड़ हो जो सूखा पड़ना होता है, आने वाले मौसम की जानकारी उसे पहले हो जाती है, वो पेड़ है वो बोल नहीं सकता। इंसान बोलने के बावजूद, सब कुछ जानने के बावजूद जल का दोहन करता है अपनी बातों को, या अपने जो कार्य है कि भाई हम किसी भी तरीके से कोई ऐसा कार्य ना करें कि जिससे पानी का नुकसान हो और चीजें खराब हो, लेकिन वो चीजें हम नहीं कर पाते। और पेड़ जो बेजुबान है,
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शिवम। आने वाले सूखे या भीषण गर्मी, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है उसके दौरान जब भूजल स्तर बहुत नीचे चला जाता है तो पेड़ को जल तनाव यानी वाटर स्ट्रेस महसूस होता है। और इसके पीछे मुख्य प्रक्रिया संकेत है तनाव में प्रजनन यानी स्ट्रेस रिप्रोडक्शन। और पानी की कमी का अंदेशा होने पर पेड़ खुद को बचाने के बजाय अपनी ऊर्जा आने वाली पीढ़ियों को यानी बीजों और फलों को पैदा करने में लगा देता है। तो हम और आप क्यों नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें वाटर स्ट्रेस क्यों नहीं हो रहा है भाई, हम क्यों नहीं जल बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, करिए। और आज के मुद्दे पर यानी सूखा या अकाल या किसी भी प्रकार का प्राकृतिक संकट क्या कारण है उसके, और आप और हम अपने दैनिक दिनचर्या में क्या बचाव के उपाय कर रहे हैं।

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ सिर्फ और सिर्फ 100.7 एफएम रेनबो पर,
1: जहाँ पर शिवम के साथ मैं अंजू शुक्ला भी हूँ। एनर्जी जबरदस्त रहती है आपकी। 8:50 का वक्त हो गया। शिवम, ईमेल्स बहुत सारे आ चुके हैं ऑलरेडी हमारे मुद्दे पर, हमारे बहुत सारे श्रोता राय भेज रहे हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ कह रहे हैं।
2: बिल्कुल, एकदम माशा अल्लाह वाला स्टाइल में घनश्याम सिंह जी ने लिखा है। नारायण नगर ए फैजाबाद रोड लखनऊ से लिखते हैं कि शिवम भैया जी, अंजू मैम को श्रद्धा पूर्वक शुभ प्रभात और प्रणाम। मैं समस्त से बहुत समय से आदरणीय अंजू शुक्ला जी आपको सुनना चाहता था, बहुत निक लग रहा है और वैसे आप गीत की तारीफ की है, मुद्दे से भी नहीं लिखा लग रहा है, अभी भी जगह है। बिल्कुल एकदम
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बस ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला मेल किसका है, ये है मनोज विश्वकर्मा जी और इन्होंने भी गुड मॉर्निंग भेजा है और ये सुबह से सुन रहे हैं प्रोग्राम, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमें सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ जिला बलौदा बाजार ग्राम ताराशिव मोहल्ला ठाकुर चौक से और ये मेल जब इन्होंने लिखा था तब हमने मुद्दा ही नहीं अनाउंस किया था।
2: ये भी बात है। तो विकास जी भी ऐसे ही कुछ लिख रहे हैं। हेलो सर, नमस्कार मैम, चरण स्पर्श, मैं विकास, गांव सलीद, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव से आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ और कार्यक्रम की तारीफ की है और 2 कप कॉफी भी भेजी इन्होंने।
1: क्या बात है। अच्छा, कॉफी है कि चाय है, कैसे पता?
2: ये ऐसे देखिए कि शक्ल देखने में नहीं लग रहा है, बिल्कुल ब्लैक टी वाली टाइप वाली।
1: अच्छा, ब्लैक कॉफी है। थैंक यू सो मच मोनू जी, आपको भी नमस्ते। हम बिल्कुल अच्छे हैं और लंबे सफर से आई हैं तो स्वागत हमें हमारा किया है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आई होप मुद्दे पर भी आपने अपनी राय भेजी होगी। नेक्स्ट मेल में सोनू परवाना जी ने भी स्वागत किया है और इन्होंने अमेठी से मेल किया, मुझे लगता है समय तो पता नहीं लिखा लेकिन आप लोग अमेठी खालिसपुर ऊंचगांव के रहने वाले, इतना तो हमें याद ही हो गया।
2: बिल्कुल, वो तो सारी चीजें हम लोगों को याद हो गई है, बस वो एक शुरू करने की देरी है जैसे आंचल सेठ खाली।

0: जोधपुर, इन्होंने ईमेल किया है कि अंजू दीदी जी नमस्ते, कल ऋचा दीदी ने आपके आने की खबर पहुंचा दी थी।
1: अच्छा, धन्यवाद ऋचा।
0: और जैसा कि मैंने बोला था कि ये इनके पास ढेर सारी कहानियां हैं, क्योंकि इनके पास कहने के लिए बहुत सारी बातें, हम लोगों के पास सुनने के लिए बहुत ढेर सारी बातें।
1: बिल्कुल, और नीलू जी बिल्कुल आपने भी हमें मेल कर दिया है, तबीयत तो वे ठीक रखिए, ठीक है। और ये जो बातें आप हमारे जरिए कहलाना चाह रही हैं, आप खुद भी तो कह सकती हैं अपने दोस्तों को, है ना। खैर, बेनित कुमार जी यानी विनीत कुमार जी अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से भी इनका भी मेल आ गया है। गुड मॉर्निंग भेजा है इन्होंने हम दोनों को, और इन्होंने आगे लिखा है सुपरहिट प्रोग्राम और आप लोग कर रहे हैं, और आप लोगों ने जो अभी बात कही, सुबह चारपाई से उठने वाले पहले अपने हथेली को देखना चाहिए, उसको चूमना चाहिए, फिर माता पिता का नाम लेना चाहिए और फिर धरती माता के चरण स्पर्श करना चाहिए, है ना। यहाँ ये लिखना चाहते होंगे, मेल अधूरा रह गया, कोई बात नहीं।
0: जनवेश कुमार लिखते हैं, गुड मॉर्निंग आदरणीय शिवम सर जी, गुड मॉर्निंग आदरणीय अंजू शुक्ला मैम जी, कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल जबरदस्त,
0: आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बेहतरीन सा प्रोग्राम चल रहा है, ऐसा इन्होंने लिख के भेजा है।
1: और सदाबहार गीत कार्यक्रम की तारीफ भी लिखी है।
0: जी हाँ, बहुत शुक्रिया।
1: और कोमल तिवारी जी ने भी, दिल छू लेने वाले गाने आप बजा रहे हैं भैया और दीदी, बड़े थैंक यू सो मच। मुद्दे पर कोई मेल आया है, दिख रहा है, शशांक त्रिपाठी जी का मेल पढ़ते हैं, इन्होंने क्या लिखा?
0: लिखते हैं, नमस्ते आप दोनों को, बारिश के पानी को स्टोर करना बहुत ही आवश्यक है, कितना सारा मूल्यवान बारिश का पानी नाली में बहकर बेकार हो जाता है, इसे बचाने के लिए गवर्नमेंट को जन भागीदारी के साथ मिलकर महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए, थैंक यू। और ये शशांक त्रिपाठी जी लखनऊ से हमें ईमेल कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, और सुधांशु जी ने भी हमें बहुत सारी बातें लिखकर भेजी हैं, आई होप आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया होगा, अपने खुद के विचार आपने लिखे होंगे आज के मुद्दे पर। आपने हमें मेल किया है भगवतीपुर पोस्ट महोना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब लखनऊ से, कार्यक्रम की तारीफ की है, इसके साथ साथ लिखते हैं आज के मुद्दे पर कि दैनिक उपयोग में जल की बर्बादी रोकने के उपाय जो ये करते हैं, ब्रश करते समय, बर्तन धोते समय, हाथ धोते समय नल को लगातार खुला न रखें, जब जरूरत हो तभी पानी खोलें, गाड़ियों को धोने या आंगन की सफाई के लिए सीधे पाइप का इस्तेमाल करने के बजाय बाल्टी और मग का प्रयोग करें, इससे बहुत सारा पानी बचता है। रसोई में दाल चावल सब्जी और फल धोने के से बचे हुए पानी को नाली में बहाने के बजाय घर के पौधों गमलों में डाल दें। बारिश के पानी को बचाने के लिए छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करें ताकि वर्षा का जल सीधे जमीन के अंदर जाकर भूजल स्तर को बढ़ा सके। अपने आसपास के पुराने तालाबों कुओं पोखरों को साफ सुथरा रखें, हैं भी क्वेश्चन मार्क। आगे लिखते हैं कि बारिश के पानी को संभाल सकें ताकि ये प्राकृतिक संसाधन और जरूरत के समय पे काम आ सके। खाली जगहों पर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी की नमी को रोककर रखती हैं और वर्षा चक्र को ठीक करने में मदद करती हैं। और इनके जो निजी विचार हैं, पानी की हर एक बूंद की कीमत को समझना, उसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम आज अपने रोज के जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके पानी की का आदर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में सूखे जैसी गंभीर मुसीबत से बचना मुश्किल हो जाएगा। जल की सुरक्षा ही हमारे भविष्य का आधार है।
0: बिल्कुल सही कहा सुधांशु जी, जो जितनी भी इन्होंने कहानियां ये नोट की हैं, इन्होंने हम तक पहुंचाई है, इसमें से अगर मुझे लगता है कि अगर दो तीन भी अगर सभी लोग मिल के अगर फॉलो कर लेना कायदे से,
1: बिल्कुल उसे अपनी हैबिट में आदत में डाल लें,
0: हाँ, तो समझिए कि बहुत बड़ी जो है परेशानी हम लोग टाल सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: घनश्याम जी ने मुद्दे पे लिख दिया है, बहुत ही शानदार सा ईमेल लिखा है, अकाल क्यों होते हैं इसकी हेडिंग है, और ये नारायण नगर ए फैजाबाद रोड लखनऊ से हैं, और लिखते हैं शिवम भैया जी और अंजू मैम जी को श्रद्धा पूर्वक सुप्रभात। आगे लिखते हैं कि
1: ये बात तो इन्होंने बिल्कुल गलत लिखी है कि कुछ ही लोगों का ईमेल पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं है, हम सबके ईमेल्स पढ़ते हैं और किसी से हमारी ना कोई खास दोस्ताना है ना किसी से कोई दुश्मनी है ना, सब हमारे लिए बराबर है।
0: बिल्कुल सही कहा, और हम अभी सुबह से हम ईमेल पढ़ रहे हैं भाई,
1: बिल्कुल
0: शिकायत वाला तो मौका ही हम लोग नहीं देते। तो हालांकि इन्होंने इसके पानी को बचाने के लिए जो सुझाव लिख के भेजा है वो वाकई काबिले तारीफ है कि ऐसा होता। अच्छा देखिए, अक्सर होता नहीं होता है कि हम जब सुबह सुबह उठते हैं तो तमाम पानी जो है वेस्ट हम करते हैं बहुत से चीज़ों के लिए, कि जरूरत पड़ती है हमें थोड़े से पानी की जरूरत में होती है लेकिन हम वेस्ट ज़्यादा कर देते हैं।
1: अरे भाई, बहुत सारे लोगों की तो नींद ही नहीं खुलती है जब तक मतलब टैप खोल के बैठ जाते हैं बाथरूम में, शक्ल देखते रहते हैं नल की बाल्टी की, और उसके बाद जब पानी ओवरफ्लो होने लगता है बहता रहता है उनके पैरों तक पहुंचता तब उनकी नींद। अच्छा, हमें नहाना भी है,
0: हाँ, बाथरूम में
1: बाथरूम में बेड पर नहीं,
0: याद आता है बाथरूम में।
1: तो चलिए भाई, ये जो एफर्ट्स हैं, छोटे छोटे एफर्ट्स आप करिए और ये छोटे प्रयास बड़ा रंग जरूर दिखाएंगे। 8:56 हो चुके हैं, इस घंटे को हम वाइंड अप करते हैं, लेकिन मिलते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों के बाद।
0: चलिए फिर, गुड मॉर्निंग लखनऊ में, धड़कन लखनऊ की।
1: मुझे लगा कहीं यही हो,
0: नहीं नहीं, मैं सलाम सलाम कर रहा था, ये गाना जो आपने प्ले कर दिया इसमें।
1: बिल्कुल, तो सलाम है आप सभी को, स्टे ट्यून्ड रहिए हमारे साथ।

नमस्कार, सुबह के 9 बजे हैं। अब सुनिए आज के अखबारों की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने वैश्विक साझेदारी के नए मॉडल का प्रस्ताव रखा। इस दौरान उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात हुई। आज सभी समाचार पत्रों ने इस खबर को अपनी सुर्खियों में शामिल किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, मोदी ने सबके लिए मांगा समता का हक। वॉइस ऑफ लखनऊ ने लिखा है, G7 सम्मेलन में गर्मजोशी से मिले मोदी ट्रंप। अमृत विचार ने लिखा है, ट्रंप की मौजूदगी में मोदी ने उठाया नाविकों की मौत का मुद्दा। वहीं स्वतंत्र भारत ने इसे अपनी हेडलाइन बनाते हुए लिखा है, मोदी 16 महीने बाद ट्रंप से मिले। फ्रांस में G7 समिट में साथ बैठे, 5 मिनट की कल ट्रेड डील पर बात संभव। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए 21 जून को नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा से पहले सरकार ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से छापते हुए लिखा है, नीट यूजी पुनर्परीक्षा की सुरक्षा के लिए 22 तक टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रोक। इसके साथ ही अखबार ने उत्तर प्रदेश में परिषदीय स्कूलों में 8 दिन गर्मी की छुट्टियां बढ़ाए जाने, संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा में अलीगढ़ की वंदना सिंह के टॉप करने को भी सुर्खियों में शामिल किया है। सरकार ने दवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा को देखते हुए कफ सिरप की बिक्री के नियम सख्त कर दिए हैं। इस खबर पर अखबार ने लिखा है, डॉक्टर की पर्ची के पर ही अब मिलेंगी खांसी की दवाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मुहर्रम, नीट परीक्षा व कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने जन शिकायतों में लापरवाही और भ्रष्टाचार पर कड़ा संदेश दिया। दैनिक जागरण ने इसे अपनी हेडलाइन बनाते हुए लिखा है, भ्रष्ट अफसरों को योगी का अल्टीमेटम, एक दिन में 150 से ज्यादा को कर दूंगा निलंबित। अखबार ने प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों के लिए विशेष TET होने को भी प्रमुखता दी है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में दूसरे दिन की SIT जांच पर लिखा है, चंपत राय और गोपाल राव से पूछताछ, कब्जे में लिए दस्तावेज। NCR में नमो सिटी नाम से 4 नए ग्रीनफील्ड शहर बसाए जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना की बोर्ड बैठक में तय हुआ कि इसके लिए यूपी, हरियाणा व राजस्थान की सरकार प्रस्ताव देंगी। नवभारत टाइम्स ने प्रमुख खबरों के साथ इसे भी सुर्खियों में शामिल किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो, जिस पर जारी है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत।
1: गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग,
2: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग,
3: गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और देखिए, गुड मॉर्निंग तब अच्छी हो जाती है अंजू जी, जब मंगलवार का दिन हो, बगले में भंडारा लगा पड़ा हो, आपके घर ही के बगल में नहीं,
2: और उसके अलावा पूरा दिन तब व्यर्थ हो जाता है जब आप बड़ी देर तक लाइन में लगे रहे और आपका नंबर आने पर ही पूरी खत्म हो जाए।
3: हाँ, वही कह, देखिए ये बिल्कुल सही बात बोली है कि दुनिया
2: शिवम का दर्द है,
3: मतलब दुनिया की सारी तकलीफ एक तरफ और ये वाली तकलीफ एक तरफ, कि मतलब भाई साहब दोपहर के 2 बजे गमछा डाल के एकदम ऐसे घूंघट घूंघट बना के हम गए और हमारी बारी आई तो कह रहे भैया इधर से आ लीजिए, पूरी खत्म हो गई।
2: नहीं मतलब एक होता है खत्म हो गई, अभी फिर से बन के निकल के आ रही है, 2 मिनट वेट कर लो, और एक होता है कि भंडारा ही समाप्त हो
3: गया। नहीं, वो भगोना दिखा रहा भैया,
2: समापन हो गया।
3: हाँ।
2: अरे दादा, बहुत तकलीफ, मतलब हम क्या ही हिदायतें, क्या
3: लेकिन
2: मतलब
3: उसके पहले हम 2 जगह पूरी खा चुके थे।
2: अच्छा, ये देख लो,
3: लेकिन मैं चालाक आदमी हूं,
2: बहुत बहुत चालाक हो तुम, बहुत चालाक हो, और छोले भटूरे भी तो खाए थे, वो भी बता दो।
3: नहीं, उसके बारे में अगले बार बताएंगे। फिलहाल एमके राज मुनीस जो है ये हमें बड़ा ही चटपटा सा ईमेल लिखे हैं।
2: अच्छा,
3: हां लिखते हैं,
2: यहां भी स्वाद है,
3: बिल्कुल एकदम पूछे मत। लिखते हैं कि अंजू दीदी, शिवम सर जी को, मुनीस कुमार राज का सुप्रभात। अंजू दीदी कहां थी आप भाई, हमको सबसे पहले
2: थे आप लोगों के आसपास, आप लोग ध्यान ही नहीं देते,
3: कह रहे हैं कि जग सूना सूना लग रहा था। आप आई तो ऐसा लग रहा है कि मुरझाए पेड़ों को पानी मिल गया। मैंने बोला ना कि
2: क्या बात है,
3: बिल्कुल दिख रही है चटपटा वाला। और ये मुद्दा कह रहे हैं भैया, मुद्दा एक बार फिर से बता दीजिए, मुद्दा सुनने के टाइम जो है नेटवर्क गड़बड़ा गया था और मुद्दा जो है सुन नहीं पाए थे।
2: कोई बात नहीं, देखिए हम फिर से बता देते हैं, उन सबके लिए बता देते हैं जिन्होंने अभी अभी हमें ट्यून किया है, हमें यानी 100.7 FM रेनबो को ट्यून किया है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग लखनऊ का ये अगला घंटा अब से लेकर 10 बजे तक आपके साथ ये सफर चलता रहेगा। और आज जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम आपसे बात कर रहे हैं वो ये है कि आज का दिन यानी तारीख 17 जून और पूरी दुनिया मना रही है संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। जब भूमि क्षरण होता है, जल संकट होता है, सूखा आता है, तो उससे बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य। और अगर कारणों की बात की जाए शिवम, तो बहुत सारे कारण हैं अकाल या सूखा पड़ने के। अनियमित और कम वर्षा, जलवायु परिवर्तन जो बहुत तेजी के साथ हो रहा है, भूजल का अत्यधिक दोहन, वनों की कटाई, जल स्रोतों का अधिक्रमण, जैसे कुआं तालाब तो अब तो दिखते भी नहीं है, बस कुआं पूजन के लिए बस कहीं कहीं प्रतीकात्मक तौर पे रखे गए गांवों में भी, और उनका पानी तो बिल्कुल पीने लायक नहीं है,
3: ये पानी ही नहीं है, सूखी गया है, जी बिल्कुल सही कहा।
2: और पानी की बिल्कुल जिस तरह से बर्बादी की जा रही है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो निकट भविष्य में हमें लगता है सूखे की ओर ले जा रहे हैं। और इससे बचाव के उपाय क्या हम और आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं, ये आपको बताना है आज के मुद्दे पर।
3: जी हाँ, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर आप अपना मुद्दा हम तक शेयर कर सकते हैं। फिलहाल बहुत सारे ईमेल भी आ चुके हैं और
2: अगला मेल किसका, एक मेल और पढ़ लेते हैं उसके बाद हम।
3: महेंद्र दीपन जी लिखे हैं, बड़ा ही शानदार सा ये लिखते हैं कि इनका संदेश है कि मुझे संदेश इतना देना है कि प्रकृति बचेगी तभी हम बचेंगे, आइए हम सब मिलकर हरा भरा भविष्य सुनिश्चित करें। और आगे लिखते हैं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार, आशा है कि आप हालिया यात्राओं यात्राएं बहुत ही सुखद यादगार शानदार रही होंगी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और यकीनन हम बहुत सुखद अनुभव के साथ वापस आए।
3: जी, लिखते हैं कि हम सभी को बूंद बूंद पानी बचाने का संकल्प लेना चाहिए, घर के कामों में पानी सीमित उपयोग करें और पाइप के बजाय बाल्टी का इस्तेमाल करें। पेड़ ही वर्षा के कारक है, मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को अपना जन्मदिन या किसी विशेष अवसर पर कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए और पालना भी चाहिए उसे। हमें अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए कुओं, बावड़ियों और तालाबों को साफ रखकर उन्हें फिर से जीवित रखना चाहिए।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं, और अगर इन बातों पर हम इन बातों पर अमल करें तो मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना, बिल्कुल मैजिक मैजिक हो जाएगा, है ना। एक मेल है, एजुकेशन प्रेप्स ये इनका हैंडल है, और ये है सौरभ यूपी अमेठी से, तहसील गौरीगंज। प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, तुम बताओ अपना हाल कैसे हो। अच्छा, मतलब हमें लगता है कि हम

0: लखनऊ में है तो हम आप करके बात करते हैं तो अच्छा लगता है ज्यादा।
1: बिल्कुल भाई, ये हमारी पहचान है।
0: वैसे हम अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं। फिलहाल म्यूजिकल ब्रेक 9:07 और ये लीजिए हो गए हैं 9:08। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। अंजू और शिवम है आपके साथ।

0: यहाँ पर कुछ भी कच्चा नहीं होता, सब कुछ पक्का और बिल्कुल फैक्ट के अनुसार होता है. और इसीलिए पक्की पक्की खबर देने के लिए हम डायरेक्ट ट्रैफिक विभाग चलते हैं और वहाँ से हमारे साथ जुड़ते हैं हर रोज ट्रैफिक SI विकास सिंह सर, जो आपको देते हैं लखनऊ के ट्रैफिक की अपडेट ताज़ा तरीन. बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सर.
1: मैम गुड मॉर्निंग. लखनऊ सभी श्रोताओं को नमस्कार. आज लखनऊ शहर में वर्तमान में सभी जगह यातायात सामान्य गति से गतिमान है. क्योंकि पीक आवर्स का समय है तो कुछ रोड जैसे कि हमारा लखनऊ अयोध्या मार्ग में कमता के पास में थोड़ा सा, कमता पॉलिटेक्निक के पास में थोड़ा सा प्रेशर है. और वहीं दूसरी तरफ अगर सीतापुर की बात करें तो दुबग्गा के पास में, तो ये बस थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट है. बाकी आज कहीं अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है वर्तमान में. आज जैसा कि दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक तो मैच है और इस मैच के दौरान हमारा जो शहीद पथ मार्ग है और सुल्तानपुर रोड, ये दो रोड जो है भारी वाहन और कमर्शियल वाहनों के लिए प्रतिबंधित रहता है. और ये हम लगातार 9 बजे से ये प्रतिबंध चालू रखते हैं और इस दौरान लगभग शाम के 9 एंट्री तक या उसके बाद तक जो है ये मैच

0: थी तथा वहाँ इकाना स्टेडियम से जो दर्शकगण हैं उनके जाने के बाद वहाँ की जो यातायात व्यवस्था है वो सुगम होने तक हम ये डायवर्जन रखते हैं भारी वाहन और कमर्शियल वाहन का। तो जो भारी वाहन और कमर्शियल वाहन चालक हैं और उनके जो स्वामी हैं वो कृपया इसको पहले से ही जानते रहेंगे। तो आप जो है यदि सुल्तानपुर रोड की तरफ से आ रहे हैं तो किसान पथ का प्रयोग करेंगे, वहीं दूसरी तरफ यदि आप कमता की तरफ से हैं और या कानपुर रोड की तरफ से हैं तो
1: जी
0: कमता की तरफ होने पर आप पॉलिटेक्निक विजयपुर अंडरपास इन मार्गों का प्रयोग करें। आप शहीद पथ के प्रयोग से बचें ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। दूसरी दूसरी तरफ जो हम पिक एंड ड्रॉप पॉइंट रखते हैं पूर्व की भांति ही पिक एंड ड्रॉप पॉइंट रहेगा और ये पिक एंड ड्रॉप पॉइंट अवध बस अड्डे के पास में तथा दूसरी तरफ सुशांत गोल्ड सिटी थाना के पास में और जो हमारा 200 सैया मातृ शिशु अस्पताल है वहां पर पुलिस मुख्यालय के पीछे हम पिक एंड ड्रॉप पॉइंट रखते हैं।
1: जी
0: वहीं दूसरी तरफ यह सीएल तिराहे के बाद इकाना की तरफ ओवरहेड टैंक की तरफ भी पिक एंड ड्रॉप रहता है और यहीं पर हमारी पार्किंग व्यवस्था रहती है। तो श्रोताओं से अनुरोध है कि यदि आप मैच देखने जा रहे हैं तो अपने वाहनों को एससीएल तिराहा होकर के पार्किंग स्थल पर ले जाएं और पार्किंग स्थल पे ही प्रॉपर पार्क करें। दूसरा आज जो है चंद्र दर्शन के अनुसार
1: जी
0: जो इस्लामिक माह है उसकी शुरुआत हुई है और
1: जी
0: ये जो है इसमें पहला मुहर्रम आज है और पहले मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समुदाय द्वारा जुलूस निकाली जाती है जिसे शाही जरी का जुलूस कहा जाता है।
1: जी
0: यह शाम को 7 बजे से लगभग निकालेंगे और ये बड़ा इमामबाड़ा थाना क्षेत्र चौक से प्रारंभ होकर रूमी गेट होते हुए घंटा घर तिराहा शीश महल और सतकंडा तिराहा रईस मंजिल छोटा इमामबाड़ा था ये थाना ठाकुरगंज के अंतर्गत आता है मैम।
1: जी जी
0: यहाँ पर जो छोटा इमामबाड़ा है वहाँ ये जुलूस समाप्त होता है।
1: जी
0: तो इस दौरान जो ये मार्ग है हमारा चौक क्षेत्र का ये जो है यातायात के लिए प्रतिबंधित रहेगा और इस दौरान आप डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग से हम डायवर्जन करेंगे तो आप डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग से होकर के अपने गंतव्य को जाएं। बड़े जो बड़ा इमामबाड़ा है वो उस तरफ जो है यातायात प्रतिबंधित रहेगा। तो
1: जी
0: चौक क्षेत्र में यदि चारों तरफ से आप आ रहे हैं बड़े इमामबाड़े की तरफ शाम के 7 बजे का तो आप कृपया अवॉइड करें वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें ताकि आपको असुविधा का सामना ना करना पड़े। कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है इस दौरान मैच के दौरान अथवा जुलूस के दौरान यदि किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो हमसे तत्काल संपर्क कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 94-54-41-55। हम सदैव जो है आपको बेहतर यातायात उपलब्ध कराने के लिए तत्पर हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी विकास जी, क्योंकि आज मुहर्रम की शुरुआत हुई है और ऐसे में बहुत सारे लोग गर्मी में उस तरफ जाते हैं पुराने लखनऊ का दृश्य देखने, आनंद लेने और शाम अपने परिवारजनों के साथ बिताने के लिए, तो आज उसे भी अवॉइड करना चाहिए। तो जिन लोगों ने आपके द्वारा दी गई इस जानकारी को सुना वो बिल्कुल अलर्ट रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमेशा की तरह ये अपडेट देने के लिए, हमारे श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू,
2: बहुत शुक्रिया सर,
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं ये थे विकास सिंह सर TSI, और आप भी अपना ख्याल रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सुनते रहें लगातार
2: 100.7 FM रेनबो पर धड़कन है लखनऊ की, ये बेहतरीन सा गाना।
3: दोस्तों ये मोहब्बत भी क्या चीज है, न जीने देती है न मरने देती है, रात दिन उसका चेहरा मेरी नजरों के सामने रहता है, लाख बुलाना चाहूं फिर भी नहीं बुला सकता। बस अब आप लोगों का सहारा है, दुआ कीजिएगा, क्योंकि अगर वो मुझे ना मिली तो मर ही जाऊंगा मैं।

0: जी हाँ दोस्तों, हरिओम हरिओम करते करते हम ये भी देख सकते हैं, ये भी मतलब उम्मीद लगा सकते हैं कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं भाई। कुछ भी मतलब थोड़ी बहुत जो बूंदा बांदी है, वो जो होता है ना कि एक राहत भरी चैन मिलेगी नहीं मिलेगा क्या होगा, इस सारी जानकारी के साथ आज हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी जुड़े हुए हैं अपडेट देने के लिए कि भाई धूप होगी, लू चलेगी या बारिश होगी, क्या होगा, कुछ होगा, आइए जानते हैं उन्हीं से। हेलो सर, नमस्ते।
1: जी नमस्ते
0: सर, बताइए क्या रहेगा मौसम का हाल।
1: जी गुड मॉर्निंग। मौसम की बात करें तो जैसा कि अभी कोई खास एक्टिव सिस्टम मौजूद नहीं है, तो जिस वजह से तापमान में धीरे धीरे अभी बढ़ोतरी होगा।
0: जी
1: तरीके से बढ़ोतरी का क्रम जारी है पिछले 3 दिन से, तो कहीं ना कहीं आज कल परसों 3 दिन थोड़ा तापमान जैसा चल रहा है उसी क्रम में लगभग उसी तरीके से रहेगा, हल्का 1-1 डिग्री ऊपर रहेगा। और बात करें तो जैसा कि नया पश्चिमी क्षोभ आ रहा है 18 और 19 तारीख से, तो थोड़ा उसका असर 20 तारीख को अपने लखनऊ में थोड़ा बादलों की आवाजाही के साथ कुछ छीटा कसी टाइप का पॉसिबिलिटी आगे आने वाले दिनों में बन रही। तो कुल मिलाकर अगर हम ऐसा कहें तो 2-3 दिन
0: जी
1: अभी गर्मी का सबब रहेगा, उसके बाद हल्की सी राहत की उम्मीद है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हल्की सी राहत की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल 3 दिन गर्मी का जो सितम है वो जारी रहेगा।
0: बिल्कुल सर, चलिए लेकिन ये इतना ही काफी है कि अगर 2-3 दिन थोड़ा बहुत अगर धूप हो भी रही है तो कम से कम इतना तो मिल जाए कि हाँ ये जो 3 दिन और 4 दिन जितने दिन गर्मी हो रही है उतना तो कम से कम थोड़ी बहुत राहत मिल जाए, तो ये थोड़ी सी सुकून वाली बात है कि जो लोग बिल्कुल एकदम तड़फड़ाए हुए हैं बारिश के लिए, उनके लिए 2-4 बूंदें अगर गिरी जाती हैं तो अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अपडेट देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए।
1: धन्यवाद।
2: थैंक यू सर। तो ये थे वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी, और मौसम की तो अपडेट हमें मिल गई। अब एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आएंगे बढ़िया वाले गाने के साथ वापस। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: हैप्पी बर्थडे टू ऑल द लिसनर्स जिनका आज हैप्पी वाला बर्थडे. बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा हमारी तरफ से ब्लेसिंग्स.
1: बिल्कुल. वैसे एक बात बताएं आपको, ये जब ये हैप्पी बर्थडे वाला गाना बजता है और सभी लोग ऐसे ताली बजा रहे होते हैं और जो लोग नहीं बोल रहे होते हैं भाई हम चुप रहेंगे, हम बोलेंगे नहीं,
0: उनको केक नहीं मिलेगा.
1: नहीं नहीं नहीं, वही लोग केक की तलाश में रहते हैं कि कौन सा बड़ा वाला हिस्सा किस प्लेट में गया, वही लेके भागूंगा मैं.
0: जैसे शिवम का घूम फिर के इनकी पूरी दुनिया का खाने पीने पे टिक जाती है.
1: खाने पीने की नहीं, बात ऑब्जर्वेशन की है, क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया
0: तो आप माहिर हैं.
1: हाँ बिल्कुल,
0: महारत हासिल है.
1: मतलब जिस

0: प्लेट में दो समोसे हैं, वो समोसे की प्लेट जरूर देखी जाती है, किधर गई किधर गई किधर गई, वहां गई, वहां
1: से
0: उठा के ले
1: आती है, जिसमें चटनी ज्यादा है, है ना, हरी वाली।
0: हाँ, तो मतलब देखिए कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो पार्टी वार्टी में होती है, पार्टी विशेष में। अभी देखिए शादी ब्याह का भी सीजन चलने लगेगा, तो जितने लोग हैं मतलब जो महिलाएं हैं वो लोग तो इतने भारी भरकम कपड़े एक दो पहन के चले आते हैं, तो उनको अपनी कुर्सी से और चाउमिन के स्टॉल तक जाते जाते उनको मतलब तीन दिन लगे, तो वो क्या करती है कि छोटे छोटे बच्चों को भेजती है, कैसा है कि जाओ बाबू लेके आओ लेके आओ, तुमको खाना है कि नहीं खाना है, खाना तो खुद होता है।
1: उनके पास आसपास शिवम जैसे लोग भी होते हैं। हाँ, कि अच्छा मैम आप परेशान मत होइए, मैं लेके आ रहा हूँ।
0: हाँ, मेरे घर में मतलब जैसे बुआ हुआ लोग हैं तो लोग नहीं जाते, तो उनका काम मुझे तो करना पड़ता है।
1: हाँ,
0: तो
1: बिल्कुल, मतलब ये अपना एक्सपीरियंस हमेशा हमेशा शेयर करते रहते बीच बीच में। वैसे जब बात आती है शादियों की, पार्टीज की, तो भाई हम मुबारकबाद उन्हें भी दे दे जिनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी।
0: कहने का मतलब यही था कि भाई अगर आपका बर्थडे हो चाहे एनिवर्सरी हो, बहुत सारी शुभकामनाएं, खुश रहिए, एकदम बढ़िया, एकदम स्माइल करते रहिए पूरे, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी को और ज्यादा खुशियों से भरिए। हाँ? और कुछ अच्छा जरूर करिए, एक पेड़ जरूर लगाइएगा आज, है ना, और उसे बिल्कुल बड़ा करिएगा, ऐसा नहीं कि लगा के भूल जाए,
0: और टिंडे तरोई की सब्जी को पनीर मान के खाइएगा।
1: ये बढ़िया था। वैसे जब टिंडे और तरोई की बात आती है तो ये सब सेहतमंद चीजें हैं, ठीक है, रोज रोज
0: पनीर। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि एक सुखी दाम्पत्य जीवन का यही एक मंत्र है।
1: अच्छा अच्छा, यहाँ पर तो अनुभव नहीं है, ये कैसे समझ में
0: वो मैंने कहीं पढ़ा था, बस कॉपी पेस्ट कर दिया,
1: मतलब तैयारी है ना। चलिए ठीक है, अच्छा वापस आते हैं। अब जल्दी जल्दी से ये हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो अपना बर्थडे किस किस के साथ शेयर कर रहे हैं।
0: जी हाँ, वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, वो बातों में बह जाता हूँ मैं।
1: नहीं नहीं, अब यहीं रहो, बहने की जरूरत।
0: तो आज है लिएंडर पेस, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी रह चुके हैं, उनका भी है बर्थडे।
1: बिल्कुल, 18 ग्रैंड स्लैम खिताब, 18 पुरुष युगल और 10 जो है मिक्स डबल्स जीतने का गौरव उनको हासिल है। 1996 अटलांटा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारतीय टेनिस को एक नई पहचान दिलाई थी, बहुत सारी उम्मीदें वहां से शुरू हो गई थी। उसके बाद तो हमारे पास बहुत सारे और भी मेडल्स आए ओलंपिक में भी, लेकिन ये शुरुआत लिएंडर पेस के नाम है। और 2024 में उन्होंने इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया उन्हें, और ऐसा सम्मान पाने वाले वे पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी बने, तो उनको हम आज उनके बर्थडे पर बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं।
0: जी हाँ, और दूसरे हैं 1970 में जन्मे निशिकांत कामत, जो हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक और अभिनेता भी रह चुके हैं।
1: बिल्कुल, और इसके अलावा एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़ है सोना महापात्रा की, इनके गाए हुए गाने अंबर सरिया, नैना बहारा बहारा जैसे गीत, बहुत सारे गाने बहुत ही प्यारे हैं, बहुत पॉपुलर हैं, सुप्रसिद्ध गायिका हैं, संगीतकार हैं, गीतकार हैं, अपनी बेबाक राय और सामाजिक मुद्दों पर मुखर आवाज़ के लिए भी ये जानी जाती हैं।
0: बिल्कुल, और भगत सिंह कोश्यारी जो उत्तराखंड के एक राजनीतिक रहे हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी आज बर्थडे है। और ज्योति प्रसाद अग्रवाल, असम के प्रसिद्ध साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी तथा फिल्म निर्माता भी रह चुके हैं, उनका भी।
1: जी, और अमृता राव बहुत ही प्यारी सी एक एक्ट्रेस, जो 17 जून यानी आज ही के दिन 1981 में जन्मी, और बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, विवाह, मैं हूं ना, इश्क विश जैसी फिल्मों में इन्होंने अपना काम बहुत बखूबी पहचान बनाई इन फिल्मों के माध्यम से। और मैं हूं ना कहीं एक गाना जो जिसमें लॉन्गेस्ट एक इन्होंने सीन शूट किया था, और जब डायरेक्टर फराह खान होंगी तो फिर होगा क्या। और इनको भी हम हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, साथ ही साथ एक बहुत ही प्यारी और एक्ट्रेस और सुपर मॉडल है लीसा हेडन, उनका भी आज बर्थडे है। क्वीन, हाउसफुल 3, ऐदल है मुश्किल जैसी फिल्मों में इन्होंने इन्हें आप देख चुके हैं। तो आप सबको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और साथ ही साथ ये गाना आप तक पहुंचाते हैं। वापस आते हैं तो और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारे पास आप तक पहुंचाने के लिए। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: This day in history.
2: जी तो 9:35 का वक्त हो गया है और चलिए अब हम पलटते हैं इतिहास के पन्ने।
3: जी हाँ, तो ये 2 किलो आलू 3 किलो प्याज
2: ये क्या है शिवम?
3: ओह माफ कीजिएगा,
2: मतलब ये तुमने अपने घर के राशन वाला मतलब सामान जो सब्जी की लिस्ट दी है भाभी ने वो पन्ना पलट दिया?
3: नहीं नहीं नहीं, मैं अपना फिर से इतिहास
2: प्रोग्राम में रहो, स्टूडियो में हो है?
3: हाँ, नहीं वो पन्ना पलटने के बाद की तो कुछ और पन्ना पलट गया था वो।
2: कितना भटकते हो।
3: फिलहाल 1885 में स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क हार्बर पहुंची थी। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी हम देखते हैं फिल्मों में देखते हैं या जो फोटोज वगैरह हम देखते हैं, वो आज ही के दिन न्यूयॉर्क शहर में हार्बर पहुंचाई गई थी।
2: ओके, तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और इसके अलावा?
3: और इसके अलावा मंगल पर पृथ्वी के चट्टानों से मिलते जुलते पत्थर 2004 में आज ही के दिन मिले थे। और 2008 में देश में विकसित हल्के लड़ाकू विमान जिसे हम तेजस के नाम से जानते हैं, बेंगलोर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था आज ही के दिन। और 2012 में साइना नेहवाल तीसरी बार इंडोनेशिया ओपन चैंपियन बनी थी।
2: क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बता दी आज के दिन से जुड़ी हुई। और आज के दिन अगर हम उन हस्तियों को याद करें जिनको आज के दिन हमने खोया था, जिनका निधन हुआ था, उनका भी जिक्र करना ज़रूरी है। तो हम नाम लेना चाहेंगे 1674 में शाहजी भोसले की पत्नी तथा छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई जी का बड़े ही सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है और आज उनकी पुण्यतिथि है, उन्हें हम शत शत नमन करते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम अपने ईमेल्स पर नज़र डालें आज के दिन से जुड़े हुए मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है, 17 जून की तारीख है। और आज हमने अपने श्रोताओं को मुद्दा दिया था शिवम कि जब अकाल जैसी स्थिति आती है, कोई भी हम अगर प्रकृति संकट की बात करते हैं, तो ऐसे में हम अपने आप को कैसे तैयार करते हैं, ख़ासतौर पर जब जल संरक्षण की बात होती है और सूखा से निपटने की बात होती है।
3: बिल्कुल सही कहा। तो इस पे बहुत सारे ईमेल भी आए हुए हैं और उस पर हम बातें करेंगे, लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप जितनी हो सके उतनी कोशिश करिए। अक्सर ऐसा होता है कि शादी ब्याह में हम पानी की बोतल जो है पानी पीते हैं और उसका उसमें बहुत ऐसा पानी होता है जो साफ होता है और छूट जाता है। तो कृपया उस, और एक तो सबसे बड़ी बात कि प्लास्टिक और पानी दोनों, मतलब एक तरफ प्लास्टिक की भी मतलब देख रहे हैं कि वो इस्तेमाल हो रहा है और दूसरा पानी नुकसान भी हो रहा है, तो एक साथ दो चीजें आप रोक सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात कि कोशिश करिए कि प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल ना हो, जो वाटर टैंक वगैरह आता है उससे पानी हो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन और अगर आप पानी बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो हर वो जगह जहां आप पानी बचा सकते हैं आपको बस अवेयर रहना है वहां पे।
2: बिल्कुल। और ईमेल्स बहुत सारे हमारे

0: श्रोताओं क्या आए हैं और वो रह ना जाएं आज के मुद्दे पर. बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी हैं, इसके लिए कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं. एक मेल है मोनू जी का
1: जी.
0: और इन्होंने आज के मुद्दे से जुड़ते हुए कहा है कि वर्षा जल संचयन, छतों पर पानी इकट्ठा करने और खेतों में छोटे तालाब या फॉर्म पॉन्ड बनाकर, बारिश के फार्म पॉन्ड्स बनाकर बारिश के पानी को सहेजना, लेकिन तालाब पाटे जा रहे हैं. सरकार ने हर घर जल योजना के फायदे के लिए, लोगों के फायदे के लिए दिया है, लेकिन लोग पानी का दोहन करने लगे हैं. शादी पार्टी में पानी पीते नहीं है, पानी बहाते ज्यादा हैं.
1: जी बिल्कुल. अरुण कुमार जी घमोइया हरदोई से लिखते हैं. अरुण कुमार कुशवाहा, शिवम और अंजू जी को बहुत बड़ा, बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार. आप दोनों लोगों के आने से प्रोग्राम का मजा दुगना हो जाता है. आगे लिखते हैं कि आज वास्तव में आने वाले समय में जल संकट एक बड़ी समस्या होने वाली है. जल की बर्बादी रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है. वृक्षों को अधिक से अधिक लगाना और तालाबों की संख्या बढ़ाकर ऐसी फसल का चुनाव करें जिससे जल कम खर्च हो.
0: बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें भी आपने कही. देखिए, लिखने को बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, कहने को कहते भी हैं कि ये होना चाहिए, ये करिए, ये हो, लेकिन कर क्या रहे हैं, जमीनी स्तर पर क्या कुछ हो रहा है ये भी बताइए. क्या आप लोग उन बातों को अपने व्यवहार में ला रहे हैं ये भी हमें ज़रूर बताइए. और ऐसा होना चाहिए, शायद इसीलिए हम लोग इस तरह के मुद्दों पर चर्चा करते हैं. और प्रवीण जी का एक मेल आया है, लिखते हैं कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, जंगलों और पेड़ों की कटाई और रैपिड अर्बनाइजेशन के हो रहा है. भूजल का अत्यधिक उपयोग और बर्बादी बंद करना होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना होगा. एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा पानी का उपयोग होता है, इसके लिए खेती में ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी की बचत होती है. बरसात शुरू होने से पहले खेतों में मेड़ बनाना और रेन वाटर स्टोरेज के उपाय अपनाने चाहिए. बिल्कुल सही बातें आपने भी लिखी है.
1: और ब्रजेश सिंह दीपू इटहुआ कैसरगंज बराई से ईमेल कर रहे हैं. गुड मॉर्निंग शिवम सर, रंजू दीदी जी, कैसे हैं आप? मुद्दा लिखते हैं कि हम पानी बाल्टी में भरकर नहाते हैं, वो पानी बर्बाद नहीं करते हैं. बाकी तो मेरा खेती किसानी का काम है तो सिंचाई करना ही पड़ता है फसलों के लिए, लेकिन जल है जीवन, एक आस, इसे बचाने का करें प्रयास. इस समय हम नानपाना जा रहे हैं और कार्यक्रम सुनते हुए जा रहे हैं. ये
0: बिल्कुल बस ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए. और वैसे जब बात किसानों की आई है ना
1: जी,
0: तो आप यकीन मानिए, जब सूखा पड़ता है या ज़रूरत के समय बरसात नहीं होती है तो किसानों का जो दर्द है ना, वो मुझे लगता है एक शब्दों में बयान नहीं कर सकते.
1: नहीं हो सकता, बिल्कुल सही कहा.
0: फिलहाल एक गाना सुनते हैं, वापस आते हैं तो आपके ढेर सारे ईमेल्स और भी बहुत कुछ हमारे पास. सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ रेनबो पर.

0: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
0: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
5: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत।
7: जी शुरुआत तो हो ही चुकी है और अब धीरे धीरे समापन की ओर भी हम बढ़ रहे हैं, क्यों?
8: हाँ बिल्कुल, अब 9:45 हो गया है, 15 मिनट और बचे हैं।
7: बिल्कुल, और इन 15 मिनट में कोशिश करेंगे कि हम अपने श्रोताओं की जितने भी ईमेल्स हैं उनको शामिल करें। आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, जल संकट से बचाव के लिए आने वाला जो भविष्य है वो हमारी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे, अगली पीढ़ियों के लिए पानी की कमी ना हो, सूखा या अकाल जैसी स्थिति ना पैदा होने पाए, इसके लिए आप अपने दैनिक जीवन में क्या क्या उपाय अपनाते हैं हमें बताइए। और हमें बताया है fmaakashwani@gmail.com पर। अब मेल मत करिएगा, जितने आए उतने पढ़ लें, यही हमारे लिए बहुत है। तो मेल्स किस किस के आए हैं अब जो हमारे सामने दिख रहे हैं?
8: जी हमारे सामने है हरदयाल सिंह जी का, और ये थोड़ा सा खिसियाए हुए हैं।
7: कह लिए भैया,
8: लिखते हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा सांडी जनपद हरदोई से। सर जी नमस्कार, मैं आज कई दिनों बाद मेल कर रही हूँ, कार्यक्रम पसंद आ रहा है। अंजू दीदी गुड मॉर्निंग, आप मेरा पता सही से पढ़ा करिए।
7: अच्छा,
8: हिंदी में लिखा है संडीला नहीं है, सांडी है।
7: अच्छा, तो हमने कब गलती कर दी भैया? वैसे सांडी ही पढ़ा जाता है, जो आप लिखते हैं वही पढ़ा जाता है। और हम तो भाई बहुत दिनों बाद आए, और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी आपका पता तो मैं हमेशा सांडी हरदोई से पढ़ती हूँ, और अगर कभी गलती हो गई हो बाय चांस जल्दबाजी में तो उसके लिए हम माफी मांग लेते हैं, है ना? अपनों से जब गलती होती है तो माफी मांगने में हम बिल्कुल गुरेज नहीं करते, जरा सा भी नहीं।
8: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगला मेल
7: आर्यन मिश्रा का मेल पढ़ते हैं। आर्यन मिश्रा ग्राम बारी तहसील शाहबाद हरदोई से मेल कर रहे हैं, और इन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग, और आवाज और प्रोग्राम की तारीफ करते हैं, बहुत शुक्रिया। लिखते हैं कि आपका मॉर्निंग शो हर सुबह नई ताजगी और उत्साह लेकर आता है, आपकी आवाज दिन भर दिन की सबसे खूबसूरत शुरुआत बन जाती है, शुभकामनाएं दी है इन्होंने। मुद्दे पर आज कुछ नहीं कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
8: बहुत शुक्रिया। और हमारे बड़े भैया लिखते हैं राजेश कुमार जी,
7: अच्छा
8: शिवम बड़े भैया और अंजू दीदी के चरणों में गिर पड़ूं।
7: उठ जाओ भैया, उठ जाओ, गिरने की जरूरत नहीं है।
8: हाँ बिल्कुल, बस खड़े खड़े नमस्कार बोल दी वही काफी है।
7: बहुत, बहुत,
8: लिखते हैं कि मेरे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में कल शाम के समय उद्यान विभाग को घूमने गया, और इतने ज्यादा जामुन लगे हुए हैं कि कुछ कहा नहीं जा

0: लगता, यानी कि एक एक टहनी पर सैकड़ों जामुन लगे हुए हैं। वही जो आपने कहानी सुनाई, और ये जानकारी सुनकर अच्छी लगी, क्योंकि प्रकृति भी कुछ न कुछ बदलाव जरूर करती है। अच्छे से उसका संतुलन बना रहे हमारी भी जिम्मेदारी है, उसको अच्छे से साथ दें। शोध छात्र राजेश कुमार मोदीपुरम मेरठ से ये ईमेल कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, और जामुन के पेड़ के लिए तो हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं। मतलब जितने भी प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया, और प्रकृति हमें संकेत देती है, जैसे कि जामुन पेड़ के पेड़ की कहावत सुनाई मैंने, कहानी सुनाई आपको। साइंटिफिकली भी वो प्रूवन है कि जब जिस साल ज्यादा फल लगे उस साल सूखा पड़ने की संभावना भी होती है। तो इसीलिए आज का ये जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पर हमारे जितने भी श्रोता हैं, जो जागरूक होता है वो जल संरक्षण भी करते हैं, प्रकृति का दोहन नहीं करते हैं, और अपनी राय भेजते हैं, और उनकी राय जब हम शामिल करते हैं वो इसलिए कि जो बाकी श्रोता हैं, जो सिर्फ रेडियो सुनने नहीं सुनने के लिए नहीं सुनते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं रेडियो से, वो सीखें और उसे अपने जीवन में उतारें।
0: बिल्कुल सही कहा, और जरूरी हो जाता है कि अगर आप उसको धरातल पर उतारेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी इस चीज का ध्यान रखेंगी कि हाँ हमें कैसे जीवन यापन करना है।
1: बिल्कुल, गीता जी लिख रही हैं, जल का करो ना व्यर्थ दुरुपयोग, जितना आवश्यक है उतना ही तुम करो उपयोग, जल संरक्षण हो हम सब का नारा, ताकि संतुलित रहे पर्यावरण हमारा, पानी से तो संसार है, पानी पर हर जीव का अधिकार है, पानी की समस्या है विकराल, जल बचाव की बने मिसाल, तालाब कुआं बचाओ, अपनी धरोहर और संस्कृति पाओ, जितना भी जल बचाओगे आने वाले भविष्य को बचत खाता ही बनाओगे।
0: बिल्कुल, जगमोहन मिश्रा जी लिखते हैं, प्रिया अंजू जी, शुभम जी, सुप्रभात, आज का मुद्दा बहुत संवेदनशील है, हम अगर प्रकृति की संवेदनशील नहीं हुए तो हम जीव हैं हमसे दूर हो जाएंगे और हम अपना अस्तित्व ढूंढते नजर आएंगे। ये लिख रहे हैं कि अंजू जी, दो रोज पहले की बात है, हमारे पड़ोस के वाटर टैंक अलार्म जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझसे रहा नहीं गया, मैं थर्ड फ्लोर से नीचे आया और उनके मकान के पास जाके बोला बेल बजा के कि, मजे की बात यह है कि गेट खोल के उन्होंने पूछा, भाई साहब नमस्कार, कोई खास काम? तो मैंने मुस्कुरा के कहा कि आपका अलार्म बज रहा है। अब वो क्या बोले क्या बताएं, मैं समर ऑन करके लेट गया था, मतलब वो जो टुल्लू है वो ऑन करके सो गए थे और इनकी आंख लग गई, फिर इसके बाद ये जब जाके जगाए हैं तब जाके उन्होंने बंद किया है। अंजू जी, मैं तो अपने सुनने वालों से यही कहूंगा कि सिर्फ तीन काम करिए, वाटर टैंक अलार्म लगवा लें, रूफ टॉप सोलर लगवा लें, और मकान के हर कॉर्नर पर जितना संभव हो बड़े छोटे मझले पौधे जरूर लगाएं, और ये तीनों काम जगमोहन मिश्रा जी ने कर लिया है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छे और जागरूक नागरिक हैं आप, तो और भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तालिब जी ने सिर्फ गुड मॉर्निंग भेजा है रामपुर कटरा बाराबंकी से, वारिस अली खान साहब भी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग भेजा है, इन्होंने सलाम भेजा है जी, बहुत बहुत तारीफ आपने जो भी कुछ मेरे लिए लिखा है इसके बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और आगे इन्होंने आज के मुद्दे पर लिखा है कि मुझे बचपन में विज्ञान में वाष्पन पढ़ाया गया था, हमने पढ़ा था कि नदियों और तालाबों का जल भाप बनकर उड़ने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, इसी प्रक्रिया से बादल बनते हैं और वर्षा होती है, ये तभी संभव है जब वनों की कटाई ना हो, इसलिए मैंने अपने जन्मदिन 5 जून पर पौधे लगाए, अनावश्यक पानी की बर्बादी नहीं करता हूं। दूसरी अहम बात है कि जहां पेड़ अवैध तरीके से काटे जा रहे होते हैं मैं उनका विरोध करता हूं, जिसकी सूचना DFO को देता हूं। बिल्कुल, बहुत अच्छे जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय आप देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद वारिस जी।
0: जी, और शक्ति वाजपेयी, मुद्दे पे मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि पानी की बहुत सही तरीके से
1: चाहती हूँ
0: पानी का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करती हूँ और पानी का रियूज भी करती हूँ, जैसे कि RO का पानी जो वेस्ट निकलता है जब बर्तन धोते हैं तो किचन साफ करते हैं उससे, और कपड़े धुलते हैं, जो भी पानी निकलता है उसको मैं अपने यूज में ले लेती हूँ। और ये गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? अच्छा, फैजुल्लागंज लखनऊ से इन्होंने ईमेल किया है।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग, धन्यवाद मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। और अगला ईमेल है रोशनी रावत का, मुद्दे की बात, सूखा को नियंत्रित करने के लिए हम सभी बारिश का पानी एकत्रित करके कुछ सूखा से निपटारा कर सकते हैं। इन्होंने धन्यवाद लिखा है, फोटो तो भैया जबरदस्त भेज दी है, बड़ा अपडेटेड रहते हैं हमारे जितने लिसनर्स हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इन्होंने गुड मॉर्निंग भेजा और प्रोग्राम की तारीफ की है, और आज सुगंध माटी की प्रोग्राम में शिवम भैया को साथ में रखना है ना, मुझे कल से इंतजार था। बभना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव की रहने वाली, चंडीगढ़ से इस समय हमें प्रोग्राम हमारा सुन रही है, और भाई शिवम की मर्जी है, हम रोक रहे हैं, रुकोगे नहीं रुकोगे?
0: बिल्कुल। और ये लिखे हैं शकील अहमद जी, गुड मॉर्निंग शिवम सर जी, अंजू मैम जी, कैसे हैं आप? मैं जायस जिला रायबरेली से, इन्होंने ईमेल किया है, नो डाउट अंजू मैम, बहुत दिनों बाद जीमेल पर सुन रहा हूं आपको और आपको ये मिस कर रहे थे। लिख रहे हैं कि
1: थैंक यू, हम भी बहुत मिस कर रहे थे इस प्लेटफॉर्म को।
0: एक बहुत बड़ी आपदा है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इसका हमारी इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ता है अगर कृषि अगर खराब हो गई तो।
1: बिल्कुल।

0: और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए और पेड़ जितने लगे उनको बचाना चाहिए, कटने से बचाना चाहिए। और बहुत ही बेहतरीन सी लाइन उन्होंने और भी ढेर सारी लिखी है। फिलहाल शकील अहमद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ईमेल करने के लिए, मुद्दे से जुड़ी राय रखने के लिए।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, 9:53 हो गए, एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद राम मोहन गुप्ता जी का भी मेल है, मुनेश कुमार जी, जावेद पटेल, सिमरन स्वरांजलि, राजेश कुमार, तेज बहादुर यादव, इन सबके मेल्स को हम शामिल करेंगे। एक छोटा सा गाना सुनवा देते हैं जल्दी से।

0: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज़े
3: का अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
5: 9:57 का वक्त हो गया है। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। हमारे कुछ ईमेल्स हमारे श्रोताओं के बाकी रह गए हैं। राममोहन गुप्ता जी ने लिखा है, हम सबकी गैर जिम्मेदारी और लापरवाही के कारण सूखे, अकाल या पीने के पानी की समस्या जूझ रहे हम। जमीन से बोरवेल और मोटरों से खींच खींच कर पानी बेतरतीब बहाते, दिन दिए बिना ध्यान करते हैं रोज यही नादानी। यही नहीं बनाते बड़े बड़े भवन, बिल्डिंग, प्रतिष्ठान, कारखाने, जल संचयन पर देते ना जरा भी ध्यान, बनते समस्या से अनजाने। अब भी वक्त है, जागे, सोचे, समझे, हो जाएं सजग सावधान, वरना आने वाले वक्त में

0: बूंद को तरसेगा पशु पक्षी इंसान। बहुत ही सारी महत्वपूर्ण बातें आपने इस कविता के माध्यम से भेजी हैं। राम मोहन गुप्त अमर लखीमपुर खीरी जी से।
1: जी हाँ, सिमरन सुरांजलि ने हमें ईमेल किया है, लिखती हैं, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों, और लिखती हैं कि मैं पानी वेस्ट नहीं करती हूँ, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन कुछ लोग पानी वेस्ट करते हैं, जैसे कि मोटर चलाकर गाड़ी धोते हैं और पानी बर्बाद करते हैं। हम गाड़ी धोने के साथ साथ नहाने के कपड़े धोने के लिए भी बर्तन में पानी लेकर इस्तेमाल करें, और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो वाटर प्यूरिफायर है उसका जो पानी बाहर निकलता है उसका भी आप री यूज कर सकती हैं, उसका भी दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, और बारिश का पानी इकट्ठा करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेड़ बचाइए, जीवन बचाइए।
0: बिल्कुल। गुरुग्राम हरियाणा में मैं सुन रहे तेज बहादुर यादव जी रायबरेली के रहने वाले हैं, मुद्दे पर कहते हैं कि आजकल तो लगभग हर जगह पानी ही पानी की कमी देखने को मिल रही है। दिल्ली और हरियाणा में तो पानी 400-500 फीट नीचे चला गया है, और हम खुद प्राणी इसके लिए जिम्मेदार हैं। पेड़ों को काटना, जल बचाना, सरकारी नल को टंकी भर जाने से बंद के बाद भी पानी बंद नहीं करना, नाली में बहते रहने देना, हमारी पुरानी विरासत कुएं अब सूखते जा रहे हैं, उनकी मरम्मत नहीं होती, तालाबों को लोग पाटने में लगे हैं, ये बहुत सारे कारण हैं, और इससे बचाव के उपाय भी हम

0: नहीं, पानी की कमी देखने को मिल रही है दिल्ली और हरियाणा में, तो पानी 400-500 फीट नीचे चला गया है और हम खुद प्राणी इसके लिए जिम्मेदार हैं, पेड़ों को काटना, जल बचाना, सरकारी नल को टंकी भर जाने से बंद के बाद भी पानी बंद नहीं करना, नाली में बहते रहने देना, हमारी पुरानी विरासत कुएं अब सूखते जा रहे हैं, उनकी मरम्मत नहीं होती, तालाबों को लोग पाटने में लगे हैं, ये बहुत सारे कारण हैं और इससे बचाव के उपाय भी हमको और आपको ही करने हैं। तेज बहादुर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, विश्व बंधु उपाध्याय जी ने भी हमें मेल किया है, प्रतापगढ़ में हमें सुन रहे हैं और बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा है आज की आवश्यकता है। और ये प्रधानाध्यापक हैं प्राइमरी विद्यालय में, बच्चों को सिखाते हैं कि जब वे नहाने जाएं तो बोतल के बचे पानी को पेड़ों में डालते हुए निकले, और बहुत सारे चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप बच्चों को सिखा रहे हैं जिसका सार्थक परिणाम मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी हाँ, और 9:59
0: जावेद पटेल जी का भी धन्यवाद कर देते हैं, सोलापुर महाराष्ट्र से आपने हमें मेल किया है, थैंक यू सो मच। और मुनेश कुमार जी ने भी दोबारा मेल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का मेल छूट गया हो तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन बस इतना कहेंगे कि भाई पानी बचाइए, एक बाल्टी पानी कम इस्तेमाल कीजिए आज ही से, और जब धरती का पानी हम उससे कहीं ज्यादा निकाल लेते हैं ना तो प्रकृति हमें वापस देती है, कुएं सूखने लगते हैं, तालाब खत्म होने लगते हैं, खेत प्यासे रह जाते हैं, तो अब हमारा और आपका भविष्य सूखे के चपेट में ना आए इसके लिए जरूरी है कि हम और आप आज जाग जाएं और पानी की बचत करें। फिलहाल गुड मॉर्निंग लखनऊ में आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम सुगंध माटी की में, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात के दौरान श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए बातचीत और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तीसरे सरसंघचालक बाला साहब देवरास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि उनका त्यागमय जीवन, विचार और संगठनात्मक कौशल सभी का सदैव मार्गदर्शन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था, आगामी पर्व त्योहारों, नीट यूजी पुनर्परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि 21 जून को प्रस्तावित नीट यूजी पुनर्परीक्षा में राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों एवं 762 नगरीय निकायों में अमृत सरोवरों, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों पर योग कार्यक्रम आयोजित करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान श्री योगी ने मुहर्रम के दौरान निर्धारित नियमों व मानकों का पालन करवाने पर विशेष जोर दिया है। खनन रॉयल्टी फर्जीवाड़े के गिरोह का एसटीएफ ने पर्दाफाश किया। टीम ने बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र के में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोप है कि गिरोह के सदस्य असली खनन रॉयल्टी के दस्तावेजों में हेरफेर कर फर्जी रॉयल्टी तैयार करते थे और इसके जरिए अवैध लाभ कमा रहे थे। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम शुभमन गिल और अफगानिस्तान टीम हशमतुल्ला शहीदी की कप्तानी में दोपहर 1:30 पर मुकाबले को उतरेगी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 11 प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
2: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: राम राम भैया बहिनी पर नाम, कैसे हैं आप सब? अरे दैया दैया, यह देखा मुस्की मारत है ना, बहुत नीक लागत है भैया। 10:00 हो गए हैं, 4 मिनट, और स्वीकार करा अंजू शुक्ला के नमस्कार। कहे से कि हम लेके आए गए यही कार्यक्रम सुगंध माटी के बहार, और आज है बुधवार, तो ले भैया शुरू कर दे यही कि हम, अरे भैया गए रहे दिल्ली, अगर है माता रानी दर्शन करे, वैष्णो देवी, और कुल घूम घाम के आए, बहुत जगह घूमे। बहुत जन पूछत रहे ना, कहाँ गए रहू? हाँ गए रहे यात्रा पे, और बहुत नीक के सुखद यात्रा रही। भवानी माई के दर्शन बहुत नीक के भय हमका, सुंदर सुंदर, अरे जीव प्रसन्न हो गवा। लेकिन भैया देखा जौन दिल्ली शहर में गर्मी पड़ती है, का बताई, अरे दिल्ली नोएडा गाजियाबाद मेरठ कुल एकदम मतलब खौलत है। हाँ, और जियोरा हम खौलत रहा, मन हाथरा बस तनी के बूंद बरस जाए और चली जाई, नहीं तो अपने गांव देश कुल वही नीक लागत है। हाँ, तो देखा यही गाँव नहीं याद आएगा वह हमका, तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत के देते यही वाली गाँव नहीं, अपना गांव देश में जौन मजा है ना, जौन सुकून आनंद है, कत्तौ नहीं। हाँ, सुना सुगंध माटी की 100.7 FM रेनबो पर।

भैया जौन सुकून, जौन शांति, जौन आनंद अपने गांव जवार में है, सबके पीछे है, उस हर हार में कहां। अरे भैया इतनी गर्मी, इतनी भयंकर भाग दौड़ भरी जिंदगी की पूछा ना भैया, जीव अकच्छा हो जाते का बताई। देखा हम तो आए गए वापस अपने गांव देश में, आप सब कहां है, यहीं रहा जहां, कब तो जाए की जरूरत ना है। देखा अब एक सुंदर

0: से जाऊँ ना ये ब्रेक ले ली हाँ सुंदर के ब्रेक ओकरे बाद लौटी तो आपका बहुत सुंदर सुंदर गाँव नहीं सुना उबे हाँ बहुत तैयारी करके आए सुगंध माटी कार्यक्रम सुनता है हम है अंजु शुक्ला आप सब सुनता है FM रेनबो 100.7 जेका कहा थे धड़कन लखनऊ की
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी देश के विकास में सहभागी बने
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: अब भैया ईला अरुण बहन जी गावत रही गावत चुप हो गई। अरे दैया ये तो हमारे जीव धक्कस हो जाता है, तरह नहीं करे चाहिए भाई। वही से 10:17 अ देखा बहुत जा रहे हैं जौन है श्रोता पंच हमका सुनता है और हमका मालूम है आप सबको इंतजार रहा। अरे दैया हम जाने थे भाई, सब के मन के बात जाने थे। और देखा सिद्धार्थ गोंडाने भैया हमका सुनता है और जौन है सभी हमका सुनता है अमरावती महाराष्ट्र में। हाँ अमरावती महाराष्ट्र से आशा पांडे बहनी भी सुनती हैं। और विकास भैया देखा कहा था कि सुगंध माटी की कार्यक्रम सुन रहा हूँ, बहुत लाजवाब झक्कास चल रहा है। अबे तो शुरू है भैया है सांग सिलेक्शन। अरे दुयटी तो गौ नहीं बजाए ही, अबे तो देखे अभी कौन कौन गौ नहीं सुनाई थे। हाँ और विकास बंसोड़े भैया भी हमका सबका सुनता है। और विकास जी के साथ रेखा अदिति वैभव सब जने हैं हिल स्टेशन खंडाला से।

हैं, और ये सभी जमुना है बहुत दूर से हमका, यानी बीड शहर महाराष्ट्र से। अरे दैया, इतनी दूर से हमका सुनता मित्र नगर बीड शहर महाराष्ट्र से। अरे आप सबका राम राम भैया, यही तरह जुड़ा रहा एफएम रेनबो लखनऊ के साथ है। और सोनू परवाना भैया का कहा था प्रोग्राम सुगंध माटी की आरजे अंजू बहन जी का, इस में पूरा धमाल, बहुत सराहनीय आपका प्रोग्राम, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और शैलेश कुमार भैया भी यहाँ हैं, और नमस्कार हैं नीलू बहनी के जो है छोटा भाई सोनू मेल करता है और खेत काम करता है। अच्छा, नीलू बहनी की तबीयत नहीं ठीक है, तो भैया देखा जल्दी से ठीक हो जा, उनका सबका परेशान न कर जा, तो सभी फोन और मैसेज कई कई क्या है, और देखा जल्दी ठीक हो जाइए, नीक हो जाइए, हमारे सबके प्रार्थना है उनके साथ है। और मोहम्मद आसिफ भैया रामपुर कटरा बाराबंकी सोई हैं। अच्छा हाँ, राधा राधे आशा पांडे बहनी, हाँ देखा आपका हम याद करते रहे, बहुत सुबह से कार्यक्रम अच्छा चलता है और सुगंध माटी के इंतजार रहा वह पूरा हो गवा, तो बस यही तरह बनी रहा। मोहम्मद आसिफ भैया हैदराबाद तेलंगाना से सुनता है और प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है नहों का, और दिल्ली सहरिया वाला गाना तो दिल को छू गया, और मैम आपका प्रोग्राम सुगंध माटी की बहुत अच्छा लगता है, और सादिया अंसारी साहिबा अंसारी समा अंसारी सब लोग सुनता है, तो सबका हमारे राम राम। और मुकेश कश्यप भैया भी मेल कह दें हैं, सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहनी ऋतिक बलवीर सिंह सब जने सुनता है, जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से, और चौपाल प्रोग्राम लागता है इनका। वाह भैया, तो वही तरह चौपाल जमाए रहा और बढ़िया बढ़िया गौनई हमारे सबके माध्यम से सुनता रहा। और देखा जब बात हो थे लोकगीत के, तो लोकगीत में बहुत सारा रंग रहा थे, हमार तो हाय मन के बात रहा थे, प्रकृति के रंग रहा थे, मौसम के रंग रहा थे, जौन तीज त्यौहार रहा थे वो रहा थे, और जब मन के बात आवत है तो केहू रिसियाए जाए वह, तो बस यही तरह उनका गाय गाय के मनावत जा। आ देखा कितना बढ़िया।

अरे इतने प्रेम से जो उन्हें गाए दे मनाए ले तनी प्रेम से बोले दे तो भैया कौन दुख है कौन चाहे जितना गर्मी में चाहे जौन कुछ बनवा ले अरे दैया ये सब जौन मासूम मासूम प्यारी प्यारी मेहरारू हरे रहा थी इनका सब तक कहा चाहिए अरे तनी प्रेम से बोली बोल दे अज्जा हाल चाल पूछ लिया बस ये वही मैं प्रसन्न हो जाती मगन हो जाती आनंदमय हो जाती देखा ये जौन घर परिवार हो थे तनी तो नहीं एमुर उमुर चलत रहा थे और जब लड़कियां बच्चा हो जाते अरे इन्हन जौन है केहू का सुनब नहीं करते हाँ जब धमा चौकड़ी मचाए रहा था गर्मी की छुट्टी में और देखा अब बेसिक वाले स्कूलन में तो जौन है एक हफ्ता और बढ़ी गई छुट्टी हाँ 24 तारीख का खुले और ओकरे बाद जौन है मुहर्रम छुट्टी पड़ जाए शनिचर इतवार पड़ जाए कुल मिला के जुलाई में खुले स्कूल हाँ और जौन गर्मी की छुट्टी जब बढ़ी जाते और जब चलत रहा थे छुट्टी तो छुट्टी में जौन है लड़का बच्चा का तो लिए तो छुट्टी है मौज मस्ती छुट्टी माने मौज मस्ती पढ़ाई लिखाई से कौनो वास्ता है ना है अब मम्मी हर चिल्लात रहे पढ़ लिया भैया होमवर्क कर लिया और जो उन्हें असाइनमेंट मिला है कही थी तो प्रोजेक्ट मिला है उनका सबका पूरा कर ले जा ना ही तो जो उन्हें जब स्कूल खुले के दो दिन पहले याद आवत है तो मम्मी हर रात रात दाई पहुँ रतिया रतिया भर बैठ के बनावत रहा थी एमुर कटी हैं ओमुर चिपकई हैं अरे दैया बहुत सारा काम रहा थे कुल मिलाए कि सारा काम सारा सरदर्दी का मम्मी हरे कर रहा थे अरे तनी पापा हरे सुन लिया तनी हाथ बटाए देवा करे लड़के बच्चा का बैठाए के होमवर्क उमवर्क करवाए दिया और तनी घुमावे ले जा हाँ देखा लेकिन घामे में नहीं निकले कहा भाई घाम लाग जाए लूक लाग जाए बीमार हो जाए बिना मतलब डॉक्टर दवाई खर्चे बढ़े और परेशानियों बढ़े और लड़का बच्चा का कुछ हो जाते ना तो नीक नहीं लागत हाँ कुछ नहीं नीक लागत भाई ना खाना बनवे मन लागे ना कौन काम मन लागे ये लड़का बच्चा खेलत कूदत अच्छा लागत है ना हाँ तो भैया लड़का बच्चा हरे बस उधम तनी कम काट जा खेला सब मौज मस्ती करा लेकिन तनी ध्यान से आए और तनी तनी कुछ अच्छा अच्छा कामों सीख लिया जैसे कि पेड़ पौधा लगावा हुमा तनी सवेरे संझा पानी ओनी दे दिया और कुछ बढ़िया बढ़िया नीक नीक गौनई कहानी एका सबका सिखत जा हाँ और अपन ध्यान रखत जा ठीक है देखा नाचे कूदे बरे जो ना एक्सरसाइज न करे हो लड़किया बच्चा तो देखा इट्ठी पंजाबी तड़का लगा दे हाँ नाचत जा

भैया 10:29 हो गया और ये 10:30 और बहुत जने हमका ईमेल भेजे हैं और ईमेल का भेजा थे सभी जौना अपने मन के बात कही के भेज देते हाँ। और जाना जब ही मन के बात आवा थे तो हमका मन कहा थे भैया ईमेलें पढ़त रही लेकिन बहुत और कुछ है जौन आप सब तक पहुँचावे के रहा थे ओकरे साथे साथे। तो भैया देखा ईमेल तो पढ़बे करब, अच्छा चला पढ़िन देते ही। महेंद्र दीपन भैया आए गए, कहा था सुगंध मिट्टी की। मैम सच कहूँ तो मैं बुधवार को पूरे हफ्ते इंतजार करता हूँ। अच्छा जब शनिचर का आई थी तो कहा था शनिचर का इंतजार करता हूँ पूरे हफ्ते। हाँ यह देखा मुँह देखी बात कर जाते तू सब। हाँ वैसे महेंद्र दीपन भैया राजस्थान के नागौर जिले के रूण गांव से जो ना है लिखा था बहुत बड़ा प्रशंसक कहाँ हमारा। अच्छा बहुत धन्यवाद भैया। और कहा थे मीठी आवाज़ सुगंध माटी का गाज होता है तो दिन की शुरुआत खुशियों से भर जाती है। शुरुआत तो भैया सवेरे पुष्पांजलि से हो जाते हैं तो है शुरुआत सवेरे अब है 10 बजे सोए था देखा। अरे भैया उठ जाते मजाक करते ही। आगे लिखा थे आपकी प्रस्तुति देने का अंदाज इतना अनूठा और अपनापन भरा होता है कि मन प्रफुल्लित हो जाते हैं। कहा थे कि आप जब इस प्रोग्राम में आती हैं तो महफिल में चार चांद लग जाते हैं। कुछ राजस्थानी अरे दैया अबे राजस्थानी चुनरी इलारून का सुनाए तो रहे सबे शुरुआत है मैं। अच्छा सुनो बे और सुनो बे। आगे कहा थे कि जो नहाए बहुत बढ़िया बढ़िया बात कहे हैं तो बस यही तरह बढ़िया बढ़िया रहा जा नागौर राजस्थान में हमका सुनता है। और मुनेश कुमार राज भैया का कहा थे भैया कहा थे कि अच्छा जय माता दी भैया आपका एफएम रेडियो दीवाने हैं आपके आवाज से में हमें हर कोई जाने। अंजू दीदी आपकी तीर्थ यात्रा कैसी रही? बहुत बढ़िया, माता रानी ने हमको बुलाया। अरे बहुत गर्व की बात है सही सच्ची भैया, उनके बुलावा जो आवत है ना तबे मन ही हुआ पहुंच पावत। बहुत जने सोचत रहते सोचते रह जाते जब तई माई न बुलाई है ना केहूं नहीं जा सकता। हम तो जो ना 9वीं बार गए रे भैया। हाँ और देखा मन का सुकून और शांति बिल्कुल मिला थे। और बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी, कृपा आप सब पे बनी रहा है हम सब पे बनी रहा है और बस यही तरह आशीर्वाद बना रहा है और का चाहिए है कुछ नहीं चाहिए भैया। और अब रोशनी रावत जी के मेल पढ़ी थे और कहा थी राम राम प्यारी अंजू दीदी। अरे राम राम रोशनी बहिनी कैसे है तू? अरे हम तो बहुत नीक यही और कार्यक्रम इनका नीक लागत है। कहा थे कार्यक्रम कि मैं आपके बद कही मन को लुभा रही है। मेरा नाम रोशनी रावत, गाँव बभना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से हमका सुनती है। हाँ मतलब उन्नाव के रहने वाली है, चंडीगढ़ में सुनती हैं। हाँ और कहा थी हमारी बड़की दीदी नीलू शर्मा दीदी, गुलपशा दीदी, छुटकी बहन बबीता राव सब सुनती हैं और झूम रही हूँ। तो बस यही तरह झूमत रहा, आप सबका झुमावे के लिए हम बिल्कुल तैयारी कही के आई थे। हाँ और देखा मुनेश कुमार भैया दोबारा मेल कही दिया भैया पढ़ ही ले कैदा ही कर दिया है अब शांति बैठ जा चुप पे एक जगह रेडियो वॉल्यूम कही दिया फुल और जो उन्हें गाउनाई का आनंद लिया मजा लिया बस और कुछ करे जरूरत ना है ने। हाँ नाश्ता पानी हो अगर बना हो मिल गया हो तो करत रहा साथे साथे चाय पकौड़ी नहीं तो चला बनारस की जलेबी खवाए दे। हाँ

0: डॉन बात चलो।
1: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
2: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
1: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
2: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
7: धड़कन लखनऊ की।
8: अब भैया 10:00 हो गए हैं 36 मिनट। अंजू शुक्ला के साथ आप सब सुनता है बुधवार के स्पेशल कार्यक्रम सुगंध माटी की। जेमा तनी के हरियाणा, तनी के राजस्थान, तनी के पंजाब, तनी के मतलब भोजपुरी अवधि सब कुछ हम सुनाई थे भैया। शनिचर के तो खाली अवधि की बात होते, लेकिन देखा बत कही तो हम अवधि मन करे थे भैया। देखा अवधि हमारे बहुत प्यारी वाली बोली है, बहुत जने के नीक लागत है हम बोली थे तो है नीक लागत है ना। हाँ देखा ईमेल बतावत है आप सबके। ईमेल में जो उन्हें रोहित सोनी भैया का कहा था, कहा था राम राम बहिनी, का हाल चाल बा? बिल्कुल मस्त बा भैया, आपका कैसे है आप सुनावा। और ये कहा था रोहित सोनी लालबाग दुबग्गा रिंग रोड लखनऊ से हमका मेल करता है। कहा था आप स्टूडियो में आती हैं तो चार चांद लग जाते हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा करती हैं। आई एम सो हैप्पी बहिनी। तो भैया यही तरह रोहित हैप्पी हैप्पी रहा। हाँ कौनो सैड सर्ड के होए की जरूरत ना है ना। कहा से कि FM रेनबो पे सवेरे से लेके रात ताई आपके मनोरंजन के पूरा इंतजाम रहा थे। हाँ और साथ ही साथ बहुत सारी जानकारी हो रहा थे। हैं आज का कृष्णकांत भैया आएंगे। हाँ कहा थे नमस्कार बोलत हैं और कहा थे कि सुगंध माटी प्रोग्राम में जो भी लोकगीत आप प्ले करती हैं वो वाकई देश की मिट्टी के सुगंध का एहसास देते हैं। देश के विविध रंगों को समेटे हुए ये प्रोग्राम बड़े ही रोचक अंदाज से आपके द्वारा हम सभी श्रोताओं तक पहुँच रहा है। इसके लिए अंजू जी आपका कोटी कोटि धन्यवाद। अरे दैया धन्यवाद तो FM रेनबो का, आकाशवाणी के ई मंच का दे जहाँ जहाँ पे जो उन्हें पूरे भारत के रंग समेटा रहा थे एक जगह पे। और आप सबका धन्यवाद जो न हमका सबका सुनत है। कृष्णकांत भैया कैसरगंज बहराइच से हमका सुनता है और खूब फूल उल बना के भेजत है रंग बिरंगा ईमेल।

अब वकील अहमद भैया आ गए हैं, कहा था नमस्ते आपकी आवाज अच्छी लगती है, सुगंध माटी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, गौनाई बहुत अच्छी बज रही, गन्ने गुड़ाई हो रही है, बाग में आज कच्चे आम तोड़ेंगे हैं अचार के लिए। अदैया काओ बात कही दिया वकील भैया, मुँह में पानी आवता है। अरे दाल भात के साथ एक ठी आम के अचार मिल जाए, का मजा आवत है भैया। दाल भात और देसी घी का तड़का या देसी घी ऊपर से एक चम्मच भर के डाल लिया और आम के एक ठी अचार ले लिया। वैसे हम बताई सच्ची सच्ची बताई, हमारे तो एक में काम है नहीं चलते, आम के अचार के बाद वो घर एक बना अचार मिल जाए तो दो तीन ठी तो मतलब पर्याप्त है, दो तीन ठी मतलब तीन ठी तो हो इनके चाहिए। हाँ एक में एक से नहीं भैया, एक से काम लेते भैया, बनाए ले तो तनी भिजवाए दे, हाँ यही आकाशवाणी में भिजवाए दे, हमारे नाम के पर्ची जरूर लगाए दे तो हमको मिल जाए। हाँ सब ईमानदार मनी है कि वो एक आठ ठी अगर निकारो ले तो कौन दिक्कत नहीं है हमका। हाँ और भैया हट मंसूरी कटका, वकील अहमद मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर से हम मेल करें हाँ, और नाव लिखे हैं साहिबा अंसारी, शाजी अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, अमन नवाब, सबके नाव लिख के भेज दें हाँ। ई बढ़िया परंपरा बना देत गया है, सबके नाव लिख देते हैं कठी मेल में। चला अरुण कुमार भैया कमोया हरदोई से, अरुण कुमार कुशवाहा भैया कहा था कि अंजू जी आपको एक बार फिर से नमस्कार, सुगंध माटी की कार्यक्रम वास्तव में इतना अच्छा लग रहा है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, इतना अच्छा लोक संगीत और उसमें आपकी अवधि क्या बात है, इसके लिए अंजू जी आपको फिर से धन्यवाद। अरे अरुण भैया आपका राम राम धन्यवाद है, यही तरह सुनत रहा। अभिजय पाल यादव भैया का कहा थे ललहुआ लखीमपुर खीरी से, कार्यक्रम के प्रशंसा करता है, गाना बहुत मस्त लगता है, है और नीना दीदी को बुला लेती तो और अच्छा लागत कहा था, तो भैया नीना जिज्जी आई हैं, सभी आई हैं, और देखा रत्ना जिज्जी, विनय यादव भैया, अपने विनय यादव भैया सभे रहे और जो है ओमो आवा रहे, इनका सबका जो है मतलब बहुत अच्छे से संभालत गए, और देखा इतना सुंदर सुंदर प्रोग्राम हमहूँ रहे दिल्ली नोएडा में रहे सुनते रहे, हाँ वैष्णो देवी गए रहे हूँ सुनते रहे लगाए रहे काने में, अरे मोबाइल ऐप जो प्रसार भारती का है न्यूज ऑन एयर चाहे जहां पकड़ ले, अरे दैया और जानता है वैष्णो देवी गए तो हुआ कि एक ठी सिम ले यात्री सिम मिला थे ना, अरे बहुत सस्ते 350 रुपया मिल जाते भैया, ओका लगाए ले और जो हमारे डेटा चल रहा मस्त मस्त कि ना पूछा, हाँ सब सब इंतजाम है कुल, अब आपके जो ना FM रेनबो आपके साथ कुल पहुंच जाते, तो भैया आपका वहां पर राम राम पोस्ट ललहुआ लखीमपुर खीरी से हमका मेल करे है विजय पाल यादव भैया, देखा ओम का याद करते रहे आए गए अगर थे कोर्ट की रास्ता जाई थे और कार्यक्रम का आनंद ले थे चौकस तो भैया ध्यान से जाया है और देखा अब ही आम के अचार के बाद भय रही ठीक, और गर्मी में जो है मतलब घरे में सब जने हुए और कटहर के सब्जी ना बने तो कैसे काम चले बतावा है, कटहर के सब्जी जो कर ना बनावे आवत होए तो इनसे सीख लिया जाऊँ किनसे, अरे मैडम जी से नहीं उनसे, देखा अबे बहुत बहुत कुछ सिखावत जाता है एक दूसरे का मिलजुल के, जेका नहीं आवत तो ओकरे लिए गाना है और वैसे रोज रोज किचन में एक का जनक जिम्मेदारी ना हो चाहिए, हाँ बारी बदल लेवा कर बारी बारी समझ गया ना हाँ।

वाह भैया वाह भैया वाह भैया बहनी, ये तो मजा मजा मजा मिलजुल के मनावे के जो उन मजा आवत है ना, वो जब मिलजुल के खावा जात है ओमा नहीं। अरे भैया मिलजुल के खाए में तो रोजे मजा ले जाता है सब जने, हैं कबो कबो मिलजुल के बनावे के भी तो मजा ले जैसे सब बनाए। हाँ और देखा माई बाबू को पहले खवावत जाए, लड़का बच्चा का पहले, और बाद अपन नंबर आवत है। और भैया देखा खाए पिए में भी गर्मी के दिन में तनी संभार के, ठीक गर्मी अकूत का पड़ती है, ये नहीं कि हचक के खाए ले। अरे भैया पिए के ध्यान रखा, पानी पिया, छाछ पिया, नींबू पानी पिए, लस्सी बना लिया, आम एक पना बना ले जा, बेल एक शरबत बना ले जा, ये सब बहुत जरूरी है। अपन ध्यान रखा जा, तबीयत सब दुरुस्त रहे चाहिए। हाँ और देखा कटहर उठहर के सब्जी जब बना थे ना तो तनी संभाल के खाए चाहिए, हमका बहुत डर लागत है पका बताई, ये जो पेटवा ना ये गड़बड़ाए जाते कबो कबो, हाँ यही लिए बड़ा डर लागत है। तरह सब्जी खाए तनी तो नहीं खाए चाहिए लिमिट में। आए देखा जो ईमेल है ई तो भैया अनलिमिटेड आवत है का बता।

देखा मुनेश कुमार राज भैया मेल कई दाई आ चुका है और कहा था कि अंजू दीदी आम खा रहे हैं खा लियो आ क्या है दैया रे भैया ये कौन ये जब आम के बात होत है ना तो ये आम बात नहीं रह जाते ये बहुत खास बात हो जाते है आम के नाम ना ले हाँ नहीं कार्यक्रम छोड़ छाड़ के चलिए उबे वैसे एक बात बताई जब उन देसी आम चूस चूस का खा एक मजा है बाल्टी भर के जब उन्हें पानी धई लिया और पेड़ के तोड़ के बगिया में बैठ के आम सब तनी ताजा ताजा आवत रहा है वही बाल्टी में डारे जा ठीक और पूरा झुंड बनाए के बैठक जा पूरा का पूरा ग्रुप हाँ धमा चौकड़ी मचे अब रकम रकम के जब उन्हें आम ए दुठी यह पेड़े के दुठी वह पेड़े के अरे हमरे बगिया में तो बहुत रकम के आम रहे हैं नानी खिया बताए ही ना कहियो नाई हाँ अब हेमा तो जो उन्हें बहुत आम कौन सा आम खाता मुनेश भैया ये तो नहीं लिखे लेकिन आम खाता तो भैया देखा काट के आम खाए के जो उन रिवाज चला है ना ये तो ठीक ठाक है मतलब सफिस्टिकेटेड वाला मामला हो जात है हेमा तनिक लेकिन जो आम चूस के खाए में मजा है हाँ वो मतलब असली मजा तो वह आटे एकदम देसी अंदाज और देसी आम हो चाहिए। अब मोहम्मद आसिफ भैया का कहा था तेलंगाना में सुनता है हाँ? अब प्रोग्राम तारीफ करें हाँ बस इडली डोसा सांभर केले के पत्ते पे खिलाते हैं पूरी आकाशवाणी लखनऊ टीम को लेके आओ है दैया भैया टिकसो कराए दिया चलिए उबे हमका का वहा भैया आवे जाए जो टिकस है ना ये बहुत महंग पड़ जाता है और पूरी आकाशवाणी टीम के तो भैया तू हूँ ना लोड ले पाऊ बया जाने कि ना जाने बहुत बड़ी टीम आए अच्छा राजकमल यादव भैया का कहा था हाँ राजकमल यादव बरैया ग्राम बरैया पोस्ट सूरत गंज बाराबंकी से राम राम कहा है हाँ प्रोग्राम बहुत ही निक लागत है बहुत बहुत धन्यवाद और कहा था मैम जी आप जैसे आती हो तो जैसे गर्मी में ठंडक प्रदान करती है आय है और बालेश्वर यादव जी के गाना लिखे हैं अरे देखा अगली बार उबे तो जरूर जो है ढूंढ के लेके उबे और हमारे साथ रमजान मास्टर और समीर खान भी हैं सबका हमारे राम राम प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण प्रताप सिंह भैया का कहा था आदरणीय मैडम जी काशी से सादर प्रणाम अरे बाबा की नगरी से राम राम प्रणाम आपका कहा था आपकी प्रस्तुति से कार्यक्रम अलग ही रंग आ जाता है जलेबी का टाइम खत्म हो गया लस्सी मिली अच्छा तो भैया चला लस्सी कचौड़ी उचौड़ी तो भैया बनारस में गलियन में ये सब तो कुल तो मिलते रहा थे बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप कहा थे अरुण प्रताप सिंह लल्लापुर मंगारी वाराणसी के रहने वाले श्रोता की तरफ से सभी को नमस्कार भेजे हैं तो आपको नमस्कार अरुण भैया और अशोक कुमार भैया और इनके साथ बैलिस्टर चाचा सुनता है अरुण अंजू राज अजय राज सब सुनता है और ग्राम व पोस्ट ओडारा मितौली लखीमपुर खीरी से हमका भेजे हैं राम राम कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम पालो भैया आए गए हैं नमस्कार और ये सत्यमपाल ग्राम रफातपुर जिला मुरादाबाद से सुनता है पढ़ाइयों चलती है और प्रोग्रामों का आनंद लेता है और उनको फिर से लाना जो पहली बार ससुराल गए थे जो किस्सा सुनाया था गोपा महू गाँव के पड़ोस के गाँव से थे उनका नाम याद नहीं आ रहा चला लेके आएंगे हैं वो बाबू भैया है ना और उन्होंने लेके उबे अच्छा हिंदुस्तानी ब्रह्मेश भैया का कहा था ब्रह्मेश सोनी जी प्रणाम भेजे हैं पिंकू सोनी है टिकैत नगर बाराबंकी से गाने की तारीफ लिखे हैं कार्यक्रम की तारीफ लिखे हैं बहुत बहुत धन्यवाद और कुलदीप आकाश रिंकी पिंकी गुलपशा सब का जो है नमस्कार भेजे हैं और तेज बहादुर यादव भैया बिल्कुल भैया जय माता दी हाँ और कहा थे बहुत याद आवत रही आपके हाँ और सुना रहा अरे नहीं भैया हियाँ तो धमा चौकड़ी मची रही पूरे फुल फार्म में और कहा थे कि बहुत नीक नीक गौने सुनाए रहो दीदी और तो पूरे देश के माटी की सुगंध मिल रही आ जाए और दीदी अब की शनिवार को आए हो देखो भैया वादा नहीं करी था कोशिश कर बस और कहा थे कि हमारे मेहरारू लड़के बच्चे गाँव में हैं और गाँव मऊ शर्की जिला रायबरेली से उत्तर प्रदेश में इनके गाँव है इस समय एक गुरुग्राम हरियाणा में सुनता है तो चला भैया सबका राम राम सब जने नीके से रहा और देखा चलत चलत बबीता राव को भी मेल आ गया है राधे राधे भेजे यहाँ है कहाँ रहूँ बहनी आए पता बेली कलंग गुसाईगंज नवाबक शहर लखनऊ यही बगलियाँ वहाँ पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं देखा कूद के पहुँच गए हैं आखिरी में आए और कहा थी मैम जी आपका प्रोग्राम हमेशा तरह बहुत नीक लग रहा है सुगंध माटी प्रोग्राम दिल है तो प्रोग्राम दिल है तो आरजे अंजू मैम इस प्रोग्राम की धड़कन जो हम सबके दिलों में हमेशा राज करती हैं बहुत बहुत धन्यवाद वही तरह प्रेम प्यार मोहब्बत बनाए रहा है आगे लिखा थी कि हाँ आपका प्रोग्राम मम्मी पापा भाई बहन रोशनी रावत जी महेंद्र भाई राजस्थान से नीलू शर्मा जी गुलफ शादी सब लोग साथ में सुन रहे हैं प्रोग्राम कतई जहर लग रहा है अरे दैया जहर वहर के बात ना करा खाली अमृत अमृत रहा है।

और देखा ई अमृत जो उन बरसावे जाते ही आवत था सीधा पहाड़ से, एक ठीक कुमाऊनी सॉन्ग बजाए, बड़ा मन कर रहा है। जो उन पहाड़ी बीट होते ना, मैं अलग तरह की मिठास होते, मानते थे नहीं मानते हाँ हाँ। लेकिन एक बात बताए दी, अभी पहाड़ कुल में जो उन ठंडी वंडी जो उन हसीन वादियाँ ये सब तो बस फिल्मन में रहा खाली, बाकी कहानी किताबें में रह गया है। हूँ कुल इतनी गर्मी की का बताई, वैष्णो देवी घर है जैसे दिल्ली गर्मी वैसे वहूँ गर्मी। अरे दैया ये जौन, अब चला पहले गाँव नहीं सुना।

अब भैया चाहे जौन रेशमी कढ़ाईदार पहन लिया, बनारसी अनारसी सब पहन लिया, लेकिन जौन काटन की साड़ी यानी सूती साड़ी में जौन बात यह है ना, और जौन आराम है गर्मी में वो जौन है। और कतोना ने भाई देखा बहुत तरह तरह के बात होई गए, बतकही होई गए, और आप सबके हालचाल चाल होई गए, और गम नहीं भी होई गए तरह तरह के हैं। तो सुगंध माटी कार्यक्रम में कुल मिला के हमका तो बहुत आनंद आवा, और चलत चलत अब सास ससुर जी का प्रणाम कर ली। हाँ देखा बहुत सुंदर के गौ नहीं उन्हीं दोनों जनन के नाम, हाँ आप सबके तरफ से हैं। तो चला सबके सास ससुर बना रहा है, सबके परिवार बना रहा है, माता रानी के आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहा है, यही तरह हंसत खेलत बना रहा, सब जने स्वस्थ रहा, मस्त रहा, जबरदस्त रहा, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल न रह जा भैया। हाँ और सुनत रहा रेनबो अगले कार्यक्रम में आई था, सुनत रहा।

नमस्कार, 11 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में सरकार द्वारा देश में रक्षा और सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा है कि सुरक्षित भारत ही विकसित भारत की आधारशिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री योगी ने लिखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के प्रति भारत की निर्णायक नीति को स्थापित किया है, जबकि रक्षा, आत्मनिर्भरता, सैन्य आधुनिकीकरण और सीमावर्ती संरचना के विस्तार ने राष्ट्र को की सुरक्षा को नई मजबूती दी है। उन्होंने लिखा कि ये 12 साल उस नए भारत की गाथा है जो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सजग है, अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखता है और राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करता। पशुपालन विभाग द्वारा प्रदेश में पहली बार यूपी स्मॉल लाइफ स्टॉक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रहे इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में लघु पशुपालन क्षेत्र के समग्र विकास, रोजगार सृजन, उद्यमिता संवर्धन एवं पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए भविष्य की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। पर्यटन विभाग ने 31 मार्च 2026 तक स्वीकृत परियोजनाओं पर तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश के 8 जिलों में 33 पर्यटन एवं धार्मिक विकास परियोजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जा रहा है, जिन पर लगभग 79.18 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर टेम्पल इकोनॉमी को मजबूत करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताहांत खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर 78.66 डॉलर हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था और कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से हरा दिया। लियोनेल मेसी ने इस मैच में हैट्रिक लगाते हुए अपने 14वें, 15वें और 16वें वर्ल्ड कप गोल किए। मेसी ने वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 16 गोल करने के रिकॉर्ड में जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज की भी बराबरी की। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर अगला प्रोग्राम है संदेश आपके गीत हमारे।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: साथ हमारा हरदम है।
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेनबो के संग।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल. 100.7 एफएम रेनबो ट्यून किया है आपने और 11:05 का वक्त हो गया है. मैं हूँ आरजे अंजू शुक्ला और ये वक्त है प्रोग्राम संदेश आपके, गीत हमारे, आपकी आवाज़, आपकी बातें और बीच बीच में हमारी पसंद के गाने. तो बढ़िया कॉम्बिनेशन होने वाला है. 2232852 या 2232845 ये हमारे फ़ोन नंबर हैं और 2238852 और 2238845 इसके अलावा एफएम आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com इस मेल आईडी के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं. तो बस आ जाइए, इंतजार किस बात का है. ये ट्रैक आपके रेडियो सेट पर, उसके बाद देखते हैं किसका फोन मिलता है.

0: दिल लेने और देने का सिलसिला तो बस यूं ही चलता रहेगा। 100.7 एफएम रेनबो ट्यून किया है आपने, जिस पर प्रोग्राम है संदेश आपके गीत। हमारे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद देखते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है। ध्यान से सुनिएगा, बस यहीं बने रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: जी, और अब चलिए वापस आते हैं अपने प्रोग्राम में, और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर कौन है। दो लाइंस हैं और दोनों लाइंस पर बहुत ही प्यारी सी आवाजें हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनसे जिनसे हमारी जिनकी कॉल लगी सबसे पहले। नमस्कार, हेलो।
3: गुड मॉर्निंग मैम, आपको, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं सभी को गुड मॉर्निंग,
0: वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नाम बताए अपना, कहाँ से बात कर रही है।
3: मेरा नाम है रोशन रावत, मैं ग्राम पोस्ट बमना तहसील फतेहपुर जिला उन्नाव से सुन रही प्रोग्राम, अभी चंडीगढ़ में हूँ।
0: नहीं तो उन्नाव से कैसे सुन रही है जब चंडीगढ़ में है तो
3: रहने वाली हूँ।
0: जी जी, मतलब इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होता है ना कि समझ ही नहीं आता कि हम बोल क्या रहे हैं ना, बोलना कुछ चाहते हैं निकल कुछ जाता है। देखिए, हम हमेशा आपका जब ईमेल पढ़ते हैं रोशनी, तो हम ये बोलते हैं कि आप उन्नाव की रहने वाली हैं और चंडीगढ़ से हमें सुन रही हैं, है ना।
3: हाँ जी मैम, तो मैं आज ना बहुत ज्यादा ही खुश हूँ क्योंकि हमारी कम से कम 8 महीने शायद हो गए। हमारी बात आपसे ना 24 अगस्त 2025 को हुई थी।
0: अच्छा, मतलब आपको डेट भी याद है। मतलब हमसे बात नहीं हुई है स्पेशली, मतलब मेरी व्यक्तिगत रूप से मुझसे बात नहीं हुई है या प्रोग्राम में नहीं हुई है।
3: आपसे बात नहीं हुई, प्रोग्राम में तो होती रहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अरे आप लोग तो स्टार हैं भाई, सब सबको नाम याद है। हमारे जितने रेगुलर लिसनर्स हैं वो सब हमारे स्टार्स हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे अच्छी बात ये कि आपको याद रहा कि आपने लास्ट टाइम कब बात की थी हमसे। क्या कहना चाहती हैं रोशनी हमारे लिसनर्स से।
3: मैम पहले तो मैं आपकी ना बहुत बहुत तारीफ करना चाहती हूँ।
0: थैंक यू सो मच,
3: का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा मुझे। हमारे साथ ना हमारी ये बबीता जी, गुलसा दीदी, नीलू दीदी, महेंद्र भैया और भी काफी लोग सुन रहे हैं साथ में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमें पता चल रहा था सब सुन रहे हैं,
3: साथ ही सुनते हैं।
0: बिल्कुल, हमें मालूम है कि सब लोग साथ में सुनते हैं और आप लोगों का एक अलग तरह का परिवार बन गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि रेडियो की दुनिया बहुत अनूठी है और रेडियो ने न जाने कितने लोगों को कहां से कहां तक जोड़ रखा है ना। अदरवाइज अगर आप रेनबो ना सुन रहे होते तो क्या उन लोगों से मिल पाती, उन लोगों से जुड़ती हैं, बताइए।
3: कभी नहीं, कभी हमने सोचा ही नहीं था कि हाँ मैं ऐसा भी होगा कि कहाँ से कोई भी मतलब किसी से भी बात हो जाएगी।
0: बिल्कुल,
3: ये 100.7 घर का लखनऊ की जो हमको सबको एक परिवार में जोड़ रखा है।
0: बिल्कुल, यही तो खूबसूरती है रेनबो की। तो ये जो सतरंगी दुनिया है उसने हमारे श्रोताओं की भी एक अलग तरह की दुनिया बना रखी है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगता है जब सब साथ में होते हैं तो, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारा सौभाग्य है कि हम लोग आप लोगों को कनेक्टेड रखने में हेल्प कर पाते हैं, एक माध्यम बन पाते हैं। क्या कहना चाहती हैं रोशनी हमारे श्रोताओं से संदेश के तौर पे।
3: हाँ जी, मेरा संदेश ये रहेगा कि जो लोग सफर के ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, जो मतलब ट्रिप वगैरह करते हैं या कहीं दर्शन के लिए दूर जाते हैं, तो उनके लिए मेरा संदेश ये रहेगा कि सामान कम से कम लेके जाए, क्योंकि जितना सामान कम होगा उतना ही सफर बेहतरीन और अच्छा होगा।
0: जितना सामान कम होगा उतना सफर आसान होगा। बहुत अच्छी बात है, और आपका मैसेज भी बड़ा ही प्यारा सा है ना, प्रासंगिक मैसेज है, क्योंकि छुट्टियां हैं, लोग प्लान करते रहते हैं आना जाना। तो चलिए, थैंक यू सो मच रोशनी इस ब्यूटीफुल मैसेज के लिए। अपना ख्याल रखिए और बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, अपनी रोशनी बिखेरती रहिए। थैंक यू, बाय बाय,
3: वेलकम,
0: थैंक यू। तो भाई ये तो थी रोशनी जो चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ी, और देखते हैं दूसरी लाइन पर कौन।

0: हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम। साहिबा
0: वालेकुम सलाम। अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: अंसारी महवागंज जिला लखीमपुर खीरी से बोल रहे हैं।
0: क्या बात है साहिबा जी, कैसी हैं और मौसम कैसा है लखीमपुर खीरी में? गर्मी ऐसे ही हो रही है जैसी लखनऊ में?
1: जी मैम, गर्मी बहुत हो रही है।
0: तो क्या
1: तो
0: करती
1: अच्छा, अपना
0: हैं?
1: बताइए, आप कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल जबरदस्त। आपको कैसा लग रहा है?
1: हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपने सुगन मिट्टी का प्रोग्राम किया, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए, बहुत
1: आप
0: बहुत
1: इतने दिन
0: शुक्रिया।
1: तक ठीक हैं मैम?
0: अबे घूमने घामने गए थे, छुट्टी हमको भी चाहिए, बस यही यही यही आप लोग के साथ ही रहे। देखिए, आप लोग भी छुट्टी बनाते नहीं बनाते, बताओ? मनाते हैं
1: मैम
0: ना?
1: आपको भी ले चलते साथ में।
0: अरे तो आना चाहिए, तो हमने तो सबको इनवाइट किया था। सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहिए, बस हम तो सबको बुलाए रहते हैं, कभी भी आ जाइए। ठीक, चलिए।
1: ठीक
0: अच्छा
1: है
0: ये
1: मैम,
0: बताइए साहिबा, आज मैसेज क्या देना चाहती हैं आप सबको?
1: मैं मैसेज ये देना चाहते हैं कि जैसे कि मैम गर्मी बहुत पड़ रही है, मैम पानी बचाइए और मैम पेड़ भी लगाइए।
0: बिल्कुल, पेड़ लगाना है और उसकी देखभाल भी
1: जी मैम,
0: करनी है ना?
1: जी मैम, हमने अपने घर में पेड़ लगाए हैं, 4 पेड़ लगाए, अपने बर्थडे पे लगाए थे।
0: अरे वाह, तो चलिए आपको भी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, और उन पेड़ों की देखभाल करिएगा, ठीक है? जैसे अपनी
1: जी
0: केयर
1: मैम,
0: करती हैं
1: जी
0: अपने परिवार
1: बहुत
0: वालों की, वैसे
1: जी
0: उस उन पेड़ों की भी केयर कीजिएगा, ठीक है? और सिर्फ घर में ही नहीं, जहाँ कहीं भी जगह मिले, जब भी मौका मिले, ज़रूर पेड़ लगाइए।
1: जी मैम, जब भी मौका मिले तब भी पेड़ लगाना चाहिए।
0: बिल्कुल, तो चलिए, थैंक यू सो मच।
1: जी मैम, हम वकील भाई जो आम तोड़ रहे हैं, हमारे लिए जो है थोड़े से आम भेज दी।
0: अच्छा ये बढ़िया
1: अचार जो
0: प्लेटफॉर्म।
1: जो बन जाए तो हमें बुला लेना, हम भी
0: हाँ हाँ
1: आएंगे।
0: नहीं, हमको पहले भेजेंगे वो, हमने पहले बुक कर लिया है चार बचार। हाँ है
1: अरे
0: ना,
1: मैम,
0: जो
1: जो
0: बचेगा
1: आपके
0: तो हम आपको दे
1: नहीं,
0: देंगे दो
1: जब
0: चार।
1: आपसे ढेर हो जाएगा तो हमको दे देना।
0: हाँ, जब एक आध हमारे तरफ से बच जाएगा तब तो हम आप तक पहुँचा
1: जी
0: देंगे।
1: मैम,
0: चलिए
1: नहीं
0: ठीक
1: मैम,
0: है,
1: आप तो आएंगे देर में, हम जो जाएंगे पहले। नहीं,
0: ये गलत बात है। देखो, पहले मैंने बुकिंग की है, पहले पहले मुझे मिलेगा।
1: हमारे वहाँ से करीब में मैम पढ़ते हैं।
0: नहीं, लेकिन अचार पहले मुझे मिलेगा। देखिए, इतनी तो कद्र करिए मेरी बात की है।
1: जी मैम, कर रहे हैं, आप ही आइए
0: हाँ
1: पहले, आप हमारे वहाँ तो फिर हम लेके आना।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच साहिबा, बहुत अच्छा
1: थैंक
0: लगा आपसे बात
1: यू मैम।
0: करके। तो भाई, रोशनी से बात हो गई, साहिबा से बात हो गई, और हमारे पास ईमेल्स भी बहुत ढेर सारे हैं उनकी तरफ भी, उनका भी रुख कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं, अचार वचार का नाम ले लेते हैं, क्या बताएं लोग, मतलब अब चलिए छोड़िए, गाना सुनाती हूँ, बहुत ही प्यारा सा गाना। बहुत दिनों से इस सॉन्ग को सुनने और सुनाने का मन हो रहा था, तो चलिए, कोयला फिल्म से 90s का ये है सुपरहिट ट्रैक तन्हाई।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
2: धड़कन लखनऊ की।
3: हंड्रेड पॉइंट सेवन एफ एम रेनबो ट्यून किया है आप सबने। 11:21 और 31 सेकंड्स। मैं हूँ आरजे अंजू शुक्ला और अब हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसका फोन लगा था? हेलो
4: हेलो मैम, गुड मॉर्निंग।
3: वेरी गुड मॉर्निंग। दूसरी लाइन पर भी कोई है, उनसे भी बात करेंगे। आप इंतजार रखिएगा, मतलब सब्र रखिएगा, इंतजार करिएगा। जी आप अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं?
4: जी मैम, मैं संध्या कनौजिया बोल रही हूँ, ग्राम पोस्ट तिहार, जिला सीतापुर, हर गांव के पास पड़ता है।
3: संध्या हरगांव, और हरगांव जो सीतापुर और लखीमपुर खीरी का बॉर्डर पड़ता है ना?
4: मैम बराबर है, सीतापुर और हरगांव से लखीमपुर की दूरी बराबर पड़ती है।
3: हम गए हैं वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय कैसा चल रहा है वहाँ, गन्ने की बुआई वगैरह हो रही है? गन्ना बहुत होता है ना उधर?
4: गन्ना काफी बड़ा हो गया है यहाँ पर।
3: अच्छा, तो बस अब तो तैयारी।
4: मेढक मंदिर फिर हम साथ चलते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल, हम तो गए हैं, मेढक मंदिर भी गए हैं और वहाँ संकटा माता मंदिर भी गए, गोला भी गए, दर्शन किया मैंने, कई जगह हम घूमते घामते रहते हैं बस ऐसे ही यूं ही। चलिए बहुत अच्छा लगा। अब अच्छा ये बताइए कि आज आपका मैसेज क्या है हमारे बाकी लिसनर्स के लिए?
4: मैम मैं यही कह रही हूँ कि इस समय गर्मी ज्यादा हो रही है तो लोग ज्यादा जंक फूड ना खाएं, फल खाएं और हरी सब्जियां खाएं, क्योंकि उसमें पानी भी नहीं डालना पड़ता है, पानी की बचत होती है।
3: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात कही। और नेचुरल जो नेचुरल पानी होता है। हाँ बिल्कुल
4: जी मैम।
3: तो आपने आज क्या बनाया खाने में?
4: आज मैम हमारे घर बना कटहल की सब्जी।
3: तो आपने हरी सब्जी की बात की।
4: कटहल सबको पसंद नहीं है, दो सब्जियां बनी है, दो सब्जियां तो किसी को पसंद नहीं आता है, दो दो बनाते हैं तब भी किसी को पसंद नहीं आता, फिर भी होता है कि मुझे पसंद नहीं है।
3: ये बड़ा लोचा होता है ना कि किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। अच्छा आधे जब घर के स्पेशली जो बच्चे होते हैं ना, खाने में क्या बना है, तरोई टिंडा लौकी का नाम ले लो तो कहते कि नहीं खाना आज हम खाएंगे।
4: फिर भी मेरे साथ ही टहल रही, वो बहुत परेशान कर लेती है मम्मी को, हमको ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे।
3: अच्छा अच्छा, तो ये मतलब ये बड़ा नाटक करने वाले जो नखरे करने वाले लोग होते हैं ना, इनको डील करना बड़ा मुश्किल होता है।
4: मैम सच में बता रही हूँ, शाम को मैंने दाल और सब्जी बनाई, ये खाई नहीं, सिर्फ ने आम मैगी बनाई, वो भी नहीं खाई, थोड़ी खा के डाल दिए।
3: अच्छा, सुरभि आपकी छोटी बहन है?
4: जी मैम।
3: ये तो बड़ी

0: ही शरारती है भैया।
1: मैम करिश्मा मेरे लिए लगी है।
0: अच्छा,
1: उसी ने कॉल कल भी लगाई थी, लग गई थी और आज भी लगाई, मुझसे नहीं लगती है।
0: अब लियो, अगर आपने पहले बता दिया होता ना कि कल आपकी कॉल लगी थी तो आज हम आपसे बात ही नहीं करते। चलिए कोई बात नहीं, अब बात हो गई है तो हो गई है।
1: मैं कुछ करना चाह रही
0: हूँ। बोलिए जल्दी से।
1: हमारे यहाँ शादी है 11 जुलाई को, आप आ जाइए।
0: किसकी शादी है?
1: भाई की मेरे।
0: अच्छा चलिए ठीक है, आपने न्योता दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बोला था कि करिश्मा ने स्पेशली बोला था, मैं जरूर बोल देना।
0: चलिए, आप सबकी बात हमने स्वीकार कर ली और निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया। अब पहुंच पाए ना पाए ये तो वक्त की बात है, वक्त बताएगा। चल बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत लोग हैं लाइन में।
1: जी मैम, वो मैं रोशनी रावत से कहना चाहती हूँ कि वो जो बात करती मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो भी आ जाए और वकील मंसूरी भाई वो भी।
0: चलिए चलिए ठीक ठीक ठीक। अब अच्छा ऐसा ना, व्यक्तिगत रूप से मैसेज भेज के उनको इनवाइट करिएगा, हमको माध्यम ना बनाइए। ओके थैंक यू सो मच संध्या, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये तो थी संध्या हर गाँव से। और अब नेक्स्ट लाइन पे कौन है? हेलो।
2: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? बड़ी प्यारी सी आवाज़ है आपकी, नाम बताएं अपना। उम्रा श्रीनगर, लखीमपुर खीरी वाले श्रीनगर से हैं। क्या करती हैं उम्रा और क्या कहना चाहती हैं हमारे बाकी लिसनर्स से?
2: मैं कढ़ाई करती हूँ और मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया है।
0: हमने भी मिस किया आप लोगों को।
2: और मैं संदेश ये देना चाहती हूँ कि जिंदगी में परेशानियों और मुसीबतों से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये जो वक्त है ये बदल जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और वक्त हमें बहुत कुछ सिखा कर भी जाता है। सबसे बड़ी बिल्कुल,
2: बताइए। हमारे घर इनवाइट कर रही हूँ, आप हमारे घर आए और आम का बाग है, लीचियां भी लगी हैं, आप आए और खा जाए आके।
0: आए और खा जाए करके। अच्छा चलिए, हम शिवम को भेज देंगे, वो खाने में शिवम ज्यादा एक्सपर्ट है। चलिए हम पूरी टीम के साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारे हैं आप लोग, थैंक यू। और भाई ये थी उम्रा। और देखिए कितने सारे इनविटेशंस आते हैं, किसी ने अचार खिलाने का वादा कर लिया, किसी ने आम खिलाने का, लीची खिलाने का, किसी ने शादी में इन्वाइट किया। अच्छा लगता है, ये एक परिवार ही तो है, हम और आप सब एक परिवार है, एक फैमिली है। और ज़िंदगी में जब एक दूसरे को प्यार बांटते रहेंगे ना, तो यकीन मानिए चिंताएँ तो हर एक के जीवन में होती हैं, लेकिन वो हावी नहीं होने पाएंगी। तो बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने ईमेल्स की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो लगातार फ़ोन ट्राई करते हैं लेकिन फ़ोन नहीं लग पाता है, तो वो बिना देर किए हमें मेल करते हैं। जैसे कि रामराज जी ने भी मेल किया है, और इन्होंने ज़िला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से, रामराज राजू भानु शंकर भैया पप्पू मनीष नीरज मधु बजरंगी काका, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार भेजा, तो आपको भी नमस्कार। और संदेश के तौर पर ये कहना चाहते हैं कि गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, सब एक दूसरे के सहारे हैं और इसी तरह से ये दुनिया चल रही है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और मैंने भी वही बात कही ना कि प्यार बांटिए, एक दूसरे की सहायता कीजिए, एक दूसरे की मदद करने से आप कम नहीं हो जाएंगे, कुछ घट नहीं जाएगा, आपका बहुत सारा बहुत कुछ बढ़ेगा। सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है दुआएं, प्रार्थनाएं। बहुत सारे लोगों की दुआएं मिलती हैं ना जब, तो यकीन मानिए ज़िंदगी में मुसीबतें किसकी लाइफ में नहीं आती हैं, आती हैं लेकिन बस यूँ ही चली जाती हैं, हावी नहीं हो पाती, वो आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाती हैं। और यकीनन ये किसी न किसी की दुआ का असर होता है। हिंदुस्तानी ब्रह्मेश जी का भी मैसेज आ गया है, टिकैत नगर से ही हमें मेल कर रहे हैं, बाराबंकी से, पिंकू सोनी जी। और सदियों का सीज़न, अच्छा शादियों का सीज़न है, ओके। देखिए इंग्लिश में यही दिक्कत होती है, इंग्लिश में जब आप लिखते हैं तो ठीक है, शादियों में SH लिखना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, शादियों का सीज़न आने वाला है, तो सभी से यही कहना चाहता हूँ कि उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। टिकैत नगर बाराबंकी से हैं ये, और कुछ नाम लिए इन्होंने, कुलदीप, आकाश, रिंकी, पिंकी जी और सभी लिसनर्स का नाम इन्होंने लिखा, थैंक यू सो मच। मोहम्मद आसिफ जी का भी मेल आया है, और ये हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं। अंजू दीदी संदेश है कि नियमित योग करें, इससे मन और शरीर अच्छा रहता है। एक्चुअली मैं रहने वाला राजा कटरा अहमदपुर बाराबंकी का हूँ। जी हमें मालूम है, और आपने जो मेल किया है, जो मैसेज दिया है ना योग के लिए, देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है 21 तारीख को, और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर आपने ऐसा कर लिया ना, तो यकीन मानिए आपकी बहुत सारी परेशानियाँ, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, अपने आप दूर हो जाती हैं, आती ही नहीं है ना, तो वो दूर रहती हैं हमसे। तो

योग का अपना को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और बच्चों को भी प्रेरित करिए योग करने के लिए। फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा गाना आप सबके लिए हमारी तरफ से, और इसके बाद वापस आएंगे तो ईमेल्स भी हैं, फोन कॉल्स भी हैं। 11:30 बज गए जी, कुछ सेकंड्स बचे हैं। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू शुक्ला, और प्रोग्राम है संदेश आपके गीत हमारे।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: सात रंग का इंद्रधनुष है,
6: सात सुरों की सरगम है,
7: सात जन्म है सात समंदर,
5: साथ हमारा हरदम है,
7: जिंदगी के सतरंगी रंग
6: FM रेनबो के संग।
3: की गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
9: ग्यारह बजकर 35 मिनट का वक्त है, 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश आपके गीत हमारे, मैं हूं आरजे अंजू शुक्ला। और अब हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स है, फोन से थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया है मैंने, और मेल है हमारे सामने दुर्गा कृष्णा जी का। इन्होंने लिखा है कि आज सुबह के प्रोग्राम में आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात की, उस समय तो मेल नहीं कर पाए, लेकिन अब इस प्रोग्राम में इन्होंने मेल किया है। कहते हैं कि पानी का पूरा उपयोग करते हैं, जैसे घर में बाथरूम में ना नहा के अपने बगीचे में नहाते हैं, जिससे पेड़ों को भी पानी मिल जाता है और हम नहा भी लेते हैं। एक ही पानी से कई काम कर लेते हैं, जैसे फल सब्जी या कपड़े धोने के पानी को अपने पेड़ों में ही डालते हैं। मॉनसून आने वाला है तो बारिश के पानी को अपने घर की छत पर एकत्र करके अपने काम में ले सकते हैं। और इन्होंने लिखा है कि BCCI, अच्छा इन्होंने राजीव झा की वाइफ अपनी भाभी वंदना झा और भतीजी खुशी का आज जन्मदिन है, उनको शुभकामनाएं भी दी हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। और लिखते हैं कि गाने अच्छे सुना रही हैं, आपके बिना प्रोग्राम में रौनक नहीं होती, थैंक यू। और आगे लिखते हैं कि हमका घर में ही ससुराल के मजा मिल जाते आप जब बोलती हो तो। पूजा इनकी जो पत्नी है इसी तरह बोलती हैं, पिछले प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि चाय वाले बर्तन रखे थे वो भी सुनते सुनते धुल लिए। ये बढ़िया, देखिए रेडियो के यही तो फायदे हैं कि जब आप रेडियो सुन रहे होते हैं तो आपका कोई काम रुकता नहीं है, आप काम भी कर लेते हैं और मज़े के साथ कर लेते हैं, बल्कि इन्जॉय करके करते हैं ना बाकी सारे काम। तो बहुत शुक्रिया दुर्गा कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मेल आया। और देखिए आरजे सूरज सिंह ने भी हमें मेल किया है, प्रोग्राम बहुत दिनों बाद सुन रहे हैं, बिजी रहते हैं। अच्छा सुगंध माटी की प्रोग्राम उम्दा रहा, शो अच्छा लगा और ये प्रोग्राम भी अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। फ़ोन मिला रहे हैं लेकिन लाइन बिजी है, जी लाइन बिजी रहती है हमेशा, क्या करें। आगे लिखते हैं कि जो इन्होंने मैसेज दिया है, नशा छोड़ें, जीवन से नाता जोड़े, तंबाकू गुटखा शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वच्छता अपनाएं, बीमारी भगाएं, यातायात नियमों का पालन करें। अच्छा एक ही मैसेज में बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें, रक्तदान करें, जीवन बचाएं, पर्यावरण की रक्षा करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जल बचाएं, भविष्य सुरक्षित बनाएं। सूरज सिंह शेखापुर विश्वेश्वरगंज बहराइच से, बिल्कुल बहुत सारी बातें आपने कह दी और इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके थ्रू, और एक ही मैसेज में, एक मेल में इतने सारे इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या बात है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मेल किसका है आइए देखते हैं, और ये है महेंद्र दीपन जी, हमेशा की तरह हमारे नियमित श्रोता, इनका भी मैसेज आ गया है। राजस्थान के नागौर जिले के रूण गांव से हैं, पिछला प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आपको। आगे लिखते हैं कि आज मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं तक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, ऐसे में मेरा सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि बारिश के दौरान बिजली के खंभों, खुले तारों और भीगे हुए बिजली के उपकरणों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें, थोड़ी सी सावधानी हमें बड़े हादसों से बचा सकती है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। आगे इन्होंने भी

कुछ विशिष्ट होता साथी जो हमेशा मेरे साथ मिलकर कार्यक्रम का आनंद लेते हैं. मतलब ये बड़ी अच्छी परंपरा चल गई ना एक दूसरे का नाम लिखने की. लेकिन आपको नहीं लगता कि जब आप लोग नाम लिखते हैं और हम वो नाम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारा समय जाता है. इतने समय में हम किसी और का भी मेल पढ़ सकते हैं, है ना. अक्सर ऐसा मैंने फील किया है कि कई सारे मेल जब छूट जाते हैं ना तो ये चीज़ें खल जाती हैं. खैर, आपने नाम इतने प्यार से लिखे हैं तो इस बार पढ़ देते हैं. बाबू भाई अंसारी, रोशनी रावत दीदी, बबीता रावत दीदी, दीदी आप सबके नाम हमने पढ़ दिए. थैंक यू सो मच महेंद्र जी. मुनेश कुमार जी, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन. और सुपरहिट गानों से सजा आज का कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन लाजवाब रहा. संदेश के तौर पर ये कहना चाहते हैं कि बारिश होने से पहले लोग अपनी छत बना लेते हैं. वैसे ही हमें भी चाहिए कि किसी के टोकने से पहले हम अपनी गलतियों में सुधार कर लें. बिल्कुल, बहुत ही अर्थपूर्ण मैसेज आपने भेजा है, गहराई है इस मैसेज में. थैंक यू. और आपने भानपुर हरुआ ज़िला लखीमपुर खीरी से मैसेज किया, मेल किया, थैंक यू सो मच. और ये कौन है भैया, आदाब अर्ज है. देखिए, आपके मेल भेजने का जो तरीका है ना उसमें आपके पुराने मेल्स भी खुल जाते हैं. खैर, कोई बात नहीं. अजीज़ अहमद साहब हैं और कहते हैं कि मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है इस प्रोग्राम का. इस प्रोग्राम को सुनने के लिए सारे काम जल्दी ख़त्म कर लेता हूँ. थैंक यू सो मच. और इन्होंने आदाब अर्ज है इस चाहने वाले का, ये जो लाइन आपने ब्लॉक लेटर्स में लिखी है ना वो अधूरी रहेगी. उसके आगे का हिस्सा कहाँ है, अब ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा मुझे. खैर, कोई बात नहीं. और ये फरमाशी गीतों का प्रोग्राम नहीं है अजीज़ साहब, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नेक्स्ट प्रोग्राम जो मतलब फरमाशी गीतों का जो प्रोग्राम आएगा 2 बजे से 2 से 3 के बीच में, उसमें आपका मेल ज़रूर आएगा. कृष्णकांत जी, आपका भी मेल पढ़ देती हूँ जल्दी से. जीवन में जैसे जैसे समय बीतता है तो बीता हुआ समय हमें तमाम अनुभव और खट्टे मीठे एहसास देता है. जब कभी हम जीवन में परेशान हों तो अपने बीते हुए कल से चुने हुए अनुभव से चल रही परेशानी को हल करने का प्रयास करिए, आप ज़रूर सफल होंगे, फिर से जीवन सुखमय हो जाएगा, आपका दिन शुभ हो. बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी. और इतना प्यारा सा मैसेज आपने भेजा और उम्मीद है इस पर सभी लोग ध्यान देंगे. जब आप इन सकारात्मक बातों की ओर ध्यान देते हैं ना तो ज़िंदगी की छोटी मोटी परेशानियाँ तो यूँ चुटकियों में फुर हो जाती हैं. फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन सर ट्रैक और इसके बाद वापस आएंगे तो फोन कॉल्स पर जाएंगे.

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow,
4: धड़कन लखनऊ की।
5: जहाँ प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त, संदेश आपके गीत हमारे, हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है ये बात कर लेते हैं। हेलो हेलो
6: हेलो,
5: हाँ इतनी धीरे से क्यों बोल रही हैं? नमस्ते, कैसी हैं आप, अपना नाम बताइए।
6: सिमरनजीत कौर।
5: सिमरनजीत कौर, पलिया कला से। इतनी प्यारी आवाज है आपकी सिमरन, क्या करती हैं, कितनी बड़ी हैं आप?
6: पंद्रह साल की
5: हैं। बहुत छोटी सी हैं अभी तो। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हैं?
6: नाइन्थ में।
5: ओके, तो अभी तो छुट्टियां चल रही होंगी ना?
6: जी मैम।
5: तो छुट्टियां कैसे बीत रही हैं, क्या करती हैं छुट्टियों में?
6: जी घरी पे रहते हैं।
5: घर पे रह के क्या करती, कुछ तो करती होंगी, कुछ अलग सा जो स्कूल जब खुले होते हैं जो रूटीन होता है उससे कुछ अलग तो करती होंगी ना छुट्टियों में?
6: जी मैम, स्कूल का काम करते हैं और जी मैम खेलते हैं भाई बहनों के साथ।
5: तो कौन कौन से गेम पसंद है आपको?
6: लूडो और लुका छिपी।
5: क्या बात है, वैसे लुका छिपी खेलने में बड़ा मजा आता है ना, जब छिपने की बहुत सारी जगह होती है ना घर में, तब मजा आता है ज्यादा। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और मन तो कर रहा है बस बात करती रहूं, इतनी प्यारी आवाज है आपकी। लेकिन वक्त कम है तो जल्दी से बताइए क्या मैसेज देना चाहती है हमारे लिसनर्स को।
6: जैसे कि मैम गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी में पानी ज्यादा से ज्यादा पिए और पेड़ों के नीचे बैठे, ये हमारा संदेश है।
5: और पेड़ों के नीचे बैठने के लिए पेड़ भी लगाने पड़ेंगे, है ना? तो बहुत महत्वपूर्ण संदेश आपने दिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए और बस ऐसे ही हंसती खेलती रहिए, ठीक है? टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। तो ये तो थी प्यारी सी सिमरनजीत कौर, और आप भी हमें फ़ोन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ ईमेल्स हैं वो पढ़ लेती हूँ। कृष्णकांत जी का मेल मैंने पढ़ लिया था, रोमिल कुमार जी ने भी हमें मेल किया है, और अच्छा ये रोमिल कुमार जी के हैंडल से संजू देवी जी हैं, ग्राम पहाड़पुर पोस्ट भिठौरा जिला सीतापुर से, रेनबो की जान रेनबो की जन्नत आए है। क्या कुछ लिख देते हैं आप लोग, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्कार आपको भी संजू देवी जी, कहती हैं कि आपका काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। संदेश मेरा ये है कि जो लोग नशे में गाड़ी चलाते हैं ऐसा ना किया करें कृपया, उनके परिवार वालों को बहुत ठेस पहुंचती है। अगली बार कब आओगे मैम? देखिए अगली बार आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे, बस कल ही आएंगे, ठीक है? कल सुबह इसी समय 8 बजे से 8:15 से 12 बजे तक आपके साथ रहूँगी मैं।

लेकिन फिलहाल आपने जो मैसेज दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट था. नशे में नशा करना ही गलत है और नशे में वाहन चलाना तो उससे भी ज़्यादा गलत है. अपनी जान के साथ साथ आप सड़क पर चलने वाले और बहुत सारे लोगों की, मासूम लोगों की जान खतरे में डालते हैं. बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए और ये दंडनीय अपराध है, है ना. तो अगला मेल पढ़ लेते हैं, वारिस जी का है और ये भी इन्होंने भी आदाब भेजा है, आपको भी आदाब. कहते हैं कि अर्ज है, जिंदगी अपने हिसाब से जियो, लोगों की सोच तो बदलती रहती है. बिल्कुल सही कहा आपने. संदेश इन्होंने दिया है कि प्रचंड गर्मी पड़ रही है, हम सब गर्मी से बेहाल हुए जा रहे हैं. अब तो पेड़ पौधे ही सहारा है, प्रकृति ही सहारा है, इस पर निर्भर जीवन हमारा है. पेड़ पौधे लगाएं, उनका संरक्षण भी करें. एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से आपका ये इम्पॉर्टेंट सा मैसेज. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद. और अब बारी है एक बढ़िया वाले गाने की, जो कर रहा है आप सबका इंतज़ार. हाँ हाँ हाँ, इस तरह के गाने मतलब अच्छे लगते हैं और ख़ास तौर पे जब ये दोपहर का टाइम, मतलब अब दोपहर होने वाली है, आजकल तो सुबह ही दोपहर हो जाती है, समझ लीजिए, तो सुबह होते ही दोपहर होने लगती है. तो इस तरह के गाने जब सुनते हैं तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है. खैर, और जो एनर्जेटिक सॉन्ग्स हैं वो हमें सुबह, और मतलब जब गुड मॉर्निंग लखनऊ शुरू करती हूँ तब, और या तो फिर शाम को अच्छे लगते हैं ना. चलिए फिलहाल एंजॉय कीजिए फिल्म कयामत से ये सॉन्ग. आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की.

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: भाई 11:54 का वक्त हो गया है, हमारे पास फोन कॉल्स आई और मुझे लगता है कि सारी लड़कियों के फोन आए थे ना। आहा, क्या वर्चस्व है, वाह वाह वाह वाह। साहिबा अंसारी, रोशनी रावत, संध्या कनौजिया, उमरा अंसारी, सिमरनजीत कौर और भी एक दो कॉल्स आई लेकिन बात नहीं हो पाई उनसे, नेटवर्क वीक था शायद इस वजह से। लेकिन हमारे पास बहुत सारे लिसनर्स की ईमेल्स आए लगातार, आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वक्त है कि हम यहाँ से इजाज़त ले लें, हैं क्या कहते हैं आप, ले लें इजाज़त। देखिए भाई, जब अगर जाएंगे नहीं तो फिर आएंगे कैसे कल, ठीक है? तो कल वापस आते हैं और आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। प्रोग्राम रहेगा वही गुड मॉर्निंग लखनऊ और उसके बाद होगा सुपर हिट सॉन्ग्स का सिलसिला और उसके बाद यही वाला प्रोग्राम। तो चलिए कल फिर आपसे मुलाकात होगी, अगले कुछ घंटे रहेंगी शालिनी आपके साथ, तो उनके साथ आप एंटरटेनमेंट का सिलसिला लगातार एफएम रेनबो पर जारी रहेगा। और मैं अंजू चलती हूँ, मुलाकात होगी आपसे कल इसी वक्त एफएम रेनबो पर ही। फिलहाल एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ, इस गाने को इन्जॉय कीजिए और उसके बाद प्रोग्राम होगा शत्रुपा, जिसे लेकर आएंगी आपके लिए शालिनी। स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की, जहां एंटरटेनमेंट का सिलसिला लगातार जारी है। अंजू की ओर से आज बस इतना ही, टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। पिछले 9 साल में सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुलिस ने जिस तरह से कार्य किया है वो मॉडल पुलिसिंग का उदाहरण बना है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में 9 साल में 2.25 लाख पुलिसकर्मियों की भर्तियां पूरी पारदर्शिता भेदभाव के बिना ही की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पुलिसकर्मियों की सुविधा पर ध्यान दिया है, ट्रेनिंग क्षमता बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था, आगामी पर्व त्योहारों, नीट यूजी पुनर्परीक्षा और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीट परीक्षार्थियों के लिए राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री ने मुहर्रम को लेकर कहा है कि जुलूसों में हथियारों के प्रदर्शन और तेज आवाज वाले डीजे की अनुमति नहीं होगी। साथ शांति और सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही। 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के तहत महोबा में योग सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आज सूर्य मंदिर परिसर में सुबह 6 बजे आयोजित योग शिविर में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मौके पर योग प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया। जिले में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजकीय स्टेडियम में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन होगा। अफगानिस्तान और भारत के बीच आज लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। मैच को लेकर लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

बिना कोई देर किए हुए शालिनी हाजिर है प्रोग्राम शत्रुपाल लेकर, और आज हम क्या करते हैं, चटपटी बातें। चटपटी बातें तो हर रोज करते हैं, लेकिन आज हम इन बातों के साथ इन चीजों को चटपटा कैसे बनाएं, टेस्टी कैसा बनाएं, उसकी भी बात करते हैं, क्योंकि आज है बुधवार, है ना। आप वेट भी करते होंगे कि आज कौन सी रेसिपी बताई जाएगी और उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान। नुकसान वाली चीज तो हम लेते ही नहीं, है ना। लेकिन कहते हैं ना कि अति की भली ना बोलना, अति की भली ना चुप। कोई भी चीज हो, लिमिट से ज्यादा जब इस्तेमाल की जाती है तब तो नुकसान होता ही होता है ना दोस्तों। तो इस बात का तो सभी को खास ध्यान रखना चाहिए। तो आज शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को प्यारे से ट्रैक के साथ, और क्या होंगी बातें आज आपसे चटपटी वाली, हेल्दी वाली, वो सब इस गाने के बाद।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

मौसम गर्मी का हो और खाने पीने की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए आसान, स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी। जी हाँ, जिसे आसानी से हम घर पे बना सकते हैं। अच्छा बताइए, गर्मियों का मौसम जब चल रहा हो और ऐसे मौसम में मन करता है कि कुछ ठंडा, स्वादिष्ट और साथ ही साथ हेल्दी भी हो, खाने पीने का मन करता है ना, तो सबसे पहले जब ठंडी की बात आती है तो आप समझ गए होंगे कि कुछ हम बढ़िया सा पीने वाला बनाने वाले हैं। तो हम सबसे पहले आपको मैंगो से रिलेटेड, हाँ, बहुत सारी चीज़ें आप बनाते हैं, मैंगो की खीर बनाते हैं, मैंगो का शेक बनाते हैं, मैंगो को ऐसे ही ठंडा करके खाते हैं, स्मूदी, कई सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन हम आपको आज मैंगो लस्सी बताने वाले हैं। जी हाँ, जिसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, आपको मैंगो चाहिए पके हुए, बढ़िया मीठे वाले, मुँह में पानी आ जाता है ना।

की बात करते हैं। और आपको एक कप ठंडा दही चाहिए, थोड़ा सा दूध चाहिए और टेस्ट के अनुसार आपको शहद चाहिए, क्योंकि शक्कर नहीं बताने वाले हम, चीनी नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि अगर वो बताएंगे तो क्या होगा, हेल्दी कम हो जाएगा। और बर्फ के कुछ टुकड़े भी चाहिए। इतनी सारी चीजें आप इकट्ठा करिए और सुनिए ये प्यारा सा ट्रैक।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों 12:27 और 17 सेकंड का वक्त शालिनी है आपके साथ प्रोग्राम शत्रुपा में और अब हम बताने वाले हैं आपको मैंगो लस्सी। जी हाँ, तो चीज़ें इकट्ठा कर ली थी ना आपने, अब आप सोच रहे होंगे वो तो बहुत देर से करके रखी है भाई, गाने भी तो आप तक पहुंचाने, फिर आप कहेंगे लो हम गाने नहीं सुनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या सामान रखा? 1 कप पके आम के टुकड़े हो गए, 1 कप आपका ठंडा दही हो गया, 1/2 कप ठंडा दूध हो गया और शहद अगर आप उसमें डालना चाहते हैं, और नहीं तो मीठे मीठे आम टेस्ट कर लीजिए और वो ही सही है, उसमें कुछ अलग से आपको मीठा कुछ नहीं ऐड करना है। और हाँ, टेस्ट करने के चक्कर में ये ना हो जो काट के आपने आम के टुकड़े रखे हैं वो ख़त्म कर दें और 3-4 बर्फ के टुकड़े छोटे छोटे रख लें। और अब क्या करना है, इन सारी चीज़ों को मिक्सी में डाल देना है और अच्छे से चला देना है और फिर जब सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लस्सी तैयार है भाई, कुछ करना ही नहीं है। और फिर ग्लास में निकालना है, उसमें और थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े डाल देने हैं, ऊपर से अगर आपको स्माइली बनाना है, जो भी चीज़ें हैं, थोड़ी सी आइसक्रीम भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, वो भी आप ऊपर से सर्व करने से पहले कर सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स को काट कर रखिए और ऊपर से डाल कर सर्व करिए। क्या बात है भाई, हमने तो पीली बहुत टेस्टी बनी है और आप भी ऐसा कर सकते हैं, बनाकर देखिए तो जरा एक बार। जी हाँ, और आम जो है ना, क्या करता है, स्वाद के साथ साथ हमें ऊर्जा भी देता है, दही गर्मी में ताजगी का एहसास दिलाता है। बस हाँ, ये ध्यान रखना है कि शक्कर चीनी मिठास की जगह आपको पके आम की जो नेचुरल मिठास है ना, बस उसी का इस्तेमाल करना है। तो इस गर्मी बाज़ार की ठंडी चीज़ों की जगह हम क्या करने वाले हैं, घर पर बनाने वाले हैं मैंगो लस्सी। और मैंगो लस्सी की मिठास के साथ अब सुनते हैं एक ऐसा गाना जो इस मौसम में ताजगी और मुस्कान दोनों दे दे, और ये प्यारा सा ट्रैक।

वैसे दोस्तों उम्मीद है कि जो आज हमने ठंडी ठंडी मैंगो लस्सी रेसिपी आपको बताई है वो पसंद आई होगी। और गर्मियों में घर की बनी चीज़ों का मज़ा अलग होता है ना। और इसी तरह स्वाद और सेहत से जुड़ी बातें हम हमेशा लेकर आते हैं हर बुधवार। और अब हम कुछ और भी आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक और ताजगी देना बहुत ज़रूरी है। और जब बात हो पारंपरिक और आसान पेय पदार्थ की, तो और कौन सा ऑप्शन हमारे सामने दिखता है, बताइए तो ज़रा। बिल्कुल सही पहचाने, सत्तू का शरबत। जी हाँ, और इसे भी हम आपको बताएंगे कि घर में कैसे कितना आसानी से बन जाता है। सत्तू का शरबत बनाना बहुत आसान है। क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको? बस सत्तू चाहिए, पानी चाहिए, नींबू चाहिए, भुना जीरा चाहिए, और टेस्ट के अकॉर्डिंग यानी कि स्वादानुसार आपको काला नमक चाहिए। इतनी सारी चीज़ें अगर आपके घर में हैं, और होंगी ही होंगी, इकट्ठा करिए, एक पास रखिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे पेय पदार्थ बनाया जाए जो कि गर्मी में ताजगी का एहसास दिला दे। और जब नींबू की बात हो गई है ना दोस्तों, तो कौन सा गाना सुनना बनता है? ये वाला।

और दोस्तों तैयारी हो चुकी है सत्तू का शरबत बनाने की। तो क्या क्या चाहिए हमें? 3 बड़े चम्मच सत्तू चाहिए, 1 ग्लास ठंडा पानी चाहिए, 1/2 नींबू चाहिए, थोड़ा सा 2-3 चुटकी भुना जीरा पिसा हुआ और काला नमक आपके टेस्ट के अनुसार चाहिए। क्या करना है, 1 ग्लास में सत्तू ले लेना है और उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के घोलना है। एक साथ 1 ग्लास पानी में पूरा डायरेक्ट अगर आप 3 चम्मच सत्तू डालते हैं तो क्या होगा, वो घुल नहीं पाएगा ना, उसकी कहते हैं गुलतियाँ पड़ जाती हैं ना, छोटी छोटी वैसी हो सकती हैं। और जब अच्छी तरह से वो घुल जाए, मिल जाए, तो आपको क्या करना है, बाकी का जो पानी है वो डालना है, नींबू का रस डाल देना है, निचोड़ देना है नींबू उसमें, और जीरा डालना है और काला नमक अपनी टेस्ट के हिसाब से मिलाना है और उसके बाद गट गट गट करके पी जाना है। अगर आपने अपने लिए नहीं बनाया है, किसी और के लिए बनाया है, तो उसे दे देना है, तब भाई देखिए क्या टेस्ट आएगा। और इस टेस्ट को और ज़्यादा अच्छा बनाना है तो आपको क्या करना है ना, पुदीना, पुदीने की जो पत्तियाँ होती हैं उनको भी डाल देना है। इससे क्या होगा, आपका जो स्वाद है ये और बढ़ जाएगा। है ना, देखा आपने सत्तू का शरबत बनाना कितना आसान है, बस कितनी चीज़ें ही चाहिए। और ये जो रेसिपी, ये भी आपको बहुत पसंद आई होगी। कभी कभी पारंपरिक चीज़ें भी रोज़मर्रा में सबसे काम की साबित होती हैं। और अब क्या करना है, अब आपको हम एक

और फटाफट बनाने वाली रेसिपी बताएंगे लेकिन एक प्यारे से ट्रैक के बाद। और हाँ, साथ में ये बताइए, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं कि नहीं करते हैं? खाली टेस्टी टेस्टी खाने की ही बात करते हैं और सोचते रहते हैं क्या आसान सी चीज़ और अच्छी चीज़ बनाई जाए। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं, योग भी करते हैं और उसके बाद समोसे, पकौड़ियाँ, पूड़ियाँ खूब मज़े से धड़ल्ले से उड़ाते हैं। ऐसा करने से क्या होगा आप बताइए? दोस्तों, जैसे कहते हैं ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, उसी तरह से हमारी भी लाइफ है। आप एक तरफ बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की अगर हैबिट है आपकी, तो जो आप अच्छा काम कर रहे हैं उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। और योग और खान पान, इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है। अगर आपने अच्छे से योग किया है, खाना उसी हिसाब से आप खा रहे हैं, आप बहुत ऑयली नहीं खा रहे हैं, जंक फूड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो योग जो आप कर रहे हैं वो फ़ायदा करेगा। और देखिए, योग की बात क्यों हो रही है, क्योंकि 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने वाले हैं और हम बीच बीच में आपसे को याद दिलाते रहते हैं कि भाई, अगर आप अपना अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो योग को प्रतिदिन अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा।

0: चाशनी।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

दोस्तों 12:51 में ना 4:50 सेकंड का वक्त हो चला है और ये वक्त कह रहा है कि शालनी फटाफट और जो भी बातें हो चटपटी वाली वो सारी कर लो क्योंकि इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय हो गया है। लेकिन हम कोई भी समय ऐसे नहीं जाने देंगे। अच्छा बताइए, गर्मियों के मौसम में अक्सर मन करता है ना कि कुछ ऐसा खाना हो जो हल्का हो, स्वादिष्ट हो और जल्दी से बन जाए। तो चलिए बहुत आसान वाली रेसिपी हम आपको बताने वाले हैं, दही चावल। जी हाँ, जो कम सामान भी लगता है उसमें जल्दी भी बन जाती है और बहुत पसंद भी की जाती है और हेल्दी भी होती है। तो इसके लिए आपको पता है क्या क्या चाहिए? आपको केवल 1 कप पके हुए चावल चाहिए, 1 कप दही चाहिए, थोड़ा सा नमक चाहिए, आप जो भी नमक इस्तेमाल करती हो वो कर सकती हैं, और 1 छोटा चम्मच तेल चाहिए। अगर देसी घी का इस्तेमाल करती हैं तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ी सी राई चाहिए, करी पत्ता चाहिए और छोटी सी लाल मिर्च या हरी मिर्च जिसका भी आपको इस्तेमाल करना हो। और बहुत आसानी से कैसे बनता है ये आपको पता है? क्या करना है आपको, जो आपका ठंडे किए हुए चावल हैं और उन चावल को एक बर्तन में लेना है, उसमें दही डाल देना है और नमक डाल देना है उसमें, और अच्छे से हाथों से उसको मिला लेना है और इसको एक्साइट कर देना है। उसके बाद एक छोटे से पैन में जो आपने घी या तेल लिया है थोड़ा सा डालना है, गैस ऑन करनी है और जब वो गर्म हो जाए उसमें राई डाल दें, करी पत्ता डाल दें और मिर्ची जो आप तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो डाल दें, और जब ये तड़का एकदम तैयार हो जाए उसको दही वाले राइस में मिला दीजिए, और फिर क्या बात है, क्या खुशबू आ रही है ना करी पत्ता की, आपके आप भी महसूस कर सकते हैं। और अगर आपको और स्वाद बढ़ाना है इसमें तो बारीक कटा हुआ खीरा भी बारीक काट के मिला लीजिए, अनार के दाने भी मिला सकते हैं और थोड़ा सा ऊपर डेकोरेशन के लिए हरा धनिया मिला लीजिए। और देखिए, दही चावल गर्मियों का सबसे हल्का भोजन जो माना जाता है और दोपहर के खाने में काफ़ी पसंद किया जाता है, आप घर में ज़रूर बनाइए। ना ज़्यादा देर लगनी है, ना होनी है किसी तरह की परेशानी। तो दोस्तों आज की रेसिपी यहीं तक। उम्मीद है कि दही चावल की जो आसान और स्वादिष्ट विधि है ये आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर बनाएंगे, ये मेरा मानना है। तो बस इस प्रोग्राम को करते हैं यहीं पर वाइंड अप। नेक्स्ट वेडनेसडे आपको और ढेर सारी रेसिपी फिर से सुनने को मिलेगी। लेकिन हाँ, हमारी बात याद रखना, खान पान और योग दोनों से है गैर।

0: मेरी दोस्ती जो थोड़ा बहुत डगमगाएगा तो दूसरा हमारा साथ नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखना है।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

नमस्कार, दोपहर के 1 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं। भारत G7 शिखर सम्मेलन में सहयोगी देश के तौर पर शामिल है। श्री मोदी और श्री ट्रंप के बीच पिछली बैठक अमेरिका में पिछले वर्ष फरवरी में हुई थी। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में सरकार द्वारा देश में रक्षा और सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि सुरक्षित भारत ही विकसित भारत की आधारशिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री योगी ने लिखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन

भावी पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप मिला है। प्रत्येक नागरिक को वृक्षारोपण और स्वच्छता के कार्यों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम शुभमन गिल और अफगानिस्तान टीम हशमतुल्लाह शहीदी की कप्तानी में दोपहर 1:30 से मुकाबले में उतरेंगी दोनों टीमें और भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: दोस्तों 1:04:18 का वक्त, प्रोग्राम ओठों पे तेरी बात की हो चुकी है शुरुआत शालिनी आपके साथ। तो बस आज आपको बताना है कि आप अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे चला रहे हैं, क्या ऐसा करते हैं कि जिससे आप कह सकते हैं कि आपकी लाइफ हेल्दी है, यानी कि हेल्दी लाइफ स्टाइल को आपने अपनाया है। और ये क्यों हो रही है बात, क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना है। तो फटाफट हमें मेल करिए fmakashwani@gmail.com पर और जुड़ जाइए FM रेनबो के साथ।
1: अक्कान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है।

0: दोस्तों आप सुनिए इलाकाई खबरें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है, इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड के जरिए मुंतखब करदा 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को तकर्रे लेटर तकसीम करने के प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुल्क भर में अपनी पहचान बनाई है। पुलिस ने गुज़िश्ता 9 सालों में गुड गवर्नेंस के हदफ को हासिल करने के लिए जिस तरह काम किया है उसने मॉडल पुलिसिंग की मिसाल कायम की। जनाब योगी ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत में 2.25 लाख पुलिस एहलकारों को मुकम्मल शफाफियत के साथ और बगैर किसी इम्तियाज के भर्ती किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती हुकूमत ने पुलिस एहलकारों की सहूलत पर तवज्जो मरकूज की है और तरबियती सलाहियत में इजाफा किया है। इस मौके पर वजीर आला ने कहा,
2: यूपी पुलिस के स्मार्ट पुलिसिंग की जो परिकल्पना है उसके डिजिटल वॉरियर के रूप में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होने और उस भूमिका का हिस्सा बनने के लिए आप सबको अपने आप, हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया भर्ती आयोगों में बोर्डों में उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है, लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े कारखाने थे, कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है, लाखों नौजवानों को यहां

0: नौकरी मिली है और 96 लाख एमएसएमई यूनिट में फिर से पुनर्जीवित होकर के रोजगार के नए अवसरों को सृजित किया है।
1: वज़ीरे आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत के अमन अमान की सूरत हाल, आने वाले त्यौहारों, रियासत के 59 अजला में 21 जून को होने वाले नीट इम्तिहान के उम्मीदवारों के लिए खसूसी इंतजाम करने की हिदायत दी। जनाब योगी आदित्यनाथ ने रियासती ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों में नीट उम्मीदवारों के किरायों में 50% रियायत का ऐलान किया। वज़ीरे आला ने इम्तिहान से मुतल्लिक अफवाहों, गुमराह किन मालूमात या झूठे दावों को फैलाने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी का भी हुक्म दिया। वज़ीरे आला ने बैनुल अक़वामी योगा डे की तैयारियों का भी जायजा लिया। मुहर्रम के हवाले से वज़ीरे आला ने कहा कि जुलूसों में असलहे की नुमाइश और ऊंची आवाज में डीजे म्यूजिक की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने अमन और हमाहंगी में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अज़्म भी किया। एनटीए के जरिए 21 जून को मुनक़िद होने वाले आइंदा नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान में शफाफियत को बढ़ाने और पेपर लीक होने के इम्कान को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन पैगाम रसाई को 22 जून तक रोक दिया है। एनटीए ने कहा है कि यह पाबंदी नीट के दोबारा इम्तिहान के दिन और उसके फौरन बाद नाफिज होगी। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को यह भी हिदायत दी गई है कि वह 30 तारीख तक पहले पोस्ट किए गए पैगाम में तरमीम करने के फीचर को बंद कर दे। रियासत में बढ़ते हुए दर्ज हरारत और गर्मी की लहर के हालात के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने बुनियादी तालीम काउंसिल से मुंसलिक स्कूलों और तस्लीम शुदा स्कूलों में गर्मियों की तातीलात 24 जून तक बढ़ा दी है। बुनियादी तालीम और सानवी तालीम महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस सिलसिले में हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक अब गर्मियों की तातीलात हर साल 20 मई से 24 जून तक होगी और 25 जून को बाकायदा तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू होंगी। ताहम असातज़ा, शिक्षा मित्र, इंस्ट्रक्टर्स और गैर तदरीसी अमला 22, 23 और 24 जून को स्कूलों में मौजूद रहेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर अमल करते हुए गुज़िश्ता 12 सालों में काबिल-ए-ज़िक्र तरक्की की है। इस मौके पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ इस मौजू पर एक खसूसी सीरीज़ पेश कर रहा है, तरक्की, एतमाद और अवामी बहबूद के 12 साल। आज इस एपिसोड में हम मुल्की विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए हुकूमती कोशिशों पर बात कर रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया।
1: आज मुहर्रम महीने की यकुम तारीख है। ये महीना गम के लिए जाना जाता है। इसी महीने की 10 तारीख को इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों को करबला में शहीद कर दिया गया था। आज यकुम मुहर्रम के मौके पर लखनऊ में शाही जरी का जुलूस शाम 7 बजे निकाला जाएगा। और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम आज अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेगी, जिसका मकसद वनडे सीरीज में नाकाबिले तस्खीर बरतरी हासिल करना है। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में कप्तान शुभमन गिल की क़यादत में हिंदुस्तान का मुकाबला हशमतुल्ला शाहिदी की अफगानिस्तान टीम से होगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है।
4: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
3: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
4: ओनली 100.7 FM रेनबो।
3: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
5: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर रोज सफर की हमारी यूं शुरुआत होती है। सुबह 6 बजे पुष्पांजलि

0: से पहली मुलाकात होती है। दिन भर का समय कैसे बीत जाता है, रेनबो अपना हर रंग मानो बिखेरता जाता है।
1: रंग दे
0: रात में तब सुकून आता है जब सदाबहार गीत कोई हमारे कानों में गुनगुनाता है।
2: मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को।
0: तमाम सारी जानकारी मनोरंजन के संग सिर्फ और सिर्फ एफएम रेनबो पर सुनना ना भूलें, सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

एक बजकर 23 मिनट और 23 सेकंड का वक्त हुआ है दोस्तों, और शालिनी है आपके साथ प्रोग्राम ओठो पे तेरी बात में। और ढेर सारे लोगों के ईमेल्स आ चुके हैं और कुछ ईमेल्स तो ऐसे आए हैं जो अभी प्रोग्राम हुआ है ना शत्रुपा उससे रिलेटेड आए हैं। किसी को मैंगो लस्सी बहुत पसंद आई है, तो कोई पूछ रहा है कि दही चावल में कच्चे चावल डालने या पके हुए। दोस्तों पका हुआ चावल, जी हाँ, पका हुआ चावल और दही एक साथ मिक्स कर लेना है, तो आ गया ना समझ में। और राम मोहन गुप्ता जी का मेल आया है और इन्होंने हमें कहा लखीमपुर खीरी से लिखकर भेजा है, सुबह लगती दोपहरी सी और शाम जैसे आती नहीं, मौसम की मार पड़ रही ऐसी आराम मिल पाती नहीं। क्या बात है, और बहुत लंबी लाइनें हैं, बहुत ही अच्छी लाइनें हैं दोस्तों। और आपने ये नहीं बताया कि आपकी जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसमें क्या खास है, आप क्या करते हैं। रायबरेली ऊंचा हार धमधमा से, हेलो मैडम, आज का है मेल और इनके यहाँ 8:30 से मूसलाधार बारिश हो रही, आंधी आई। भाई आप सभी लोग अपना ध्यान रखें क्योंकि बारिश का समय आ चुका है, और ऐसे समय में अगर आप पहले से तैयारियाँ कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अभी सुबह भी प्रोग्राम में बताया गया कि बारिश आने से पहले, मानसून आने से पहले आप अपने घर की छतें देख लें, दरवाजे देख लें, खिड़कियां देख लें, कहां पर पानी टपकता है, कैसे क्या सही कराने हैं। कुछ ऐसी चीजें तो नहीं घर की छत पर पड़ी हैं जिसमें पानी भर जाए और रुका रहे, पानी नालियों में ठहर ना रहा हो, क्योंकि जब बारिश आती है ना तो पता चलता है कितनी अंदरूनी साफ सफाई हमारे घर की है ना। नमी के लिए भी आप आस पास अपने घर का देख लें कि वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतजाम है या नहीं, कहीं पर आपको टिन शेड लगवानी है, कहीं पर आपको पॉलीथीन डालनी है जिससे कि पानी नीचे ना आए, घर के अंदर तक पानी ना आए, ये सारी जो तैयारियां हैं वो आपको कर लेनी है। और हाँ, छाता रेनकोट जैसी चीजें अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अभी से लेकर रख लीजिए, बाद में महंगे हो जाते हैं, और कुछ लोग तो काम चोरी की वजह से ये नहीं लेते हैं ना ये तो अलग बात है। चलिए, और आलोक साहू जी ने ये हमें मेल किया था जिन्होंने हमें सजग किया कि बारिश से पहले क्या क्या करना है। और मेल भाई अमरावती महाराष्ट्र से आया है प्रवीण और योगिता प्रियाली का, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, ऐसा मत करा करिए भाई। और कहाँ से आया है मेल, रामराज राजू भानु जी ने रायबरेली से मेल किया है, लेकिन इन्होंने अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में नहीं बताया। भाई ये आप जो हमें मेल कर रहे हैं रामराज जी, आप बताएं कि सुबह से रात तक आप क्या क्या करते हैं, किस समय कसरत करते हैं, किस समय एक्सरसाइज करते हैं, क्या करते हैं। मोहम्मद आसिफ अंसारी का हैदराबाद तेलंगाना से मेल आ चुका है और इन्होंने लिखा है कि यह सुबह 6 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद योग करते हैं। भाई

ये बहुत ज़रूरी है और आप ऐसा करते हैं इसके लिए, और लोगों को भी बताएं कि जब आप सुबह 6 बजे उठकर योग करते हैं उससे आपको क्या-क्या फायदे हैं। और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक की, और उसके बाद और लोगों के भी ईमेल्स लिए जाएंगे।

0: छत पे लेट के गिन चुका हूँ जो रोज वो सितारे गिनू, क्यों न जाने दोस्ती में दिल ना लगे सबसे
1: वास्ता। You speak English?
0: तोड़ ताड़ के

1:32 का वक्त शालिनी आपके साथ लेकर आपके ही और छुपी तेरी बात प्रोग्राम के ईमेल्स और प्रवीण जी का मेल आ चुका है। इन्होंने लिखा है, कम खाना खाना, रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, पैदल चलना, गाय का दूध पीना, फल फ्रूट्स खाना। वैसे इन्होंने बहुत शॉर्ट में अपनी पूरी हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में बता दिया है और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन जो कम खाना खाना, मतलब ऐसा नहीं है कम खाना नहीं, ओवर ईटिंग करना, जो आपको कहते हैं ना कि हमारा पेट भी भरा हुआ है, भूख भी नहीं लगी है और सामने हमने गर्मा गर्म समोसा देखा, अरे चलो भाई थोड़ा सा खा लेते हैं, हमारा पेट भरा हुआ है, सारी चीज़ें हैं, अभी हमने लंच फिनिश किया है और कोई पेस्ट्री लेके आ गया, अरे भाई थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर हमारा पेट भरा हुआ है, मन भी नहीं कर रहा है कुछ खाने का, लेकिन जो स्वाद है ना, जो जबान है ना, टेस्ट, कोई चटपटी सी पेटीज खा रहा है, चलो पिज्ज़ा मंगाया जाए। तो ये जो हैबिट है ना, इसको कम करना है, उस बात पर कहा गया कि कम खाना खाना। और हाँ, कहते हैं कि सुबह हम जल्दी नहीं उठ पाते, भाई सुबह जल्दी उठने की टेंशन ही नहीं लेनी है आपको, रात में समय से जल्दी सो जाना है। जब आप ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी सुबह आँख जल्दी खुल जाएगी, है ना, और सारा जो रूटीन है आपका धीरे धीरे व्यवस्थित हो जाएगा। तो चलिए, आपके भी ईमेल का है इंतजार, कर डालिए FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पे।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: सुनिए
6: कहिए कहिए,
5: सुनिए सुनिए
6: कहिए कहिए ना,
5: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
7: मैं हूं गीतकार योगेश और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

दोस्तों 1:45 और 20 सेकंड का वक्त, अरुण कुमार जी का मेल आ चुका है हरदोई से। हमें लिख रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि इन्होंने इस साल एक संकल्प लिया है स्वस्थ और फिट रहना, और ये बहुत ओवरवेट थे और इनका वजन, भाई वैसे वजन कोई इतनी जल्दी अपना बताता नहीं है अरुण जी, लेकिन आपने बताया है इसके लिए तो मतलब बहुत सारा एप्रिसिएशन आपको, क्योंकि आपने अपनी बात जो बताई है। 85 किलो के थे ये, और जब से जनवरी माह से इन्होंने संकल्प लिया था और अब इनका वजन घटकर 62 केजी हो गया है, और मैं हेल्दी और ऊर्जावान अपने आप को महसूस करता हूँ। और इसके लिए इन्होंने अपने खान पान और जो इनके नियम थे उसमें सुधार किया। ये सुनकर कितना अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, खासकर उन्हें जो ओवरवेट हैं और वजन बताते नहीं हैं अपना कि हमारा कितना है, लेकिन दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ है ना, देखकर ही पता चल जाता है। आप बताओ चाहे ना बताओ, सामने वाला भाप लेता है भाई आप कहाँ जा रहे हैं। और दुख तो तब होता है जब हमारी फिटिंग के खासकर कपड़े नहीं मिलते हैं, और जब हम डांस वांस करना चाहते हैं, कहीं पैदल चलना चाहते हैं और हमारे

सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं, है ना। तब महसूस होता है कि भाई हमारा वजन ज्यादा है, इसे कम कर लिया जाए। लेकिन उसके लिए क्या करना है? अरुण कुमार कुशवाहा की तरह संकल्प लेना है आपको। थोड़ी सी परेशानी होगी, मुश्किल होगा कंट्रोल करना खुद पर कि सामने रखी है चीज और दिल को और जुबान को काबू करना है, तो फिर सब कुछ हो जाएगा। और योग अपनाना है आपको। जैसे ही जैसे आप सारी चीज़ों में सुधार करेंगे तो आपकी हैबिट पड़ जाएगी। वकील अहमद जी ने हमें मेल कर दिया है और जिला सीतापुर से इन्होंने लिखा है, लेकिन आप ये बताइए जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है उसकी तो कोई बात ही नहीं, उसकी बात का आता पता ही नहीं है। जय जी का भी मेल आ चुका है, जयराम खुरवाल है ये, होली चौक उत्तम नगर से। हम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए बार बार जो तला भुना खाना है ना उसे बिल्कुल नहीं खाते हैं और रोज़ाना कम से कम 200 किलोमीटर पैदल चलते हैं। भाई इतना कहाँ तक चल जाते हैं भैया, देख लीजिए कहीं ऐसा ना हो एकदम दुबले हो जाए। और किसका मेल आया है? सतीश अनेजा जी का मेल आ चुका है और ये हमें सहारनपुर चंडीगढ़ से ये हमें मेल करते हैं और लिख रहे हैं कि वक्त पर हल्का नाश्ता, फिर रात का समय पर डिनर करके और उसके बाद 2000 कदम चलते हैं, बिल्कुल चुस्ती बनी रहती है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो देखिए इस तरह की हेल्दी जो आपकी लाइफ स्टाइल है होना बहुत ज़रूरी है। राधेश्याम जी का भी मेल आ चुका है और ये अच्छा राधेश्याम शाक्या जी हैं, कासगंज से हमें लिख रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि ये मॉर्निंग में 1 घंटा वॉक करते हैं और उसके बाद लौट कर ओट्स मूंग बेसन का चिल्ला चाय के साथ खाते हैं। दिन भर में 3 मील्स लेते हैं जिसमें बेसन चना सोयाबीन जौ की 5 रोटी खाता हूँ। शाम को खाना खाने के बाद 45 मिनट छत पर ये टहलते हैं और रात को सोने से पहले दूध में मखाने डालकर दूध पीता हूँ। भाई देखा, ये सारी चीज़ें इसलिए ना कि लोग कैसे क्या करते हैं, भाई जब सुनेंगे तो थोड़ा सा तो अवेयर होंगे ही होंगे। मेल आ चुका है महेंद्र देपेन जी का है और इन्होंने नागौर से मेल किया है। मेरी सेहत का कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है, बस सादा जीवन और मेहनत है। मैं बाहर से फास्ट फूड से पूरी तरह से दूरी बनाए रखता हूँ। घर का सात्विक भोजन विशेषकर छाछ को प्राथमिकता देता हूँ। मेरा दिन भर का काम मेहनत का है जिसमें दिन भर शारीरिक श्रम है और वो किसी वर्कआउट से कम नहीं है। और मेरा मानना है कि मेहनत का पसीना और घर का खाना ही सबसे अच्छी दवा है। बिल्कुल सही बात है और ये बहुत खुश हैं आज का जो विषय है उस पर बात करने के लिए। अच्छा, रामेश्वर जी का भी मेल आ चुका है और मुंगिसापुर कानपुर देहात से ये लिख रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि पहले ये 5 बजे उठ जाते हैं, 1 किलोमीटर घूमते हैं, टहलते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, इनका एक्सीडेंट हो गया है शायद, इस वजह से इधर ये चहल नहीं पाते हैं। लेकिन ठीक है, आप खाने पीने में कंट्रोल करें और जो भी एक्सरसाइज जिस भी हालत में आपसे संभव हो सके उसको अपनाइए। पिंकू सोनी जी का भी मेल आ चुका है और ये लिखे हैं कि 8 बजे उठता हूँ, अकेले की वजह से सुबह टहलना भी नहीं जा सकते हैं और रेडियो ऑन करके सुनता रहता हूँ। ये 12 बंकी से हमें लिख रहे हैं, भाई ये तो बिल्कुल आपको नहीं करना है। 6 बजे से हमारा FM रेनबो की शुरुआत हो जाती है, आप टहलिए और इसको अपने साथ रखिए क्योंकि आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ हमारा रेडियो भी जाता है और ये इस आदत को आपको सुधारना है। अकेले हैं तो क्या हुआ, अपने लिए तो काफ़ी हैं, है ना। और किसका मेल है? श्याम चौहान जी का भी मेल आया है और इन्होंने हमें दरियाबाद 12 बंकी से लिखा है, लेकिन हेल्थ की कोई बात नहीं लिखी है। चलिए अब फटाफट ये गाना सुन लेते हैं और उसके बाद फिर और लोगों के ईमेल्स भी लेंगे।

1:55 का वक्त है, अमन नवाब जी का मेल आ चुका है और संडीला से ये लिख रही हैं और इनके हेल्दी लाइफ स्टाइल का जो मंत्र है वो हेल्दी फूड और फ्रूट्स है, इनकी फेवरेट है तुरई, कद्दू, लौकी और लौकी का रायता, इन्हें दही वाला बहुत पसंद है, पनीर भी खाती हैं ये, अंडा भी खाती हैं और सीजनली जो फ्रूट्स हैं वो इन्हें बहुत पसंद है, इसीलिए ये बहुत खुश रहती हैं, थोड़ी बहुत ये एक्सरसाइज भी करना जानती हैं दोस्तों और करती भी हैं। राजेश से इनका भी मेल आया हुआ है और इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं लिखकर भेजी है कि हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या है, और भाई सभी लोगों ने जो अपनी फरमाइशी गानों की फरमाइश की है वो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बिल्कुल लेंगे। और ये तालिब अंसारी का भी मेल आ चुका है और इन्होंने हमें बाराबंकी से लिखकर भेजा है और ये फिट हैं और बस एक चीज़ मैं ज़रूर ध्यान रखता हूँ कि बाहर का खाना मैं नहीं खाता हूँ, अगर खाना पड़ा तो साफ़ सुथरा और बाकी चीज़ों का भी ये ध्यान रखते हैं तभी ये फिट हैं। और मैं लखनऊ में हेल्थ से अच्छा नहीं रहता हूँ, गांव में बहुत अच्छा। अच्छा, अगर ये लखनऊ में रहते हैं तो ये हेल्थ से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। विपिन कुमार पांडे जी का मेल आया है, वारिस अली खान जी का भी मेल आ चुका है असबाग लखनऊ से और इन्होंने लिखा है कि पैदल चलने पर आपको मधुमेह नहीं होता है और

भाई मैं टहलना मैंने शुरू किया और बहुत दुबला भी हो गया है, और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं ये भी। और भाई दोस्तों, अब इसके साथ प्रोग्राम इसको करते हैं वाइंड अप, क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम वॉचमेल आपका इंतज़ार कर रहा है। और बढ़िया प्यारा वाला गाना, इस पर डांस करिए ताकि आप दुबले हो जाए।

नमस्कार, दोपहर के 2 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के वियना में G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वॉशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस के 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं के सपनों को नई उड़ान, उनकी योग्यता के अवसर और परिश्रम को सम्मान देने वाली पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सरकार की पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा कंप्यूटर ऑपरेटर उत्तर प्रदेश पुलिस को और अधिक आधुनिक, प्रभावी और तथा जनता के लिए उपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित गंगोत्री से गंगा सागर योग यात्रा के अंतर्गत वाराणसी के रविदास घाट पर योग और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। गंगा के तटवर्ती प्रमुख नगर

का संदेश जन जन तक पहुंचा रही है। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु भी शामिल हुए। आयुष मंत्रालय की महानिदेशक डॉक्टर चित्रा बी ने योग को स्वस्थ संतुलित और सक्रिय जीवन शैली का आधार बताते हुए लोगों से इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आह्वान किया। अयोध्या में देवकाली पुलिस चौकी क्षेत्र में स्थित पवन कुमार वाल्मीकि उर्फ पवन मालवीय के आवास पर आज सुबह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। यह कार्रवाई अमेठी के बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखा अनुभाग के हुए करीब 7 करोड़ रुपए से अधिक के कथित गमन की जांच के सिलसिले में की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर चल रही जांच के तहत सीबीआई के अधिकारियों ने घर में मौजूद वित्तीय अभिलेखों, महत्वपूर्ण दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की गहन जांच की। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जा रहा है। अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रन चुना है। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow,
6: धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों 2:04 और 19 सेकेंड का वक्त प्रोग्राम हॉट मेल की हो चुके हैं शुरुआत, जिसमें ढेर सारे ईमेल्स भी एकदम बारिश की बौछार की तरह आ चुके हैं हमारे पास। शालिनी इस प्रोग्राम में आपके साथ और शुरुआत कर देते हैं, एक दो ईमेल्स ले भी लेते हैं। वारिस अली खान का मेल आ चुका है ऐशबाग लखनऊ से, और इन्होंने अर्ज किया है, इस कदर कैद हूँ मैं FM की मोहब्बत में, अगर रिहाई का रास्ता भी दिखाई दे तो नज़रअंदाज कर दूँ। क्या बात है, आपका प्यार हमारे लिए बहुत कुछ है। और मेल आ चुका है शेख मूसा मोहसिन का सनावत से, इन्होंने भी प्यार भरा आदाब किया है। संदीप मक्कर जी का भी मेल आ चुका है, और इन्होंने हमें जलंधर से मन्नत भरत कमल के साथ में मेल किया है। रमाकांत सिंह का भी मेल आ चुका है, तुम्हें बस यह बताना चाहता हूं कि मैं तुमसे क्या छुपाना चाहता हूं, कभी मुझसे भी कोई झूठ बोलो, मैं हां में हां मिलाना चाहता हूं। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और इसी बात पर ये प्यारा से ट्रैक बहुत कम सुनने को मिलता है, लेकिन फरमाइश आई तो शालिनी ने तुरंत सेलेक्ट कर लिया और ये आपके बीच पहुंच रहा है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

2:17 और 23 सेकेंड जनकपुरी सहारनपुर से हमारे पास में मेल आ चुका है जोन डिक्रोस्टो रोजी पर विलिस का और गाने की फरमाइश की है आपने। सुधाकर जादव जी क्या हो गया है, ऑटो मोड पे आपका मोबाइल लग गया है लग रहा है, बार बार ईमेल आया जा रहा है, ज़रा चेक कर लीजिए, स्टॉप कर दीजिए उसे। जाफराबाद से हमें लिख कर भेज रहे हैं प्रशांत संचित प्रथमेश सर्वद प्रणाली सानवी कल्प पना के साथ में इन्होंने मेल हमें किया हुआ है और पीएस नोहाकर निर्मला विशाल नरवेल महाराष्ट्र से और मलकापुर से नारायण इंगले और सोपान ताड़िया आशीष का मेल आया हुआ है। सुरेश नारंग का आशा और सोनाली के साथ सहारनपुर से मेल आ चुका है, थैंक यू। अब्दुल गफ्फार का भी खंडवा से मेल आया है, अब्दुल हक डावर जियाउल हक मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे के साथ में इन्होंने हमें मेल किया है। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल सचिन अपन दीपांशु का मेल आया हुआ है और बढ़िया सी गाने की आपने फरमाइश की है और साजी बोड़के का भी मेल आ चुका है और इनके साथ में नंदा हनुमान और उत्तम है हिंगोली महाराष्ट्र से हमें मेल कर रहे हैं। दिग्दर्शन जी का भी मेल बाईपास मेरठ से आया है, कविता कर्ण शक्ति रिया जया और दर्शन भाई के साथ में। सतीश अनेजा जी का मेल विमला के साथ चंडीगढ़ से आया हुआ है और प्यारे से गाने की फरमाइश की थी इन्होंने। उत्तम कुमार भगत का पाकुंज झारखंड से श्वेता किशु तासु अर्णव आनंद सत्यम के साथ में आया है मेल और संतोष चौरसिया जी का भी मेल आया है और पूजा भारद्वाज भी हैं इनके साथ हरियाणा गुरुग्राम से ये मेल कर रहे हैं और अब सुनिए ये प्यारा सा ट्रैक।

दोस्तों आप सभी लोग सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की शालिनी के साथ प्रोग्राम हॉचमेल और सुधांशु जी का भगवतीपुर पोस्ट मोहन इटौंजा बख्शी का तालाब लखनऊ से मेल आया है और इन्हें बहुत अच्छा प्रोग्राम लग रहा है और दिल के दरिया में एक बहार सी आ गई है, आपकी आवाज़ सुनकर रूह खिल सी गई है। ये सारी लाइनें लाते कहाँ से हैं आप सभी लोग? किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी का भी मेल आ चुका है और नारायण गायकवाड़ दयानंद ओमकार साई गायकार नांदेड़ महाराष्ट्र से हमें मेल कर रहे हैं और सीताराम कांगड़ा अंशिका तमन्ना सागर गोलू ये चौबीसी से हमें मेल इन्होंने किया है। बाबू अंसारी जी का भी मेल आया है और किसका किसका नाम है, अच्छा पता नहीं क्यों इतने सारे नाम लिखकर आप सभी लोग भेजते हैं और एक दिन नहीं हर दिन लिखकर भेजते हैं और कहते हैं कि सबका नाम ले लिया जाए। और मोहसिन हाशमी का भी मेल आया हुआ है, गंज डुंडवारा से हैं और बेगम हाशमी तौसीब और कलीम है साथ में। बिट्टू गगनेजा जी का भी मेल सुरेश पूनम विशाल दिशानी निमित के साथ जलालाबाद वेस से मेल आया हुआ है। स्वर्ण सिंह गिल दलजीत राजदीप गुरलाल अविराज गुरनूर के साथ में फिरोजपुर पंजाब से हमें मेल कर रहे हैं। बोधराज खोरवाल जी का भी मेल आ चुका है उत्तम नगर दिल्ली से भानु प्रकाश कमला रानी गीतिका के साथ में इन्होंने मेल किया है। और ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साबिर राही मेहराज जहां आज़ाद नगर लक्षर हरिद्वार से मेल आया हुआ है और मेल जितेंद्र नामदेव बबलू अंजू खनक आरोही सौम्या के साथ में इन्होंने हमें शहडोल मध्य प्रदेश से इन्होंने मेल किया है। और बारिश प्यारे से ट्रैक की सुनिए और एंजॉय कीजिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त

यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, बीसीए, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

ये पीछे पीछे आ गई और हम आगे आगे चल रहे हैं। 2:37 और ये देखिए 38 मिनट हो चले हैं। और तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी नौशाद बेबी आलिया आयान बाबू का मेल आया है। अब्दुल गफ्फार जी का भी मेल संजय कॉलोनी खंडवा से आया है। और आप प्लीज़ बार बार मेल ना करें। और सुनील पाठक जी का भी मेल आ गया है। और भाई आपका मेल तो शामिल किया जाता है, आप कैसे कैसे कह सकते हैं कि आपका मेल नज़रअंदाज किया जा रहा है। और इन्होंने हमें जगराव पंजाब से कमल दीपिका और सुच्चा भाई जी और गायवा के साथ मेल किया है। राजकमल यादव जी का भी मेल आ चुका है। और शुभ दोपहर आपको भी। और इनके साथ ज़्यादा कोई नहीं है। अच्छा, रमज़ान समीर और सावन कुमार कई लोग हैं इनके साथ में। और इन्होंने सूरतगंज बाराबंकी से हमें मेल किया है। साहिब आलम का भी बब्बन समीर के साथ में मेल आ चुका है। इन्होंने ऐशबाग लखनऊ से हमें मेल किया है। और सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद और ढेर सारे नामों के साथ प्यारा सा मेल आया है। और मुंबई से अहमद भाई दुखनी सफ़र जूही इकबाल सभी का मेल आया है। ब्रिजेश विश्वकर्मा तारा सोनाली सोनम का भी मेल टीकमगढ़ आ चुका है वहाँ से। और दीपेश वर्मा जी का भी मेल आया है। और भाई आप का मेल छत्तीसगढ़ से आप हमें मेल करते हैं। और पूनम ज्योति शिवांश के साथ में अजमत अली जी का भी मेल आया है। और इन्होंने सीतापुर से हमें मेल किया है। आयुषी मौर्या ने भी हमें मेल किया है। और रेनु और रामेश्वर मम्मी पापा सभी लोग इनके प्रोग्राम को हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। उन्नाव से ये हमें मेल कर रही हैं। आफ्ताब अंसारी कहाँ से मेल किया है, गंज डुंडवारा से मेल किया है। और रियासत हुसैन नजमा बेग रियाजत जसपुर उत्तराखंड से मेल कर रहे हैं। सनानंद सदानंद का भी मेल आया है सुशीला देवी के साथ में। कुमार गौरव हैं अकोला से, इन्होंने हमें मेल किया है। मुकेश कश्यप शीतल सोनू सुरेश के साथ में दूल्हापुर से मेल किया है। और ये नरेश मल्होत्रा नीटू का भी खैल बाजार पानीपत से लक्ष्य लाडो के साथ मेल आया है। तुलसी मस्कीन का भी मेल आ चुका है इनके साथ। वीना चैतन्य चंडीगढ़ से और बिहार कॉलोनी से हमें मेल कर रहे हैं। रामेश्वर जी का मुंगिसापुर कानपुर देहात से मेल आया है। उमा कांति कमलेश के साथ ही हमें मेल कर रहे हैं। और कहाँ से मेल आया है, कहीं से जगह तो नहीं लिखी है। और गुन्नौर से आदिल और अली मुजफ्फर अली का मेल है। शाहरुख नूर अंसारी का भी मेल आ चुका है फरियाद शकील के साथ। मटकली ज़िला बरेली से, हरियाणा से अंकित कांगड़ा मोनी प्रिंस बोर्ड सीताराम के साथ में मेल है। और ये किसका मेल आ गया है, ये पिपरिया से रहा कमल कांत गुप्ता का दीपा रिमझिम के साथ इन्होंने मेल किया है। ओम बघारिया जी का भी मेल आया है। क्रियांश और योगेश के साथ पंजाब से ये

हमें मेल कर रहे हैं। किसका मेल? टीटी मल्होत्रा जी का भी मेल चंडीगढ़ से आ गया है। और ये राजकुमार टूटी प्रमोद पुष्पेंद्र का फ्रांस हिसार से मेल आया है। दिलीप कुमार सोनी भागलपुर बिहार से हमें मेल कर रहे हैं। और अब दोस्तों गाना सुना देना, नहीं तो सिर्फ नाम लेते रह जाएंगे।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
3: Stay tuned 100.7 FM Rainbow,
4: धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार दोस्तों, 2:51 और 23 सेकंड हो चले हैं और साथ ही साथ ढेर सारे ईमेल्स आ गए हैं। और भाई कभी कभी तो ये भी सोचते हैं, और कुछ लोगों की राय भी है जो बहुत सारे लोगों के नाम लिखकर दे देते हैं ना, तो जो भेज रहा है उसी का ही नाम लिया जाए। और रोज़ रोज़ वही नाम, टाइम भी जाता है और ईमेल्स भी सही से हम नहीं पढ़ पाते हैं। आर्यन राज का रोहित और पीयूष के साथ मुजफ्फरपुर बिहार से मेल आया है। और वारिल मुंबई से नवाब खान इशरत जहाँ अजरा का मेल आ गया है। शाहरुख नूर अंसारी का, भाई आपका मेल पढ़ा जा चुका है फिर भी आपने फिर से भेज दिया। शमशुल कमर राही शाहीन अदनान और गंज डुंडवारा से मेल आया है। उषा रावत जी का भी मेल आ चुका है, कोई भी फरमाइश नहीं है, अमेठी से प्यारी सी बात के साथ ये हमें मेल कर रही हैं। विजय मोहबिया कविता पेंटर बाबू के साथ खंडवा से हमें मेल कर रहे हैं। और ये नंदन कुमार जी अंकित के साथ हमें मेल कर रहे हैं बिहार से, थैंक यू मेल करने के लिए। और ये विकास बंसोड़े रेखा आदित्य का मेल महाराष्ट्र से आया है। हीरामणि वर्मा पुष्पेंद्र नोखेलाल के साथ छत्तीसगढ़ से हमें मेल कर रहे हैं। और ये मेल महाराष्ट्र से हरिभाव और अनिकेत शुभांगी श्रवण का भी आ चुका है। और एक मेल महाराष्ट्र से ही है, भाई देखिए महाराष्ट्र से कितने लोग मेल कर रहे हैं। संतोष एस काले तेजस लोकेश के साथ हमें मेल कर रहे हैं। और कौशिक अस्मिता का भी मेल राजकोट गुजरात से आ चुका है। और नूर आयशा अहमद बागवान इकबाल अहमद का छोटी बलिया से मेल आया है दोस्तों। और ये आ चुका है मेल मुजर्रत जहानाज का, तलहस जहानाज सीतामढ़ी बिहार से ये हमें मेल कर रहे हैं। और ऐसा कोई नहीं होता है जिसका मेल छूट गया हो। यासीन अनजान का भी मेल आया है। संजय डिगिया जी का मेल संजय साहू पोटिया कला से। हनुमंत सिंधे और हीरामणि वर्मा का मेल आ चुका है। और सिद्धार्थ गुढ़ाने हैं, बसंत कुमार सिन्हा हैं, मोहम्मद सादिक का मेल, दारा सिंह का मेल, कोमल तिवारी का मेल और हरिभाव का भी मेल, आर्यन मंशूर हसन का भी मेल आ चुका है। और दुर्गा राम साहू का भी मेल आया हुआ है। ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, विठल जादव, पंकज शर्मा, उत्तम कुमार भगत, नरेश मेहरा अरोरा, आर कुमार, ढेर सारे लोग जिन्होंने दोबारा क्या चौबारा पचवारा क्या बोले उतनी बार मेल किया है। सोमदत्त का भी मेल है, लालगिरी का भी मेल है, हरजिंदर सिंधे हैं, लक्ष्मण लोखंडे हैं और रोशन जहां है, संजय मारकांडे, अशोक कुमार खरे, इन्होंने दोबारा नहीं किया भाई, एक ही बार किया, दिनेश वर्मा, गगनदीप थांदी, जावेद अख्तर, राजेश वर्मा, इतने लोगों ने मेल किया। बलवेश पवार का भी एक ही बार मेल आया। मोहम्मद कमर, हिमकेश्वर साहू और महेंद्र प्रसाद मोदी, हरजिंदर सिंधे, सुदर्शन शाह, इतने लोगों का मेल आ चुका है। और अब प्यारी है किस बात की, प्यारे से ट्रैक की, और उसके बाद प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में होगी शालिनी आपके साथ 3 बजे से। और हाँ, 3:30 से जो हमारा प्रायोजित कार्यक्रम है NCERT वो सुनना बिल्कुल नहीं भूलना है, इसीलिए आधे घंटे पहले बता दिया। अपना समय देख लें और अपने काम को आगे पीछे शिफ्ट कर लें।

नमस्कार, दोपहर के 3 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्यवाहियों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान देश ने रक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस के 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं के सपनों को नई उड़ान, उनकी योग्यता को अवसर और परिश्रम को सम्मान देने वाली पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सरकार की पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा कंप्यूटर ऑपरेटर उत्तर प्रदेश पुलिस को और अधिक आधुनिक, प्रभावी तथा जनता के लिए उपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए केशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इन

में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। यह सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने देवरिया जिले के रामपुर कारखाना विकासखंड के देसही गांव में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया। उन्होंने महर्षि देव राह बाबा मेडिकल कॉलेज में वृक्षारोपण के पश्चात योग कक्षा का शुभारंभ भी किया। उप मुख्यमंत्री

0: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستان، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ لکھنؤ ہے جناب۔
1: ہائی ٹیک مالز، اسٹریٹ فوڈ، 10.90 پر گلزار ہوتی شامیں، چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئیں تک، یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب۔
2: سمجھے جناب علی،
1: جہاں ہر گھر میں بچتا ہے 100.7 ایف ایم رینبو۔ دھڑکن لکھنؤ کی۔
3: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424242।
4: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
6: समय हूं और मैं हरीश बिमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
1: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

3:12 का वक्त शालिनी है आपके साथ प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में दोस्तों, और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। और केवल FM सुनते ही नहीं हैं, उसकी बातें भी मानते हैं, उस पर गौर भी करते हैं।

और कही हुई चीजें उनको अपनी या लाइफ में भी उतारते हैं। तो बस इस वक्त तो इतना ही कहना है कि अपना ध्यान रखें, हेल्थ के प्रति सचेत रहें, क्योंकि आजकल जो जो लोग हमें आशीर्वाद भी देते हैं तो वो क्या कहते हैं कि स्वस्थ रहिए। जी हाँ, भले बुरे पूरे रहें और बहुत सारे आशीर्वाद और भी चीज़ें होते थे, लेकिन अगर अक्सर देखा जाए जो दिया जाता है वो हेल्थ के लिए ही दिया जाता है, यानी कि स्वास्थ्य जो है हमारा वो सही रहे, और वो इसलिए क्योंकि इससे बढ़कर और कोई भी चीज़ नहीं है। और इसकी ताकत और कब पता चलती है, जब हम बीमार होते हैं, जो ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं हो पाता या लंबे समय तक हम परेशान रहते हैं, पैसा भी खर्चा करते हैं, मानसिक तनाव रहता है, परिवार में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तब समझ में आता है अरे हम पहले ही जागरूक हो गए होते तो ये नौबत क्यों आती। तो बस आप इस तरह की कोई नौबत ना आने दें, अपना ख्याल रखें, अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारें और योग को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें।

प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

इसी के साथ प्रोग्राम सतरंगी दुनिया को करते हैं यहीं पर वाइंड अप। शालिनी के भी जाने का समय आ चला है, होगी आपसे मुलाकात किसी और दिन ना, तब तक के लिए सुनते रहे 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। और हाँ, 3:30 से प्रायोजित कार्यक्रम जरूर सुनना है, NCERT द्वारा हो प्रायोजित कार्यक्रम।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: दोस्तों, वक्त हो चला है 3:39:55 का और अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: शब्दांग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार कीजिए स्वीकार। करते हैं शुरू एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने।
2: लिखते हैं, सकारात्मक सोच हर समस्या में समाधान खोज लेती है।
1: वाह, बहुत सुंदर विचार। आपके इस विचार से सच में हम सबको प्रेरणा मिलती है। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
1: एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो जैसा कि हमने कहा था, इस सप्ताह हम बात करेंगे कुछ अनूठी झीलों के बारे में। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज का विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसी झील के बारे में बात करेंगे जिसे बहुत ही रहस्यमय और पवित्र माना जाता है। श्रोताओं, जरा अंदाजा लगाइए मैं किस झील की बात कर रहा हूँ। आपको संकेत तो मिल ही गया होगा कि वो झील रहस्यमय भी मानी जाती है और पवित्र भी। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके मन में मानसरोवर झील का नाम है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4,590 मीटर है और इसका क्षेत्रफल करीब 320 वर्ग किलोमीटर है। आइए अब जानते हैं कि ये झील है कहाँ। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि ये झील तिब्बत और चीन के पर्वतीय क्षेत्र में पड़ती है। इसका सबसे निकटतम पर्वत है कैलाश पर्वत। आपको ये भी बता दें कि भारत की ओर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे या सिक्किम के नाथुला पास से की जाती है। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो इसके निर्माण का कारण है भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर। इस टक्कर के कारण भूमि ऊपर उठी, पर्वतों में दरारें और बड़े बड़े गड्ढे बने जिससे हिमनदों का पानी जमा हो गया। इसीलिए मानसरोवर झील को टेक्टोनिक झील भी कहते हैं। अब एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके साथ

0: मैं साझा करना चाहता हूँ। अभी आपने सुना कि ये मीठे पानी की झील है, लेकिन श्रोताओ इसी झील के बिल्कुल पास एक और झील है जिसका पानी खारा है। इसे राक्षस ताल कहते हैं। ये एक बंद झील है। जल के निकास और वाष्पीकरण की भिन्न प्रक्रियाओं के कारण यहाँ का पानी खारा है, क्योंकि यहाँ का पानी वाष्पित होता रहता है जिसके कारण लवण और अन्य खनिज इसी में रह जाते हैं। दोनों सरोवरों को कैलाश पर्वत, हिमनदों और वर्षा से ही जल मिलता है। एक छोटी नदी इन दोनों सरोवरों को आपस में जोड़ती है जिसे गंगा चू नदी कहते हैं। तिब्बती भाषा में नदी या जलधारा को चू कहते हैं। जी हाँ, सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है श्रोताओ। आइए अब सुनते हैं एक और बड़ी रोचक बात इस झील के बारे में। वहां गए यात्रियों के अनुसार मानसरोवर झील रंग बदलने वाली झील है। सूर्योदय के समय ये नीले और हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन सूर्यास्त के समय इस झील का रंग सुनहरी आभा में बदलता हुआ दिखाई देता है। आपको एक और बात बता दें कि मानसरोवर झील सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। जहां तक धर्मों की बात है, ये झील हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में विशेष स्थान रखती है। श्रोताओं, एक और बड़ी खास बात, मानसरोवर झील को कैलाश पर्वत का दर्पण भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों। जी, इसका उत्तर है, मानसरोवर झील में पास के कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, खासकर साफ और शांत मौसम में। मानसरोवर और कैलाश पर्वत क्षेत्र से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। बौद्ध धर्म में मानसरोवर झील को मापाम युमत्सो कहते हैं, जबकि जैन मान्यता में इस झील को ऋषभदेव से जोड़ा जाता है जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आइए बात करते हैं इस झील में पाए जाने वाले जलीय जीवों की। तो श्रोताओ, यहाँ ठंडी जलवायु और दुर्गम परिस्थितियों के कारण जैव विविधता सीमित है, फिर भी कुछ अनुकूलित जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। इस झील में मछलियों की बड़ी अच्छी मात्रा है। पानी इतना साफ है कि अंदर तैरती हुई मछलियां भी 14 मीटर की गहराई तक करीब करीब साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। यद्यपि मान्यताओं के कारण यहाँ मछली पकड़ना या मारना निषिद्ध है। ये झील पर्वतीय पक्षियों और पशुओं के लिए एक आदर्श ठिकाना है। दुर्लभ प्रजाति के हंस, ब्राह्मणी बतख और पहाड़ी कौवे यहाँ मिलते हैं। जहां तक पशुओं की बात है, छोटे तिब्बती गधे और दुर्लभ प्रजाति के याक भी यहाँ मिलते हैं। तो श्रोताओं, अब करते हैं आज की चर्चा को समाप्त, लेकिन जाते जाते एक और रोचक तथ्य आपके साथ साझा करता हूँ। मानसरोवर झील जीवन से भरपूर है। यहाँ पशु पक्षी और दुर्लभ वनस्पतियां प्रचुरता से मिलती हैं, लेकिन पास के राक्षस ताल में खारे पानी के कारण लगभग कोई मछली या जलीय वनस्पति नहीं होती। इसीलिए लोक मान्यता में मानसरोवर झील को अच्छाई और राक्षस ताल को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कुल मिलाकर मानसरोवर न केवल अध्यात्म और आस्था का केंद्र है, लेकिन ये ऊंचे दुर्गम स्थान की पारिस्थितिकी तंत्र का भी बेजोड़ उदाहरण है। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के बहुत पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी मानसरोवर झील की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। हमारा IBRS नंबर भी नोट कर लें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की रोजाना की उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मंगल पांडे।
1: ये कार्यक्रम अमर शहीद मंगल पांडे के जीवन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा सूचना देता है।
2: दादी जी,
3: अरे आशीष, दीपिका, आओ आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई, बैठो।
2: दादी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था।
3: हाँ, पूछो।
2: ये 1857 क्या है? आजकल अखबारों में कई लेख देखे हैं।
3: ऐसा है आशीष बेटा, ये कहानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की है, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत बड़ा विद्रोह किया था।
2: अच्छा।

0: सभी देशवासी देश को आजाद कराने के लिए कूद पड़े थे। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हुआ क्योंकि सभी देशवासी ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को मुक्त कराना चाहते थे।
1: अच्छा।
0: यानी आजादी आजादी आजादी। राजे महाराजे, नवाब, किसान, मजदूर, अमीर, गरीब, छोटे बड़े सभी लोग और जांबाज सैनिक अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए।
1: ओह,
0: उस समय हिंदुस्तान के लोगों पर एक जुनून सवार था। देश की आजादी के लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार था।
2: अच्छा।
0: ऐसा ही एक जांबाज सिपाही था, मंगल पांडे।
1: ओह, मंगल पांडे।
0: हाँ, मंगल पांडे। 1857 के आरंभिक विद्रोहियों में से ये सबसे पहला विद्रोही था। उसने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया।
2: अच्छा।
0: उस समय ये लड़ाई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लड़ी जा रही थी।

0: दादी जी, लड़ाई में कौन कौन थे?
1: दीपिका, इस लड़ाई में कई नायक और नायिका थे, जैसे अवध में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और राजा कुंवर सिंह जैसे वीर योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी।
2: बड़े बहादुर थे ये।
1: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई गीत भी लिखे गए।
0: दादी दादी, हमें मंगल पांडे की कहानी सुनाओ ना।
2: वो कहाँ के रहने वाले थे?
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले थे।
2: अच्छा।
1: बचपन में उनकी माँ उन्हें देश प्रेम की कहानियाँ सुनाती थी। मंगल पांडे फौज की नौकरी बहुत पसंद करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कलकत्ता गए और बैरकपुर छावनी में सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। और धीरे धीरे वो एक होनहार सिपाही बन गए।
2: दादी, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई?
1: भाई, उनकी ट्रेनिंग हुई बैरकपुर छावनी में, और ट्रेनिंग के बाद वो सिपाही नियुक्त हो गए। फिर उन्होंने कई साल फौज की नौकरी की।
2: अच्छा दादी जी, लेकिन वो हीरो कैसे बने?
1: बेटा, उन्होंने बैरकपुर छावनी में बड़े बड़े कारनामे किए।
0: अच्छा, क्या क्या? जरा सुनाओ ना दादी।
1: सुनाती हूँ। देखो बच्चों, 25 फरवरी 1857 का दिन था। बैरकपुर छावनी के सिपाही बहुत नाराज थे।
0: ऐसा क्यों?
1: अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी लगा कारतूस चलवाते थे।
2: ओह।

0: इसके कारण हिंदू और मुसलमान दोनों ही परेशान थे। देसी सिपाही एकजुट हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गए।
1: अरे अब तक तो अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाकर लूट रहे थे, अब वो हमारा धर्म भी भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए कारतूसों में चर्बी लगाई गई है।
2: दादी फिर क्या हुआ?
0: फिर दूसरे दिन खाने के लिए मेस में सभी सैनिक इकट्ठे हुए और कारतूसों की चर्चा करने लगे। सैनिक गुस्से में चूर थे। उन्हीं में से एक सैनिक बोला,
1: हमें अपने धर्म की रक्षा खुद करनी होगी।
3: फिर क्या हुआ दादी?
0: फिर धीरे धीरे ये खबर देश की अन्य छावनियों में भी फैल गई। सैनिकों की बैठक पर बैठक होने लगी।
3: फिर क्या हुआ दादी?
0: सैनिकों की नाराजगी देखकर अंग्रेज मंगल पांडे वाली 19वीं देसी रेजिमेंट को तोड़ना चाहते थे।
3: अच्छा?
0: सिपाहियों को अंग्रेजों की इस चाल की भनक पड़ गई। 26 मार्च रविवार का दिन था। सैनिकों में और असंतोष बढ़ गया।
4: हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा चल नहीं सकता,
3: उसके बाद क्या हुआ?
0: बैठक के बाद बैठक हो रही थी। माहौल बहुत गर्म था। एक भरी बैठक में मंगल पांडे ने सिपाहियों को ललकारा और कहा,
5: ये गोरे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। अब ये हमारे दीन धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हम उस मिट्टी में पैदा हुए हैं जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे वीरों ने जन्म लिया। हम कदापि अपना धर्म भ्रष्ट न होने देंगे,
6: नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं।
5: भले ही हमें फांसी के तख्ते पर झूलना पड़े।
0: सैनिकों में गुस्सा और तनाव था, शायद कुछ होने वाला है। बच्चों, रोज की तरह परेड के मैदान में मंगल पांडे भी आया। उसका पारा बहुत गर्म था, गुस्से से चेहरा लाल था। मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की परवाह न करके परेड की लाइन से निकलकर सिपाहियों को ललकारा।
5: भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। आओ, भारत माँ की आजादी के लिए इन अधर्मी अत्याचारियों पर टूट पड़ो।
0: सैनिकों में और जोश भर गया। परेड के मैदान में अंग्रेज ऑफिसर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखकर कांप उठा। कांपते स्वर में उसने सैनिकों से कहा,
7: हम पांडे को अरेस्ट मांगता है।
8: मंगल पांडे जिंदाबाद, मंगल पांडे जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
0: तुरंत ही मंगल पांडे ने अंग्रेज ऑफिसर पर गोली दाग दी। ऑफिसर तो वहीं गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर लेफ्टिनेंट वॉम आया। मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चलाई।
9: ए मंगल पांडे, वॉच आउट।
0: सारी छावनी में खलबली मच गई।
3: उसके बाद क्या हुआ दादी?
0: उसके बाद

0: तुरंत ही कर्नल व्हीलर आया और मंगल पांडे को अरेस्ट करने का हुक्म दिया।
1: अरेस्ट करो,
2: मंगल पांडे को किसी के हाथ नहीं लगने देंगे।
3: दादी जी, फिर क्या हुआ?
0: कर्नल व्हीलर वहां से तुरंत लौट गया। तुरंत ही जनरल हियर्स एक फौजी टुकड़ी के साथ मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए आए। मंगल पांडे ने गोरों की टुकड़ी आते देखकर अपनी बंदूक से खुद को गोली दाग ली।

0: ठिकाना मांगता है, तुरंत अस्पताल भेजाओ।
1: उसके बाद क्या हुआ?
2: उसके बाद ठीक होने पर सैनिक अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के समय मंगल पांडे ने छाती तानकर खुले शब्दों में कहा,
3: हाँ, मैंने अंग्रेज अफसर पर गोली दागी थी, पर मेरा उनसे किसी प्रकार का निजी द्वेष नहीं था। ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की है। मैं अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करना चाहता हूँ।
1: क्या कोई कार्रवाई हुई?
2: हाँ, क्योंकि अंग्रेज हिंदुस्तानियों में खौफ का माहौल बनाना चाहते थे, इसलिए तुरंत ही सैनिक अदालत बैठी।
4: दादी जी, सैनिक अदालत का फैसला क्या था?
2: सैनिक अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। 18 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। ये इस आंदोलन की पहली कुर्बानी थी। पूरे देश में फांसी की खबर फैल गई। भारत माता का वो सपूत था जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। इसके बाद आजादी की लड़ाई जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गई।
4: इसके बाद क्या हुआ दादी?
2: इस बलिदान के कारण आज सारा देश मंगल पांडे को याद करता है। उन पर फिल्में बनाई गई। लोक साहित्यकारों ने तो उन पर कई गीत भी लिखे। मंगल पांडे पर प्रसिद्ध नारायण सिंह की कविता, जो भोजपुरी भाषा में लिखी है, ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
4: अच्छा।
2: इस कविता में क्रांतिवीर मंगल पांडे का गौरव गान किया गया है।
5: जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैल, बलिया का मंगल पांडे के बलबेदी से ललकार भैल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मसहूर चलल, गुरनी का पलटनी का आगे, बलिया के बांका सूर चलल, गोली के तुरंत निशान भैल, जननी के भेंट परान भैल, आजादी का बलबेदी पा, मंगल पांडे बलिदान भैल, जब संतावनी के रारी भैली, वीरन के वीर पुकार भैली।
4: दादी, इस लोकगीत का अर्थ क्या है?
2: इस लोकगीत में उल्लेख है कि 57 के युद्ध में वीरों को क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया गया।

0: अच्छा।
1: बलिया के मंगल पांडे मस्त होकर क्रांति के लिए गोरों की सेना के सामने छाती तान कर खड़े हो गए। इससे भारत की सोई हुई वीरता जाग गई, जिसने बैरकपुर की बैरकों में अंग्रेजों की सेना में खलबली मचा दी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम मंगल पांडे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बहादुर कशिका।
3: ये कार्यक्रम भारत के बहादुर बच्चों पर निर्मित कार्यक्रमों की श्रृंखला से लिया गया है, जिसमें एक बहादुर बच्ची कशिका के जीवन और उसकी बहादुरी को विस्तार से बताया गया है और किस प्रकार इस बहादुर बच्ची ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर दूसरों को एक बड़ी विपत्ति से बचाया।
4: काशु बेटी, तुम और देवेंद्र नाश्ता कर लो।
5: माँ, आज तो छुट्टी है, आज भी जल्दी।
4: देखो बेटी, तुम्हारे पापा भी नाश्ता करके दुकान पर चले गए हैं। तुम लोग भी नाश्ता कर लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मुझे बहुत सारा काम करना है और खाना भी तो बनाना है।
5: ठीक है माँ, हम नाश्ता कर लेंगे, पर देवेंद्र को तो आ जाने दो।
4: अच्छा ठीक है, देवेंद्र आ जाए तो तुम दोनों नाश्ता कर लेना, मैं पूजा करने जा रही हूँ।
5: अच्छा माँ।
6: माँ, माँ।
5: लो देवेंद्र भी आ गया।
6: दीदी, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है।
4: चलो तुम दोनों नाश्ता कर लो और अब मैं पूजा के लिए जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, समझे?
5: ठीक है माँ।
6: नाश्ता नाश्ता यहीं ले आओ दीदी, ठीक है? मैं यहीं टीवी के पास बैठ कर खाऊंगा।
5: ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।
6: ये देखो दीदी, ये मारा।
5: देवेंद्र चुप रहो, मैं भी देख रही हूँ।
6: अरे ये मारा।
5: अच्छा, तुमने दरवाजा बंद किया था या नहीं?
6: बंद कर दिया होगा, ये तो देखो।
5: याद नहीं आ रहा तो जाओ देख कर आओ। मुझे लग रहा है कि दरवाजे पर कोई है। टीवी की आवाज कम करो।
6: कोई नहीं है दीदी, ये गिरा।
4: लगता है कोई आया है। काशु बेटी, देखो दरवाजे पर कौन है।
5: अच्छा माँ। कौन? आप लोग कौन? कहिए किससे मिलना है? अरे
7: हमें अंदर आने दो।
5: अरे क्यों?
8: ए लड़की, रास्ते से हट जा।
5: क्या काम है? ठहरो ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ।
8: लड़की हट। ये चाकू देख रही है ना?
9: ज्यादा होशियारी मत दिखा, वरना इस बंदूक की गोली तेरी खोपड़ी के पार कर दूंगा। हट रास्ते से।
5: क्या हुआ? देखो
4: जल्दी आओ। ये क्या है? अरे अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम लोगों को?
7: ए शोर मत मचा, जल्दी से चाबी निकालो। तुमने अभी तक चाबी नहीं निकाली।
5: मेरी माँ को छोड़ दो।
7: ये चाकू देख रही है ना?
5: छोड़ दो, मुझे मत मारो। कुछ मत करो।
4: चाबी चाबी मुझे नहीं मालूम,
7: जल्दी।
4: याद नहीं कहाँ रखी है, छोड़ दो।
9: बहानेबाजी करती है, जल्दी से चाबी दे दे वरना गोली मार दूंगा।
4: अरे अरे मेरे बाप को छोड़ो,
5: मेरी माँ को छोड़ो।
7: चुप चुप, आवाज निकाली तो यहीं ढेर कर दूंगा। चुप, आवाज नहीं।
9: सुनो, इसको उठा के दूसरे कमरे में ले चलते हैं। पकड़ो इसको, पकड़ो। अब इसकी आवाज बस यही सुन पाएगी। चाबी तो हम खुद ही ढूंढ लेंगे। चलो।
4: हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
5: देवेंद्र।
6: हाँ दीदी।
5: चोर तो उस कमरे में गए, चलो इस कमरे से फोन करते हैं।
6: हाँ।
5: हाँ। पापा को फोन करती हूँ। देवेंद्र तुम खिड़की से देखते रहो, ठीक है?
6: अच्छा।
5: हेलो।
7: हाँ बेटा बोलो।
5: पापा।
7: हाँ।
5: पापा।
7: हाँ बोलो बेटा।
5: जल्दी से घर आ जाओ पापा, चोर घुसा है।
7: कौन घुसा है?
5: माँ को बहुत मार रहे हैं।
7: अच्छा तुम घबराओ नहीं। नहीं नहीं, तुम ऐसा करो, पड़ोसियों को बुलाओ, तब तक मैं आता हूँ, ठीक है?
5: अब देवेंद्र, मैं बाहर से शोर मचाती हूँ,

0: तुम दरवाजा बंद करके यहीं बैठ जाओ।
1: अच्छा।
0: बचाओ बचाओ, घर में चोर घुस आए हैं, बचाओ।
2: और शोर सुनकर भाटिया साहब के पड़ोसी इकट्ठे हो गए और दोनों चोरों को पकड़ लिया। लोगों ने चोरों की खूब पिटाई की। इसी बीच काशु यानी कशिका के पापा भी आ गए और पुलिस भी आ गई।
3: कितना बहादुर बच्चा है, देखो तो सही इसको कशिका को। कमाल कर दिया इस बच्चे ने।
4: आज तो हमारी जान कशिका ने बचा ली। उनके पास तो बंदूक भी थी, चाकू भी था। मैं तो डरी गई थी।
5: ऐसे बच्चे होने चाहिए।
3: देखो ना, सबकी जान
4: बहादुर है मेरी बच्ची।
2: अगले दिन कशिका की बहादुरी के चर्चे सबकी जुबान पर थे। मोहल्ले, रिश्तेदारों और स्कूल में कशिका की ही चर्चा हो रही थी। और जानते हो बच्चों, इस बहादुरी के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से कशिका को 1,000 रुपए का इनाम और प्रमाण पत्र मिला।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहादुर कशिका, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।

नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं। आप सुनिए FM समाचार। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में वाराणसी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों एवं विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 12 वर्षों में विकास, सुशासन, सांस्कृतिक गौरव, आधारभूत संरचना, गरीब युवा, किसान एवं महिला कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है तथा विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। वहीं कौशाम्बी के मंझनपुर विकासखंड में भी केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित समेकित जन कल्याण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। लखनऊ पुलिस ने पहली मुहर्रम के शाही जुलूस को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत आज शहर के कई रास्तों पर यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। पहली मुहर्रम का शाही जुलूस आज शाम 7 बजे से बड़ा इमामबाड़ा से शुरू होकर रूमी गेट और छोटा इमामबाड़ा पर जाकर समाप्त होगा। इस दौरान वाहन डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग से पक्का पुल होते हुए बड़ा इमामबाड़े की तरफ नहीं जा सकेंगे। इन्हें डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज 8 नंबर चौराहा और IT चौराहा होकर भेजा जाएगा। कई अन्य मार्गों पर भी यातायात प्रतिबंधित रहेगा। आगरा में आज सुबह थाना संयक क्षेत्र के सिकंदरपुर के पास ग्वालियर मार्ग पर एक कार का टायर फटने से अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी ओर से आ रही कार से भिड़ गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में खेले जा रहे भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे एक दिवसीय मैच में आज भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। समाचार लिखे जाने तक भारत ने 33 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 266 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 104 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। वहीं विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन भी 103 रन बनाकर उनका बखूबी साथ दे रहे हैं। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल मात्र 4 रन बनाकर सलीम सफी का शिकार बने। इसके बाद रोहित शर्मा ने तेजी से 48 रन बनाए, जिन्हें राशिद खान ने बोल्ड किया। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM।

चार बने। इसके बाद रोहित शर्मा ने तेजी से 48 रन बनाए, जिन्हें राशिद खान ने बोल्ड किया। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो घंटे तरन्नुम के साथ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: सपने बड़े हैं,
3: स्टाइल अलग है,
2: तो ये शो है आपके लिए।
3: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
2: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
3: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
2: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
4: जी 4:04 हो चुके हैं, यानी 4:04 हो चुके हैं। तरन्नुम हाजिर है लेकर प्रोग्राम यूथ वेव, और आज का जो सेगमेंट है ना वो बहुत ही खास है, क्योंकि उसके बिना हमारी और आपकी जिंदगी की कल्पना कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो सुनते रहिए स्टेशन ऑफ द नेशन, बोले तो FM रेनबो।

और दोस्तों 4:10 हो चुके हैं और जैसा कि हमने कुछ देर पहले कहा था कि आज का जो सेगमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और कह सकते हैं कि उसके बिना आज की जो लाइफ है हमारी और आपकी उसको जीने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी के ज़रिए हमारी ज़िंदगी आसान बेहतर हुई है और बहुत ज़्यादा तेज़ बन रही है। यस, आज का सेगमेंट है साइंस और टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से कुछ ही सेकंड्स में बात कर पाते हैं, उसे देख पाते हैं, घर बैठे शॉपिंग, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, या फिर जो सबसे ज़रूरी काम है, मान लीजिए कोई घर में अचानक से बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, बहुत दूर हॉस्पिटल है, कोई घर में नहीं है, कैसे करें, कहाँ जाएँ, किसको बुलाएँ, कौन मरीज़ को उठाए, कैसे क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए बहुत ही ईजी है, डॉक्टर से आप वीडियो कॉल पर एटलीस्ट जो ज़रूरी चीज़ है सलाह वो तो आप ले सकते हैं। तो इन सब के पीछे क्या है, इन सब के पीछे है साइंस और टेक्नोलॉजी। बस यही तो कमाल है। और ये जो आप हमें सुन पा रहे हैं, और ये जो आप मुस्कुरा रहे हैं, और ये जो आप गाने सुन रहे हैं, और ये जो हम आपसे बातें कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये भी यही है साइंस और टेक्नोलॉजी। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ की वजह होती है, यानी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो बेवजह होती है। अगर वक्त है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। ये वक्त क्यों बनाया गया है, इसके पीछे क्या वजह है, इसके पीछे वजह ये है कि वक्त के साथ साथ इंसान अपनी सारी जो दैनिक कार्य हैं वो करते हैं, जो अपना बिजनेस है, जो अपनी जॉब है, जो घर का काम है, कोई भी जॉब हो। जॉब का मतलब ये नहीं है कि लोग जो ऑफिस जाते हैं वही जॉब करते हैं। जॉब का मतलब ये है कि घर के काम हैं, बच्चों की देखभाल है, या जो अभी हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे यंग लिसनर हैं, जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनके लिए बनाया गया कह सकते हैं कि टाइम की कद्र करो, क्योंकि ये जो टाइम है जब ये बहुत आगे निकल जाता है, ज़िंदगी भी साथ साथ आगे निकलती चली जाती है, और जब वक्त आगे निकल जाता है तो फिर कोई भी चीज़

मायने नहीं रखती। यानी जो ये एज है आपकी, इसमें आपको डट कर पढ़ाई करनी है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे आप अपनी पढ़ाई कर पाते हैं, कैसे आपका जो गोल है लाइफ का उसको आपको कैसे सेट करना है, ये सारी चीज़ें इस उम्र में ही तो होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो हम आज आप तक पहुंचाएंगे, और जिसने जिसने भी साइंस पढ़ी, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डूब कर शिद्दत से उसकी पढ़ाई की और उसके कामों को वो अपने ज़िंदगी में उतार रहे हैं, साइंस को और टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, तो वो आज बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर रहे हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती, लेकिन हाँ एक चीज़ है जो बेवजह होती है लेकिन उसके पीछे भी वजह होती है, और वो क्या है? वो है मोहब्बत।

0: गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
1: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
2: जोर का झटका है जोरों से लगा,
0: अंदाज है सबसे निराला,
1: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
0: ओ गॉड, स्टे ट्यून्ड टू चैनल सतरंगी रे।

अच्छा ये जो एज होती है ना, इसमें बड़ा ही अच्छा लगता है. मतलब कोई भी चीज़ आप देखिए, अगर बहुत ही आपके सामने सजा के संवार के पेश की जाए. अब चीज़ की अगर हम बात करें तो भाई ये जो एज होती है, इसमें जब कोई चीज़ ऐसी आपको बहुत अच्छी नज़र आती है, मान लीजिए कोई एक जोड़ा है, कपल है, वो जा रहा है, बहुत ही खुश है, बहुत ही अच्छे पैसे में है, बहुत ही अच्छी उसकी लाविश लाइफ है, और आप उसको देखते हैं और आप सोचते हैं कि बस ऐसी ही हमें भी ज़िंदगी गुजारनी है, एक अच्छा सा हम सफ़र मिल जाए, एक अच्छे से दोस्त मिल जाए या एक अच्छा सा जीवन साथी मिल जाए, तो फिर उसके साथ ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है. और आजकल का जो ये यंग जनरेशन है, इसमें ये चीज़ें हैं जो बहुत पहले पाई जाती थी, वो चीज़ें अब नज़र नहीं आती हैं. अब इसके पीछे आप कहेंगे कि भाई साइंस का इसमें क्या लेना देना है, तो आपको बता दें कि इसके पीछे भी साइंस ही है. कैसे है साइंस, हम आपको समझाते हैं. देखिए बहुत साल पहले क्या था कि लोग साथ में बैठ के टीवी देखते थे,

पहले क्या था, लोग साथ में बैठ के रेडियो सुनते थे, पूरी फैमिली के लोग इकट्ठा होते थे, एक दूसरे से हंसी मजाक होता था, लोग बताते थे कि ये गाना मेरी पसंद का है, ये बातें हमें अच्छी लग रही हैं। बुजुर्गों के लिए भी चीज़ें होती थी, आज भी होती हैं, बुजुर्ग आज भी उसी तरह से रेडियो से जुड़े रहते हैं, उनका टीवी से जुड़ाव रहता है। लेकिन ये जो यंग जनरेशन है, इनका जुड़ाव कहाँ है? इनका जुड़ाव जो है वो सोशल मीडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है, और सोशल मीडिया के ज़रिए जो बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत ही खास दोस्त होते हैं, उनको लोग अलग कैटेगरी में रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये जो मेरे दोस्त हैं उनको हमने सब कुछ बताया, ये इसने भी हमको सब कुछ बताया, इसके साथ पास मेरी कोई चीज़ ऐसी है जो राज है, जो मिस्ट्री है, जो हमने सिर्फ इसको बताई है। उसके बाद जब थोड़ी छोटी मोटी भी अगर लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, तो लोग कहते हैं अच्छा इसने हमसे पंगा लिया, इसकी जितनी भी चीज़ें ना सब हम रिवील कर देंगे, जितने भी फोटो हैं, जितनी भी मेल हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी जो भी चीज़ें हैं जिस जो उसने आपको हमराज समझ कर बताई थी, तो आप कहाँ उसको पोस्ट करेंगे? आप कहेंगे एक क्लिक कर देंगे और उसके बाद पूरी दुनिया में ये चीज़ें नजर आ जाएंगी। आप कहते हैं एक ट्रिक ऐसी है जिसको हम अपलोड कर देंगे तो तुरंत दुनिया तक पहुंच जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ही रैपिडली चल रही हैं, तो ये सब क्या है? ये सब साइंस है। अब साइंस की जो बात करें कि जैसे ब्याह करवा दो जी, अभी जो हमने आपको ट्रैक सुनवाया, ठीक है, हर चीज़ अपने टाइम पे होती है, मोहब्बत भी ठीक है कि उसका कोई टाइम नहीं होता, लेकिन जो करियर है वो आपको अपने टाइम पर ही बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ में जल्दबाजी अच्छी बात नहीं है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आज कि साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे हमारी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी है, इसका कैसे हम बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। और साइंस की जो लिमिट है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबों तक ही है, मतलब सिर्फ किताबें हैं आपने उसको पढ़ा। और अक्सर तो बच्चे ये भी कहते नज़र आते हैं कि भाई अगर फ़ोन बहुत देर तक चल रहा है, मम्मी पापा ने टोका, तो वो कहते हैं कि भाई इस पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस पर तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ रहे हैं, चैट जीपीटी देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो आप किसको धोखा दे रहे हैं? वो आप अपने मम्मी पापा को धोखा दे रहे हैं या आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं? तो फिलहाल ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको बीच में हमेशा अपने प्रोग्राम में शामिल करते रहते हैं, ताकि कहीं ना कहीं दिमाग की जो बत्ती बुझी हुई है ना, उसको जल जाना चाहिए, बहुत तेज़ी से जल जाना चाहिए और समझ में आ जाना चाहिए कि हमें अपना करियर कहाँ मेंटेन करना है। लेकिन यहाँ पर आज हम जो बात कर रहे हैं साइंस की और टेक्नोलॉजी की, तो ये जो लिमिट है ये सिर्फ किताबों तक ही नहीं है, ये तो हमारे आस पास हर जगह मौजूद है। सुबह अलार्म की आवाज़ से उठने से लेकर रात के मोबाइल चार्ज करने तक साइंस हमारी लाइफ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि जिस तरह साइंस अपना हर चीज़ टाइम पे करती है, जिस तरह टेक्नोलॉजी हर चीज़ देखिए जो चीज़ उसमें फीड कर दी जाती है वो वैसे ही काम करती है, तो क्यों ना हम और आप अपने ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी कर लें जो हमारे आगे चल के जो कहते हैं ना कि जो बुढ़ापा होता है, जो बुज़ुर्गी होती है, उसमें वो चीज़ें हमें बहुत ही फ़ायदा देने वाली होती हैं। और अक्सर ये भी कहा जाता है कि जो जवानी में बहुत ज़्यादा पसीना बहा लेता है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेता है, अथक प्रयास कर लेता है, तो उसको जो ज़यीफ़ी जब आती है, उसका जब बुढ़ापा आता है, तो उसको रोना नहीं पड़ता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी में से एक चीज़ ऐसी है जो हम आप तक वो भी पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, और वो है हमारे ट्रैक। 4:25 प्रोग्राम यूथ वेव तरन्नुम है आपके साथ, सुनते रहिए।

0: सुनते हैं रोजगार समाचार।
1: प्रशिक्षित स्नातक विज्ञान, विशेष शिक्षक प्राथमिक और विद्युत ओवर सीयर, इन रिक्तियों के लिए आवश्यक नियमों, शर्तों और योग्यताओं आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट dssbonline.nic.in। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 15 जुलाई 2026। सैनिक स्कूल कलिकिरी, अन्नमया जिला, आंध्र प्रदेश राज्य, इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है आर्ट मास्टर एक रिक्ति, पीटीआई कम मैट्रन महिला एक रिक्ति। अनिवार्य एवं वांछनीय योग्यताओं, पात्रता और अन्य विवरणों सहित विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए सैनिक स्कूल कलिकिरी की वेबसाइट sskal.ac.in। केंद्रीय सतर्कता आयोग आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन तकनीकी परीक्षक, सहायक तकनीकी परीक्षक और सहायक तकनीकी परीक्षक बागवानी। पात्रता संबंधी

0: शर्तों, योग्यता इत्यादि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट cvc.gov.in। महानिदेशक मौसम विज्ञान का कार्यालय आमंत्रित कर रहा है प्रशासनिक परामर्शदाता के 2 पदों और वैज्ञानिक परामर्शदाता के 10 पदों के लिए आवेदन। प्रशासनिक परामर्शदाता के लिए आयु 60 से 63 वर्ष के बीच होनी चाहिए, वैज्ञानिक परामर्शदाता के लिए भी आयु 60 से 63 वर्ष के बीच होनी चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट internal.imd.gov.in। जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। विशेषज्ञ ग्रेड 2 यानम परिसर के लिए, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर पुदुचेरी परिसर के लिए, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर करैक्कल परिसर के लिए, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर यानम परिसर के लिए और बाल मनोवैज्ञानिक पुदुचेरी परिसर के लिए। यानम परिसर के लिए कुल पद 8 हैं, पुदुचेरी के लिए 1, करैक्कल के लिए 5, बाल मनोवैज्ञानिक पुदुचेरी के लिए 1 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.jipmer.edu.in। जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का ईमेल का पता भी आप नोट कर सकते हैं group.anf@jipmer.ac.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

और देखिए कुछ साल पहले तक मतलब जब सोच लेते हैं कि क्या ऐसा होता था और अगर आज की जो जनरेशन है उससे कहा जाए कि भाई जो लेटर लिखे जाते थे फिर पूछा जाता था कि भाई आप लोग कैसे हैं फिर हम लोग यहाँ से जवाब देते थे तो अक्सर बच्चे पूछते हैं अच्छा ऐसा भी होता था क्या या जो खत होते थे ये खत क्या होते थे। अक्सर बच्चों से जब आप पूछें या बच्चों को आप बताएं तो बच्चे इस बात से अनभिज्ञ हैं उनको पता नहीं है कि क्या होता था और कैसे होता था। और कई ज़माने पहले तक लोग चिट्ठियों का इंतज़ार हफ्तों महीनों तक करते थे और आज देखिए पलक झपकते ही एक मैसेज लम्हे भर में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता है और ये चेंज टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। भारत ने भी टेक्नोलॉजी और साइंस की फील्ड में काफ़ी तरक्की की है। हमारे वैज्ञानिकों ने देश को नए आयाम दिए हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान हो या डिजिटल क्रांति भारत दुनिया के सामने एक मजबूत पहचान बनकर उभरा है। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। जो टेक्नोलॉजी है उसका अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, लेकिन अगर उसी टेक्नोलॉजी का आप बहुत ही रॉन्ग वे में इस्तेमाल करेंगे, गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप देखिए कि डीप फेक आजकल कितना ज्यादा चल रहा है, लोग तरह तरह की चीजों को ऐसी मजाक में कर लेते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल कर ली तो आपको लगता है चलो ऐसी मजाक में कर लेते हैं। ठीक है, आपको ये सारी जानकारी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए कि किशोर कुमार की आवाज़ में आपको गाने, आज के गाने उनकी आवाज़ में मिल जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये टेक्नोलॉजी

है, इसका इस्तेमाल अच्छे से हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर आप किसी के लिए बुरा करने के लिए सोच रहे हैं, या फिर आपने किसी के लिए सिर्फ ऐसे ही कि चलो ठीक है ये चीज़ वायरल हो जाएगी, ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, दूसरा ट्रोल हो जाएगा, ये सारी चीज़ों का अगर आप सोच भी रहे हैं, तब यकीन मानिए, कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर आप किसी और के साथ करते हैं, और ये भी साइंस कहती है, जी हाँ ये भी साइंस ही कहती है कि अगर आप किसी के बारे में जो सोच होती है ना, सोच ही तो हमें आगे तक लेकर जाती है, सोच ही तो है जो हमें ज़िंदगी को जीना सिखाती है, सोच ही तो है जो हमें आगे सक्सेस की सीढ़ियों को चढ़ना सिखाती है। ये सब क्या है, ये एक अच्छी सोच है, और जो अच्छी सोच रखते हैं वही साइंटिस्ट बनते हैं, वही वैज्ञानिक बनते हैं, वही अंतरिक्ष पे जाते हैं, वही आप देखिए कोई ना कोई ऐसा इन्वेंट करते हैं, आविष्कार करते हैं जिनका दुनिया में नाम होता है, जो भारत का नाम रोशन करते हैं। तो क्यों ना आप भी उसी कैटेगरी में शामिल हो जाएं, क्यों ना आप भी उसी लाइन में एक लाइन एक नंबर जो है वो आपका लग जाए, तो कितना अच्छा हो, लाइफ भी आपकी सेट हो जाए, और आपका जो एक गोल है ना कि हाँ यस मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है लाइफ में, ये सारी जो चीज़ें हैं वो भी अच्छे से हो जाएं। फिलहाल 4:38 हो चुके हैं और प्रोग्राम चल रहा है यूथ वेव, तरन्नुम है आपके साथ, और मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक, और ट्रैक है बहुत ही सूदिंग सा नंबर, आज थोड़ा सा मूड है कि आपको थोड़ा सा पेपी नंबर और सूदिंग नंबर पहुंचाएं, जिनमें से एक ट्रैक आ गया है आप तक।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
4: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
5: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूं और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल FM रेनबो।
6: I am संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की।
7: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ FM रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love FM रेनबो।
8: ये तो सुन रहे हैं FM रेनबो और आप

जी हाँ दोस्तों, 4:51 हो रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की। और देखिए कि हमारे भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने कई ऐसे काम किए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन ने यह साबित कर दिया कि भारत कम लागत में भी बड़े ख्वाबों को पूरा कर सकता है। और देखिए, टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो आज हर इंसान जानता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई क्रांति लेकर आया है। AI की मदद से कंप्यूटर्स और मशीन सीख सकती है, सोच सकती है और कई काम इंसानों

की तरह हमारी और आपकी तरह कर सकती है। वॉइस असिस्टेंट्स, ऑनलाइन रिकमेंडेशन और स्मार्ट एप्लीकेशन इसका ही एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और अगर टेक्नोलॉजी की और ज़्यादा बात की जाए, मतलब कई घंटों बात की जाए, तो भी कम पड़ेंगे घंटे। टेक्नोलॉजी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव लाए हैं। ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरीज और एजुकेशनल एप्स ने पढ़ाई को हर व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद की है। अब गांव हो या फिर शहर हो, ज्ञान सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। अगर स्वास्थ्य की फील्ड में हम बात करें तो भी साइंस ने कई चमत्कार किए हैं। आज की गंभीर बीमारियों का इलाज बिल्कुल पॉसिबल है, संभव है। एडवांस्ड मशीन्स और डिजिटल रिपोर्ट्स की मदद से डॉक्टर्स बेहतर डायग्नोसिस कर पा रहे हैं। टेलीमेडिसिन ने दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बना दिया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी ज़िंदगी में आई हैं, और इसी के माध्यम से नए नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, नई नई चीज़ें हैं जो हम और आप कर पा रहे हैं। देश की प्रगति हो रही है क्योंकि हम और आप देश में योगदान कर रहे हैं। तो दोस्तों, साइंस क्या करती है? साइंस हमें सवाल पूछना सिखाती है। टेक्नोलॉजी उन सवालों के जवाब ढूंढने का रास्ता दिखाती है। लेकिन दोनों मिलकर एक ऐसा भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जहां जीवन और बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है, सुरक्षित है और समृद्ध होगा। तो बस यही ज़रूरत है कि हमें सही इस्तेमाल करना है, सही वक्त पे और सही टाइम पे हमें चीज़ों को चुनना होगा। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफ को सीरियस भी लें और लाइफ को बहुत ही हंसी मजाक वाला भी लें, क्योंकि लाइफ के हर चीज़ के जो फेज़ होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। तो अभी आपकी उम्र है, अभी आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना, तो बिल्कुल शिद्दत के साथ जुड़ जाइए। और एक बात और, सुनते रहिए रेनबो, जिस पे एक से बढ़कर एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो हैं वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की द्वारा कही हुई बात आपके दिल तक, दिमाग तक पहुँच जाती है, और वो जब जहन में एकदम स्टोर हो जाती है ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा आसान हो जाती है। फिलहाल 4:54 हो चुके हैं, तरन्नुम को दीजिए इजाज़त प्रोग्राम यूथ वेव को वाइंड अप करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, जिसका नाम है टॉप ऑफ द टॉप्स। सुनते रहिए रेनबो।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: नमस्कार, शाम के 5 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। मायगांव के एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने किया। इस मौके पर लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल भी मौजूद रहीं। श्री खन्ना ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और केंद्र व प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं तथा विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त की। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में देश विकास के नए आयाम हासिल कर रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। लखनऊ स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबद्ध इंजीनियरिंग कॉलेजों के बीटेक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चल रही पंजीकरण प्रक्रिया को 22 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 5 और 2 विशेष चरणों में होने वाली काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत पहले चरण की च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग 2 जुलाई तक होगी, जबकि सीट अलॉटमेंट 4 जुलाई को किया जाएगा। वहीं सीट कन्फर्मेशन एवं फ्रीज एवं सीट फ्लोट 4 जुलाई से 7 जुलाई तक चलेगा। लखनऊ पुलिस ने पहली मुहर्रम के शाही जुलूस को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत आज शहर के कई रास्तों पर यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। पहली मुहर्रम का शाही जुलूस आज शाम 7 बजे से बड़ा इमामबाड़ा से शुरू होकर रूमी गेट और छोटा इमामबाड़ा पर जाकर समाप्त होगा। इस दौरान कई मार्गों पर भी यातायात प्रतिबंधित रहेगा। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं।

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन.
1: हैंगओवर
0: Only 100.7 FM Rainbow.

0: ओनली 100.7 FM रेनबो.
1: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे.
2: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल FM रेनबो.
3: आई एम संध्या त्रिगुनी. बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की.
4: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ. पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ FM रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है. That's why I love FM रेनबो.
5: ये तो सुन रहे हैं FM रेनबो और आप
6: जी. 5:04 हो गए हैं. तरन्नुम है हाजिर लेकर प्रोग्राम टॉप ऑफ द टॉप्स. और टॉप 10 जो गाने हैं वो हम हमेशा इस वक्त आप तक पहुंचाते हैं हम. और एक दौर जो आता था ना, तब वो जो टॉप 10 गाने होते थे वो पूरे गाने जो हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं. और आज इस प्रोग्राम में हम आपको 2020 के टॉप 10 सॉन्ग्स पूरे के पूरे पहुंचाएंगे. और वो गाने किस फिल्म के थे, किस पे फिल्माए गए थे, कौन से उसमें म्यूजिक डायरेक्टर थे, कौन उसके लिरिसिस्ट थे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस गानों से रिलेटेड हम बात करेंगे. और उस गानों को भी हम पहुंचाने वाले हैं आप तक, जिसमें से आ रहा है टॉप ऑफ द टॉप्स में पोजीशन नंबर 1 पे ये ट्रैक.

जो है वो A.R. रहमान ने दिया था, कंपोज किया था उन्होंने, और साथ ही साथ इसमें गाया भी था गाना जी अरिजीत के साथ. और ये गाना जो था वो सिर्फ एक सॉन्ग नहीं था बल्कि इमोशंस का एक सफ़र था. इसने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया था. और अब जो ट्रैक आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं वो ट्रैक कौन सा है? 2020 के पॉपुलर सॉन्ग्स की बात अगर होगी और इस गाने का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता. ये जब गाना, जब आप 2020 के टॉप 10 गानों की बात करेंगे तो ये जो गाना है ना जो अभी हम प्ले करने वाले हैं, इसका नाम आना लाजमी है. बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ है इसमें जुबिन नौटियाल की. सोलफुल सिंगिंग ने इस गाने को हर दिल तक पहुंचाया. इसके लिरिक्स और मेलोडी दोनों ही कमाल के थे, तो गाना भी कमाल का था, तो फिर वक्त भी कमाल का है. पहुँचा दें ट्रैक आप तक.

ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर

0: वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
5: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
6: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
7: गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
8: हो रे खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में।
9: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत।
10: जोर का झटका हजारों से लगा लगा,
7: अंदाज है सबसे निराला,
9: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
7: ओ गॉड, स्टे ट्यून्ड टू चैनल सतरंगी रे।

0: Να δουνιά και λιλίχτε, να μέρει λιλίχτε. Να δουνιά και λιλίχτε, να μέρει λιλίχτε. Χάλιψεν τα χωτέ, το τέρι λιλίχτε. Χάλιψεν τα χωτέ, το τέρι λιλίχτε.
1: अच्छा कह सकते हैं कि ये जो एक इरा था यानी ये जो साल था 2020 का इसमें बहुत सारे गाने जो हिंदी फिल्मों के थे वो उतने ज़्यादा हिट नहीं हुए जितने कि जो नॉन फिल्मी ट्रैक थे जैसे कि अभी आपने ये आला सुना बी प्राक का ज़माना आया वो जो दौर था वो इतना लोगों के सर पे चढ़ के बोला कि लोग बस उन गानों के दीवाने हो गए जैसे कि अगर हम गुरु रंधावा के इस ट्रैक की बात करें तो इस गाने ने भी भाई कोई भी ऐसी महफिल नहीं थी कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जहाँ पे अपना जलवा ना बिखेरा हो और इसकी जो बीट्स थी इसका जो नोरा फतेही का डांस था साथ में गुरु रंधावा की जो एक एक्टिंग है जो उनके डांस स्टेप थे बहुत ही सिंपल से थे लेकिन लोगों ने इतने ज़्यादा पसंद किए कि इसको ला के रख दिया टॉप नंबर 4 पे तो सुन लें

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: शिद्दत, मोहब्बत और खलूस से भरपूर एक शाम है। शाम अवध इस शाम का उन्वान है। शाम अवध हर शाम 6 से 7 आपके अपने FM रेनबो पर।
1: और आपको वक्त बता दें, 5:25 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है टॉप 10 तरनों में आपके साथ, और नेक्स्ट टॉप 10 का ट्रैक नंबर 4 आप तक।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: क्या बात है, आजकल टाइम से घर?
6: हाँ हाँ, बस एक फटाफट से अब मसाले वाली चाय जल्दी से पिला दो।
0: अरे ठीक है बाबा, लेकिन इतनी जल्दी में क्यों है?
6: अरे 7 बजे FM रेनबो पर कॉल जो करनी है।
7: जी हाँ, FM रेनबो लेकर आया है हर रोज शाम 7 बजे से हेलो FM कार्यक्रम, सिर्फ आपके लिए। तो कर डालिए अपने दिल की बात अपने पसंदीदा गाने के साथ।

अच्छा देखिए 5:34 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है टॉप 10 तरनों में आपके साथ, और 2020 के जो टॉप 10 सॉन्ग्स थे वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन 2020 मतलब अब देखिए आजकल के जो सॉन्ग्स होते हैं और आजकल का जो दौर है वो बहुत जल्दी जल्दी बीत जाता है। अब देखिए कि कब 2025 आया था और कब 2026 की आज 17 जून हो गई, मतलब मिड हो गया, और इसी तरह ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ती चली जा रही है। लेकिन उस दौर के जो गाने होते थे ना, वो हम आपको बता रहे हैं कि उस दौर के जो गाने होते थे वो इतने छोटे छोटे होते थे कि मतलब 4 मिनट, 3.5 मिनट, 4.5 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो हमने ये सोचा कि क्या उस दौर में लोग गाने कम कम लिखते थे, या जो म्यूजिशियन थे उनको लगता था कि भाई कम कम म्यूजिक जाएगी, कम कम लिमिट के गाने बजाओ, कुछ इस तरह का होता था क्या? देखिए बुर्ज खलीफा जो अभी आपने ट्रैक एंजॉय किया, ये मतलब इतना बढ़िया डांस ट्रैक था कि इसमें जो जब भी हमने आपसे बताया कि पार्टी होती थी या कुछ होती थी तो ये गाना ज़रूर प्ले होता था, इतना एनर्जेटिक वोकल ने इस गाने को पार्टी एंथम बना दिया था। निकिता गांधी और शशि ने तो क्या बढ़िया गाना गाया था। लेकिन अब जो ट्रैक आप तक आने वाला है वो भी जो डांस लवर्स हैं ना उनके लिए ये गाना किसी ट्रीट से कम नहीं होता है। पंजाबी बीट्स और पावरफुल कोरियोग्राफी के साथ ये ट्रैक हर डीजे प्लेलिस्ट का एक हिस्सा बन गया था, नहीं बन गया है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि लोग डांस फ्लोर पे जाएं और इस गाने की फरमाइश ना करें या इस गाने पर उनके जो कदम हैं, उनके जो पैर हैं वो ना थिरकें। यस, ट्रैक कौन सा? ये वाला 5:35 प्रोग्राम टॉप 10।

0: क्या है बताए, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल दस्तरखान बिछाया दावते इश्क है।
3: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।
4: हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का।
3: ओनली 100.7 FM रेनबो।

वैसे अगर 2020 की बात करें तो उसमें कुछ गाने ऐसे थे जो बिल्कुल पेपी नंबर्स थे, कुछ गाने ऐसे थे जो बहुत ही सूदिंग नंबर थे, और काफ़ी ऐसे बोल थे उसमें कि जो हमें और आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अब जो नेक्स्ट ट्रैक हम आप तक पहुंचाने वाले हैं उसके जो बोल हैं, उसका एक एक जो बोल है ना उस पर जब आप ध्यान देते हैं और बहुत ही गहरी बहुत ही तन्हाई में कहीं बैठ कर लाइट को ऑफ करके अब बहुत ही ध्यान से सुनते हैं ना, तो समझ में आता है कि भाई ये जो गाना लिखा गया होगा क्या सोचकर लिखा गया होगा। लेकिन कहते हैं ना कि लिखने से ज़्यादा जब गायक उस गाने को गाता है तो उस गाने में जान गायक ही डालता है, उसकी जो आवाज़ का अंदाज़ होता है वो उस गाने को हिट बना देता है। अब इसमें अरिजीत की जो आवाज़ है और उनका जो स्टाइल है, उनका जो एक गहरा एक कहते ना कि एक कनेक्शन होता है हर गाने से, वो इस गाने में साफ सुनाई दे रहा है। नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन साफ सुनाई दे रहा है, और एक एक वर्ड इसका जो है जो उन्होंने अदा किया है अपनी ज़ुबान से, जो उनका वोकल है ना, मतलब इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि बस जैसे ही इस गाने को हम प्ले करेंगे आप कहेंगे यस ये गाना था उस दौर में टॉप 10 की हिट लिस्ट में। तो ट्रैक कौन सा है सुना दे।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

और 5:54 हो चुके हैं. टॉप 20 जो 2020 में टॉप 10 गाने थे वो हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की. उम्मीद है आपको ये जो शो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा. और अब सॉन्ग नंबर 10 के साथ इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त. सुनते रहिए रेनबो द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ. नेक्स्ट प्रोग्राम है शाम अवध तरन्नुम आपके साथ.

शिद्दत मोहब्बत और खलूस से भरपूर एक शाम है। शाम अवध इस शाम का उन्वान है। शाम अवध हर शाम 6 से 7 आपके अपने FM रेनबो पर।

नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को नई दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने कहा है कि यह वितरण केंद्र की प्रमुख रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार को औपचारिक बनाना और सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। पीएमओ ने कहा है कि इस योजना से देशभर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिली है। मऊ, हापुड़, अमरोहा और गौतम बुद्ध में केंद्र सरकार के 12 वर्ष तथा प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जन कल्याणकारी एवं विकास परक योजनाओं तथा उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन जन प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश में विकास की नई दिशा स्थापित हुई है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। बदायूं जिले के थाना उझानी क्षेत्र में ग्राम बुटला के पास आज एक ट्रैक्टर और ई रिक्शा में हुई टक्कर में 6 महिलाओं की मृत्यु हो गई, जबकि 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदायूं में हुई दुर्घटना में जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा शोक जताया है। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में आज खेले जा रहे भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरे एक दिवसीय मैच में शुभमन गिल और ईशान के किशन के शतकों की बदौलत भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का लक्ष्य रखा है। भारतीय टीम 49.5 ओवर में 402 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। वहीं 19 जून से 21 जून तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो, घंटे तरन्नुम के साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय

0: शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, बीसीए, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में पीसीओडी और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
2: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, पीसीओडी या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
3: छह बजकर चार मिनट हो गए हैं और शामे अवध लेकर हाजिर है तरन्नुम, और इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से शेर के साथ।

0: 20 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
2: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड बग्गा।
3: छह बजकर चार मिनट हो गए हैं और शामिया अवध लेकर हाजिर है तरन्नुम, और इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत से शेर के साथ। हवा में इत्र की महक और अदब की जुबान, हवा में इत्र की महक और अदब की जुबान, लखनऊ के लोगों में बसती है पूरे अवध की जान। तो आइए सुनते हैं इसी खूबसूरत शेर पर ये खूबसूरत सा नगमा।

और दोस्तों अवध की जमीन को आप क्या कहेंगे, इसके आसमान को आप क्या कहेंगे, जितने भी कसीदे पढ़ लिए जाएं, जितनी भी कविताएं लिख ली जाएं, जितने भी शेर इसके ऊपर लिख लिए जाएं, उतने ही कम नजर आते हैं। अवध यानी एक ऐसी जगह जहां पर आपको हर मजहब की हर संस्कृति नजर आती है। अभी देखिए, कल बड़ा मंगल था, भंडारे थे, लोग खूब भंडारों को खा रहे थे, एक दूसरे को शरबत पिला रहे थे, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। और आज बुधवार है, आज मुहर्रम की पहली तारीख है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथियों की याद में शाही जुलूस निकाला जाएगा। ऐसा ही है अवध। अब देखिए, चौक की गलियां हो, छोटे इमामबाड़े से लेके बड़े इमामबाड़े तक, लोग दिलो जान से जुटे हैं। कोई खाना खिला रहा है, कोई शरबत पिला रहा है, लोग एक दूसरे को बहुत ही सहयोग कर रहे हैं। ये वही अवध है जहाँ पे आपको बड़ा मंगल भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपको मुहर्रम भी नजर आता है। और इसलिए ये बात हमने आपसे की क्योंकि आज मुहर्रम पर जब जुलूस निकलेगा, आपसे कुछ ही देर में 7 बजे मुहर्रम में जो शाही जरे का जुलूस निकलने वाला है, तो बहुत सारे ऐसे डायवर्जन हैं जो पुराने लखनऊ में होंगे। ये बहुत ज़रूरी बात है, अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है तभी आप उधर जाइए, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा काम नहीं है तो फिर आप उधर जाने से बचिए। अब डायवर्जन कहाँ कहाँ होंगे ये भी हम आपको बता दें। सीतापुर रोड की ओर से आने वाले जितने भी वाहन हैं वो डालीगंज रेलवे क्रॉसिंग से पक्का पुल होते हुए बड़ा इमामबाड़ा की तरफ नहीं जा सकेंगे। इन्हें डालीगंज ओवरब्रिज से 84 नंबर 8 IT चौराहे से होकर ही जाना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हरदोई की तरफ से आने वाले सभी प्रकार के वाहन कोनेश्वर चौराहे से घंटाघर नहीं जा सकेंगे, इन्हें चौक मेडिकल क्रॉस होकर जाना पड़ेगा। अब कैसरबाग से सीतापुर की ओर जाने वाले वाहन पक्का पुल की ओर नहीं जा सकेंगे, इन्हें डालीगंज पुल से इक्का तांगा स्टैंड, नदवा बंधा से बाएं IT चौराहा, कपूरथला चौराहा और मड़ियाम होकर ही जाना होगा। हुसैनाबाद की ओर से आने वाले जितने भी वाहन हैं वो हुसैनाबाद तिराहे से छोटा इमामबाड़ा होकर घंटा घर की तरफ नहीं जा सकेंगे। लेकिन एक चीज़ है जो जा सकती है और आ सकती है, वो है आपसी भाईचारा, आपसी मेलजोल, जो हमारे अवध की आन बान और शान है। और ये जो ट्रैक हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इस ट्रैक में सारी चीज़ें समाहित हैं। जी हाँ, इसमें राम भी हैं, इसमें रहीम भी हैं, इसमें अली भी हैं और इसमें राधा रानी भी हैं। तो आइए सुनते हैं ये ट्रैक।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: और दोस्तों आपको बता दें 6:17 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है शाम अवध, और बहुत ही खास जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले हम आपको दे दें, उसके बाद फिर इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि 6:30 से यानी 6:30 से आप सुनेंगे ICC वुमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत हेडिंग्ले लीड्स में भारत और नीदरलैंड के बीच खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। लेकिन जो प्रोग्राम है हमारा वो आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप ऐसे ही सुन सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो ये वक्त है इसमें एक और भी बहुत ख़ास इन्फॉर्मेशन है जो हम आप तक पहुंचा दें, और ये जो ख़ास इन्फॉर्मेशन है वो है हमारी और आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई। देखिए 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है, ठीक, और योगा को प्रमोट करने के लिए देश भर में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि हर इंसान निरोग रहे, खुश रहे। ऐसे में LU के योग डिपार्टमेंट ने खास वर्कशॉप का आयोजन किया था। इसमें खास तौर पर जो त्रातक है वो क्रिया जो है उस पर जोर दिया गया था। अब ये त्रातक क्रिया क्या है? ये एक एंशियंट योगिक क्लींजिंग टेक्निक है और मेडिटेशन प्रैक्टिस है। ये कैसे आपकी आईसाइट को इम्प्रूव करता है, आपको जो मतलब अगर आपकी निगाह कमज़ोर हो रही है तो इतना इफ़ेक्टिव है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर ये क्रिया

आप करना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो कहते हैं ना लोग कि एकाग्रता नहीं हो पाती किसी भी काम में, एक एक तरफ से दिल नहीं लग पाता है, तो आपकी जो मन की चंचल वृत्तियां हैं उनको कंट्रोल करता है ये योगा, एकाग्रता बढ़ाता है। और साथ ही साथ जब आप ठहर जाते हैं, हमारा और आपका जो जहन है वो जब रिलैक्स हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे थॉट हैं जो हमारी और आपकी लाइफ को कामयाब बनाने की ओर अग्रसर करते हैं, कामयाब बनाने की तरफ लेकर जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप योग को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आपके पैसे बच सकते हैं, क्योंकि जब आप योग करेंगे तो फिर आप निरोग रहेंगे और फिर डॉक्टर भी आपसे दूर रहेंगे। लेकिन ये कि जो मेल मुलाकातों का सिलसिला है ये ऐसे ही जारी रखिए। 6:19 नेक्स्ट ट्रैक आप तक।

अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें दिल करता है कि भाई बहुत सारे लोग हों खूब मौज मस्ती करें, ऐसा दिल करता है ना। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें जब आप शामिल होते हैं और जब उसकी पिक्चर आती है, न्यूज़पेपर पे आती है या सोशल मीडिया पे डाली जाती है और बहुत ज़्यादा मॉब होती है, भीड़ होती है, क्राउड होती है और उसमें आप नहीं भी दिखाई दे रहे होते ना, तब भी आप कहते हैं अरे ये जो पीछे खड़ा ना, इसके पीछे जो सर दिख रहा है, उसके जो बाल दिख रहे हैं, उनमें से वो जो बाल है ना वो मेरे हैं। और अक्सर ऐसा होता है क्योंकि वो जो जोश होता है ना, वो जो एक अंदाज होता है वो बिल्कुल अलग होता है। उसमें कहीं ना कहीं अगर इंसान की हाथ न सही, एक उंगली भी नजर आ जाती है तो लोग कहते हैं भाई इसमें हम शामिल हुए थे। तो ऐसे ही कुछ होने वाला है, कहाँ होने वाला है ये भी हम आपको बता दें। और ये जो चीज़ होने वाली है ये होने वाली है चौक में, यस, चौक की गलियों से गुजरने वाली है विशेष यानी स्पेशल फूड हेरिटेज वॉक। और इसका जो आयोजन है ना वो कल होने वाला है। अब इसमें क्या क्या होना है, इसमें ये होना है कि भाई इसमें अगर आपको जाना है यानी स्पेशल फूड हेरिटेज वॉक में अगर आप चाह रहे हैं इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए, चौक की गलियों में जाने के लिए, तो इसकी शुरुआत होने वाली है राजा की ठंडाई से और समाप्ति होगी गोल दरवाजे पे। और इस पदयात्रा में शुल्क लगने वाला है, इसका शुल्क है 300 रुपये पर पर्सन, यानी अगर आप जाएंगे तो आपके 300

जाओगे और आपके दोस्त वोस्त जाएंगे, दोस्त अहबाब जो हैं या आपके फैमिली के जितने भी लोग जाना चाह रहे हैं इस हेरिटेज वॉक में शामिल होना चाह रहे हैं, तो उसमें भी 300 रुपये शुल्क लगेगा। इंटरेस्टेड अगर पार्टिसिपेंट चाहते हैं इसमें आप कैसे जाएं, तो इसमें आपको हम बता दें कि UPSTDC के लैंडलाइन नंबर है 9149099890। इस पे आप कॉल कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और चले जाइए। लेकिन आपको साथ में ये भी बता दें भाई कि अपने देश का गौरव बढ़ गया है और देश में जो शहर है ना लखनऊ, उसका गौरव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है? अभी हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी सूची में शामिल हो गया है अपने लखनऊ का नाम, अपने शहर का नाम। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर हमारे लखनऊ का जो नाम है वो ऐसे ही आगे आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। और आपको अभी कुछ ही देर पहले हमने बताया था कि कुछ ही देर में आंखों देखा हाल जो है मैच का, यानी जो भारत और नीदरलैंड के बीच होने वाला है T20 क्रिकेट मैच, उसका आंखों देखा हाल हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले पहुंचा रहे हैं ट्रैक, कौन वाला, ये वाला।

0: क्या बात है, आजकल टाइम से घर।
1: हाँ हाँ, बस एक फटाफट से अब मसाले वाली चाय जल्दी से पिला दो।
0: अरे ठीक है बाबा, लेकिन इतनी जल्दी में क्यों है?
1: अरे 7 बजे FM रेनबो पर कॉल जो करनी है।
2: जी हाँ, FM रेनबो लेकर आया है हर रोज शाम 7 बजे से हेलो FM कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए। तो कर डालिए अपने दिल की बात अपने पसंदीदा गाने के साथ।

शिद्दत, मोहब्बत और खलूस से भरपूर एक शाम है। शाम अवध इस शाम का उन्वान है। शाम अवध हर शाम 6 से 7 आपके अपने FM रेनबो पर।

0: क्या बात है, आजकल टाइम से घर?
1: हाँ हाँ, बस एक फटाफट से अब मसाले वाली चाय जल्दी से पिला दो।
0: अरे ठीक है बाबा, लेकिन इतनी जल्दी में क्यों है?
1: अरे 7 बजे FM रेनबो पर कॉल जो करनी है।
2: जी हाँ, FM रेनबो लेकर आया है हर रोज शाम 7 बजे से हेलो FM कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए। तो कर डालिए अपने दिल की बात अपने पसंदीदा गाने के साथ।

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल एफएम रेनबो।
1: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love FM Rainbow.
3: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप

0: क्या बात है, आजकल टाइम से घर।
1: हाँ हाँ, बस एक फटाफट से अब मसाले वाली चाय जल्दी से पिला दो।
0: अरे ठीक है बाबा, लेकिन इतनी जल्दी में क्यों है?
1: अरे 7 बजे FM रेनबो पर कॉल जो करनी है।
2: जी हाँ, FM रेनबो लेकर आया है हर रोज शाम 7 बजे से हेलो FM कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए। तो कर डालिए अपने दिल की बात अपने पसंदीदा गाने के साथ।

नमस्कार, शाम के बजे हैं 7। अब सुनिए यूपी की दिन भर की टॉप 10 न्यूज़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित ग्रेड ए के 937 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर नगर में विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में जन भागीदारी की अहम भूमिका है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने देवरिया में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वाराणसी में 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के थीम पर आधारित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली कार्गो उड़ाने आज से शुरू। चेन्नई से कार्गो लेकर विमान रनवे पर उतरा तो उसका वाटर कैनन से स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त 465 विद्यालयों की मान्यता निरस्त। इनमें प्रयागराज के 25 विद्यालय भी शामिल। परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इन विद्यालयों में पिछले 2 वर्षों में कोई भी छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ। बदायूं जिले के थाना उजानी क्षेत्र में ग्राम बुटला के पास आज एक ट्रैक्टर और ई रिक्शा में हुई टक्कर में 6 लोगों की मृत्यु, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। लखनऊ में पहली मुहर्रम का शाही जुलूस आज शाम निकाला जा रहा है, जो बड़ा इमामबाड़ा से शुरू होकर उमी गेट और छोटा इमामबाड़ा पर जाकर समाप्त होगा। इस दौरान कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जा रहा है। शुभमन गिल और ईशान किशन के शतकों की बदौलत भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का लक्ष्य रखा। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की। वहीं 19 जून से 21 जून तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई। इसी के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात्रि 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: मोहब्बत में बिखर जाने का गम,
1: दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने,
0: आपके ख्याल और आपके ख्वाहिशें
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।
0: इन सब बातों का पिटारा है ये शो रजनीगंधा। हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। नीट पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मिलेगी 50% की छूट। मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद उम्मीदवारों के लिए ठहरने की अस्थायी व्यवस्था करने के भी दिए निर्देश। बदायूं में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया दुख। और लखनऊ में खेला जा रहा है भारत अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय मैच। टीम इंडिया ने जीत के लिए खड़ा किया 403 रनों का लक्ष्य। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित ग्रेड ए के 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आप सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन को बढ़ाने के सारथी हैं। श्री योगी ने कहा कि ड्यूटी के प्रति सजगता और हर कार्य में गंभीरता होनी चाहिए। ड्यूटी के दौरान रील बनाना अनुशासनहीनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण में अर्थव्यवस्था को गति मिली है। 9 वर्ष में यूपी की अर्थव्यवस्था तथा प्रति व्यक्ति आय 3 गुना से अधिक बढ़ी है।
1: हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया भर्ती आयोगों में, बोर्डों में, उसके परिणाम आए हैं। हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है, लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े कारखाने थे, कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य। एमएसएमई लगभग बंद हो गया था। आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है।
0: प्रदेश में नीट पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा में लगभग 3.5 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि परीक्षा के लिए दूसरे जिलों में जाने वाले और वहां ठहरने के लिए स्थान की समस्या से जूझ रहे उम्मीदवारों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाए। इस संबंध में परिवहन निगम ने निर्देश जारी कर दिए हैं। किराए पर छूट की व्यवस्था 20 और 21 जून को लागू रहेगी। उधर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
2: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति, आत्मनिर्भरता के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की पर भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षित भारत ही विकसित भारत की आधारशिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने सुरक्षा और सामरिक सामर्थ्य के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। इसी क्रम में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वाराणसी में कहा कि सरकार की योजनाओं का

0: अब समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।
1: जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर सबका साथ देने का काम किया है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को और हम लोग दीर्घायु होने की कामना भी करते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में जो प्रधानमंत्री जी का सोच है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हमका योगदान हो सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुँच प्रदान कर रहा है।
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव की परिस्थितियों को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि बढ़ाकर 24 जून तक कर दी है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब प्रत्येक वर्ष 20 मई से 24 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा और 25 जून से विद्यालयों में नियमित पठन पाठन आरंभ होगा। एक रिपोर्ट।
5: नई व्यवस्था से पूरे प्रदेश में एक रूपता सुनिश्चित होगी और विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा शिक्षकों को स्पष्ट शैक्षणिक कैलेंडर उपलब्ध हो सकेगा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि विद्यालय खुलने से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 220 कार्य दिवस और नियमित पठन पाठन सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारियों को भी स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित करने से पूर्व इस विधिक प्रावधान को ध्यान में रखने के निर्देश दिए गए हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: बदायूं जिले के थाना उझानी क्षेत्र में ग्राम बुटला के पास आज एक ट्रैक्टर और ई रिक्शा में हुई टक्कर में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदायूं में हुई दुर्घटना में जान माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनकी सहानुभूति उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे में हुई जनहानि पर गहरा शोक जताया है। लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जा रहा है। शुभमन गिल और ईशान किशन के शतकों की बदौलत भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रनों का लक्ष्य रखा है। समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर

86 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। नीट पुनर्परीक्षा के उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मिलेगी 50% की छूट। मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद उम्मीदवारों के लिए ठहरने की अस्थायी व्यवस्था करने के भी दिए निर्देश। बदायूं में सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 3 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया दुख। और लखनऊ में खेला जा रहा है भारत अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय मैच। टीम इंडिया ने जीत के लिए खड़ा किया 403 रनों का लक्ष्य। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: गाने हैं बेमिसाल, प्रोग्राम है लाजवाब।
1: जानकारी से सराबोर, मनोरंजन से ओतप्रोत,
2: जोर का झटका है जोरों से लगा।
0: अंदाज है सबसे निराला,
1: क्योंकि ये है 100.7 FM रेनबो की पाठशाला।
0: ओह गॉड, स्टे ट्यून्ड टू चैनल सतरंगी रे।

नमस्कार, रात 11 बजे हैं। हम सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित ग्रेड ए के 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आप सभी इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन को बढ़ाने के सारथी हैं। श्री योगी ने कहा कि ड्यूटी के प्रति सजगता और हर काम में गंभीरता होनी चाहिए। ड्यूटी के दौरान रील बनाना अनुशासनहीनता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण में अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न परियोजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। श्री बघेल ने कहा कि यदि केंद्र सरकार के 12 साल विकास युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त है, वहीं अयोध्या में राम की पैड़ी, बिजनौर, मैनपुरी, जौनपुर में विकास प्रदर्शनी आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया। बदायूं जिले में आज दोपहर सड़क दुर्घटना में एक परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई, 3 महिलाएं घायल हो गई। बदायूं के जिला मजिस्ट्रेट अवनीश राय ने बताया कि हादसे में शामिल 2 ट्रैक्टरों को पुलिस ने जब्त कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त किया और अधिकारियों के पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता के लिए निर्देश दिए। 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयुष विभाग गौतम बुद्ध नगर द्वारा संचालित योग सप्ताह के तीसरे दिन जिले के विभिन्न संस्थान में योगाभ्यास जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयुष विभाग के योग प्रशिक्षक द्वारा जिला कारागार में योगाभ्यास सत्र का संचालन किया गया। वहीं CISF परिवार में आयोजित योग शिविर में जवानों और कर्मचारियों ने योगाभ्यास किया। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जा रहा है। शुभमन गिल और ईशान किशन के शतकों की बदौलत भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 403 रन का लक्ष्य रखा है। समाचार लिखे जाने तक अफगानिस्तान के ने 3 विकेट के नुकसान पर 131 रन बना लिए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आबशार सुनील के साथ 100.7 आकाशवाणी FM रेनबो लखनऊ, न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

reason why you are not able to speak in English fluently.

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की 2 दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: की जा सकती है। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
2: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
1: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
3: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
1: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in

0: और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है सुबोध मिश्र।
2: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल एफएम रेनबो।
1: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
2: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। दैट्स व्हाई आई लव एफएम रेनबो।
3: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप
4: दिल दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है।
5: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन।

0: तू जतना खर्चा करेबू हम उतना खर्चा करब। ओकरा खातिर हम भागल ना है। आ जदि हमरा के छोड़ के गइलू तो बुझ लीह
1: हम संतोष पागल नहीं।

0: जा, जितना तुहरा से रात में बात कोइले बनी ना, उतना केहू औरी खाती जागल ना है। लेकिन जदि तू हमार दिल तुरलू तो बुझ लीह
1: हम संतोष पागल नहीं।

0: अरे एक करे जा हम बरसी ना खाली गर्जे वाला बादल ना हो आ जदि हमारा के छोड़ के गयलू तो बुझ लिह
1: हम संतोष पागल नहीं।

नमस्कार, आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश में लघु पशुपालन क्षेत्र जैसे भेड़ बकरी सूकर पालन को वैज्ञानिक संगठित एवं लागबारी व्यवसाय के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित दो दिवसीय यूपी स्मॉल लाइफ स्टॉक कॉन्क्लेव 2026 का शुभारम्भ आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदेश के पशुधन दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह के राज्य मंत्री एवं श्रीमती कृष्णा पासवान ने किया। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए धर्मपाल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पशुधन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है तथा गोवंश संरक्षण के साथ लघु पशुधन क्षेत्र के विकास को भी विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। नीट परीक्षा 2026 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सेवा से अभ्यर्थियों को रियायती दर पर यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये जानकारी देते हुए परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि नीट 2026 की 21 जून 2026 को होने वाली परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को 20 जून 2026 एवं 21 जून 2026 को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु परिवहन निगम को निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्धारित किए गए 50% की छूट अनुमन्य रहेगी। उन्होंने बताया कि परिचालक द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी से प्रवेश पत्र की एक प्रति प्राप्त कर ली जाएगी। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में संचालित एनसीसी संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत आज राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी द्वारा विशेषज्ञ व्याख्यान एवं लाइव सामरिक प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एनएसजी के वरिष्ठ अधिकारी एवं कमांडो ने कैडेट को राष्ट्रीय सुरक्षा आतंकवाद रोधी अभियान तथा विशेष सुरक्षा अभियान की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। विश्वविद्यालय के प्रैक्टिस ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिगेडियर शंकर तिवारी VSMIG ऑपरेशंस राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एवं कैडेट को संबोधित करते हुए देश के आंतरिक सुरक्षा नेतृत्व क्षमता अनुशासन युवा की राष्ट्र भूमिका में प्रकाश डाला। इटावा के शास्त्री चौराहे पर आज से 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी शुरू हुई। भाजपा विधायक सरिता भदौरिया ने फीता काट का शुभारंभ किया। भारत सरकार के 12 वर्ष और प्रदेश सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित इस प्रदर्शनी में युवा गरीब कल्याण योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को पहले और अब थीम पर दिखाया गया। एलईडी वैन से सरकार की उपलब्धियों का प्रसारण और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुई। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

इन खूबसूरत गीतों और जज्बाती बातों के खूबसूरत गुलदस्ते के साथ रजनीगंधा में आपका सुनील आपके साथ 107 आकाशवाणी FM डिंडोल लखनऊ पर।

0: राम क्षण क्षण में श्याम। हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम।
1: नमस्कार, रात के 11 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच भारत ने जीत लिया है। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में भारत ने मेहमान टीम अफगानिस्तान को 170 रनों से मात दी। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किरण के शतकीय पारी से भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और अफगानी टीम 403 रनों के स्कोर का पीछा करते हुए 232 रनों पर सिमट गई। बलरामपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन के संबंध में बैठक आयोजित की। बैठक में योग दिवस कार्यक्रम की तैयारियों, जन सहभागिता, विभिन्न विभाग की जिम्मेदारियों एवं व्यापक जन जागरूकता अभियान की समीक्षा करते हुए सभी व्यवस्था समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। गोरखपुर में आगामी 26 जून को मनाए जाने वाले मुहर्रम पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में जिलाधिकारी दीपक मीणा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ की अध्यक्षता में पीस कमेटी व सद्भावना कमेटी की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि मुहर्रम संवेदनशील पर्वों में से एक है, जिसे परंपरागत तरीके से शांतिपूर्व संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी प्रकार की नई परंपरा लागू नहीं की जाएगी, सभी ताज

या जुलूस पूर्व निर्धारित मार्ग से निकाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज मेरठ के आईटीआई परिसर में एक मंडली रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल, मेरठ कैंट विधायक अमित अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल द्वारा किया गया। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आज इटौंजा क्षेत्र में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पवित्र प्रतिमा के अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा नेता नीरज सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप भारतीय स्वाभिमान, वीरता और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक हैं। उनका जीवन संघर्ष, त्याग और मातृभूमि के प्रति समर्पण की अनुपम मिसाल है। आज आवश्यकता है युवा पीढ़ी मतदाता महाराणा प्रताप के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करे और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो।

0: पुष्पांजलि, हर सुबह 6 से 7 सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।
1: रूहानी इश्क की मध्यम लौ में पकता, सर्दियों की सुबह किसी झील के शिकारे पे रखी कांगड़ी से निकलते कहवे की माफिक लज्जतदार, खामोश निगाहों के पीछे छुपी कोई चिंगारी जो सुर्ख रोहे की शक्ल में आंखों में पड़ती नजर आ जाए, सर्द रातों में पश्मीने की माफिक जवां दिलों में हौले से मुकम्मल होते हुए किसी सुनहरे ख्वाब की ताबीर बताता, रेडियो प्रोग्राम रजनीकंदा सुनिए हर रात 10 से 12 100.7 FM रेनबो पर।

हीरे की तलाश में पन्ना हर रात भटकती है। ये पन्ना हमारे दिल की वही उदासी, वही हसरतें जो हर वक्त तलाशती हैं किसी खास का साथ, किसी खास की जानिब से आई हुई हर वो बात जो दिल को सुकून पहुंचाती है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीकांत सुनील के साथ, सो आशय आकाशवाणी FM रेनबो लखनऊ पर।

0: पर सर्जन। वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा।

हर एक दिल अपनी शुरुआत में कोरा कागज ही होता है, जब तक उस पे जज्बातों की स्याही न डाली जाए। जज्बातों की स्याही डालने के लिए एक खूबसूरत महबूब की दरकार होती है, और ये महबूब उन्हीं को मिलता है जिनके हिस्से में अच्छी किस्मत होती है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रजनीकांत सुनील के साथ 100.7 आकाशवाणी FM रेनबो लखनऊ पर।

नमस्कार, रात के 12 बजे हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। भारत सरकार के सेवा सुशासन एवं जनकल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जौनपुर में 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण गिरीश चंद्र यादव की उपस्थिति में फीता काटकर किया गया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, आधारभूत संरचना का विकास, डिजिटल सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सृजन से जुड़े कार्यों को चित्र के माध्यम से दर्शाया गया। साथ ही जनपद जौनपुर में विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों को आकर्षक होर्डिंग एवं प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। अमरोहा में आज जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम गत माह की शिकायतों के निस्तारण आख्या की समीक्षा की गई। किसान दिवस में किसानों ने गन्ना विभाग, सिंचाई विभाग एवं मध्य गंगा नहर निर्माण खंड 4 में पानी का समय से नहीं आने देने इत्यादि की समस्या रखी। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के साथ शीघ्रता से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के सख्त निर्देश भी दिए। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज मैनपुरी में केंद्र एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर आधारित भव्य चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष ममता राजपूत, जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी एवं मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु ने फीता काटकर किया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनपद उन्नाव के निराला प्रेक्षा गृह में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने वृक्षारोपण कर हरित पर्यावरण का संदेश दिया। तत्पश्चात उन्होंने सूचना विभाग द्वारा लगाई गई सरकार के कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। और मौसम का हाल, लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:12 पर, सूर्यास्त शाम 7:01 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के FM प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है।

रात्रि के 12:02 हुए हैं। हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। प्रातः 5:56 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।